का हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए। शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा कुछ राधा नामय कार्यम हनुदिनी मिलतम साधना घीस कोटिस, केवल केवल राधा राधा, परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, ये राधा नाम है। एक कौन सखी है जो ऐसी स्वामिनी जी को पुकार रही है, एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी तन कोटि अनंग तरंग।

उन मोहिलिए बन जंतु बजावे जंत्र को। हाथ में वीणा लिए हुए राधा राधा राधा, बुद्धि थोड़े सब बंद हो जाती चलना। ये वो देश है, बावरों का देश है वृंदावन। यहां ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगा के बाहर परिक्रमा के कर दिया जाता है। ये तो वो देश है जो आंसुओं से भीगी हुई भूमि से युक्त है। चाहे जिस भाव के जन हो, यहां आंसुओं से अभिषिक्त करते रहते हैं, वो भूमि है। ऐसी भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो, राधा नाम में प्रीति न हो, तो बड़ा ही मलिन हृदय है। ये साधन भूमि नहीं तो सिद्ध प्रेम भूमि है। लालजू की प्रेम वृत्ति को पहचान पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी कोई नहीं जैसे लालजू है। सच्ची तुम्हें बताते हैं, मतलब बहुत ही चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत ही भोरे हैं, बहुत ही लाडले हैं। देखो ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने भक्तों की लंगोटी धोते पाए गए, रथ आते पाए, क्या क्या। आज भी हमारी सबकी, हम कहलाते हैं उनके दास, लेकिन सही पूछो तो वही हमारी सेवा करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्री जी से जागीर की ऐसा प्रेमी हमने नहीं देखा। वो मानसरोवर के कुंजों में बैठ करके बिना हाथ में लेकर के अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा ऐसा मंत्र रट, ये परामंत्र है, पराविद्या, इसीलिए आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये पराविद्या है राधा नाम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ये दुर्लभ नाम है। ये कृष्ण की आंतरिक हृदय वृत्ति में विराजमान ये राधा नाम है। श्री जी से कहने लाडली जू, वहां के जितने भी जीव जंतु हैं, खगमृग पशु पंछी, राधा नाम सुनकर सब मोहित हो रहे हैं और एकटक चकोर की भांति उसके मुख चंद्र की तरफ देख रहे। वो अशुभ प्रवाह करती हुई राधा राधा राधा राधा ऐसा वीणा वादन करते हुए गान कर रही। लाडली जू,

और हमने देखा इसके बाद वो मानसरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक छाती तक जल में खड़े होकर राधा राधा राधा ऐसा जप कर रहे हैं, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे हैं। फिर लाडली जो हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण श्री विग्रह की प्रतिमा

जो हमारी स्वामी जी की कैसे प्राप्ति होती है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुवार स्वयं लाल जी महाराज और गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा आराधन तत्पर प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्पर तत्पर है श्री स्वामी जी की आज कैसे कोई जानेगा राधा तत्व, जिन श्री कृष्ण तत्व को वेद भी नेति नेति कहते हैं वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लाल जी के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी महाराज, प्रेम अनिर्वचनीय है कोई नहीं वर्णन कर सकता। फिर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का कोई वर्णन कैसे करे। सखियां जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रही जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि को पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। लाडली जू वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय से उस प्रतिमा को लगाकर ध्यानस्थ हो जाती है।

नहीं गए। हे लाडली जी, वो आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर केसर, चंदन, कर्पूर, इस मिलित चंदन से पत्रावली की रचना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं, सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर आचमन करा करके मुख पोछकर पान की बीड़ी और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया।

वही स्वामी जी सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके सैया की रचना कर निकुंज में फूल बंगला बना दी और आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे, यह है उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, वो बड़ी जानकार हैं, ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके ये प्राण मोहित हो रहे हैं उनकी गान। समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लालजी महाराज, जगत गुरु हैं, नृत्य गान वाद्यादि सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, और लाडली जू एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में हमने उनको देखा। तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोही के, तुलसी की कंठी और उसमें आपका राधा नाम और आपका रूप दोनों विराजमान किए हुए हैं। कंठ सुघर संगीत सबे स्वर गावहीं, राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने अधरों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती जैसे लालजू बजा रहे। मुरली धर जो मुरी के मुरली जो बजा वही, बंशी इतनी प्रेम मई है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, कमर भी टेढ़ी हो जाती, ललित त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। रसमयी वंशी का भार अधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी, वो रूप और कहीं नहीं मिलेगा, ये वृंदावन का रूप है, कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा, विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है, लेकिन ये रूप यहां बंशी, ये है बंशी का क्षेत्र वृंदावन, सुदर्शन का द्वारिका मथुरा में, वहां भी देखा गया हूं, यहां कभी सुदर्शन जी का प्रवेश ही नहीं, कभी ब्रज 84 कोष में कौमोद की गदा पांचजन्य शंख भगवान की दिव्य पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, यहां तो कर कमल में श्री मुरली जी विराजमान है। लाडली जो जब वो मुरली में राधा

धुनी भावई, ऐसा बंशी का नाद कि यमुना का प्रवाह बंद हो गया। यमुना गमना ना करे, यमुना जी का प्रवाह बंद हो गया। मृगवाहन चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया। चंद गति मंद भई, निरख छवि काम हो।

भाई लाडली जू, बिल्कुल जैसे नंद नंदन बंशी बजाते हुए वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही। उनकी बंशी ध्वनि सुनकर वर मोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली, कहीं है हंस मंडली, सुख सारिका को ये पक्षियों के झुंड के झुंड उनको आसपास घेरे हुए, मानो मुनि व्रत धरे कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परम हंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों की मंडली विराजमान, और वो अपने अधरों में बंशी बजा रहे हैं। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हो। वैसे किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, क्योंकि अखियां बड़ी सुख देनी पैनी कोर की, बिल्कुल नंद नंदन जैसी आंखें हैं वैसे ही उनकी चलन चितवन, वैसे ही बंसी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करते, समझ पाए। सखी श्री जी को प्रेरित करती पधारो लाडली जी, वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जी का परिचय, हमारा लाडली जी को परिचय, ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी आचार्य रूपी सहचरी करती श्री जी से हमारी स्मृति, वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ आ, हमारे चित्त को लाडली जी की तरफ, इसीलिए रे मन रसकन संग बिन रंचना उपजे, कहो कृपा उपजे के भांति बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है आप चल के खुद देख लीजिए,

कीजिए, अगर आप चलेंगी ना तो उससे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आपको प्रतिमा के यहां जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आपको भी सुख मिलेगा क्योंकि वो आपके विशेष प्रेम में मत वाली है। जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा, और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जी, बड़ी कोमल चित लाडली जी, बहुत लाडली जी, लाडली जी, बस कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं आप। इसीलिए तो पता नहीं कौन सा तत्व सी किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है आज तक, लाल जो परिचय नहीं जान पाए हमारे। आप ऋषि मुनियों की तो बात जाने, दुआ दिनंत बिहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, तैसो भ्रम होत देख्यो न कबहूरी। आज तक पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमिकों की, आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में। आज तक दो आदिन अंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। प्रतिपल ये नए प्रेमी हैं, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, इनको नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम ब्रशुभान किशोर। प्रतिपल नवीन नव किशोर, श्री जी इतनी कोमल चित्त हैं, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ के ऐसे गए, भगवत प्राप्ति तुम अगर करोड़ों बार होनी होती तो भी सस्ती थी यार, हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो भगवत प्राप्ति तो हमारे घर की जेब की बात है। ये केवल महारानी जी के ही बल पर है, किसी साधन बल पर ऐसा नहीं। अगर साधन बल पर सुनना है तो भगवान विश्वनाथ जी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद, कांप जाओगे भैया हम नहीं चल पाएंगे। और यहां ऐसे लगे चलने की बात कि हम तो दौड़ के चले जाएंगे श्री जी के पास पक्का, क्योंकि जैसे हरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल, जेव ही ये कहा श्री जी को क्या हुआ, रोमांच हो गया, कोई हमें इतना प्यार करता है, राधा राधा बोल, श्री जी के अश्रु चल गए श्री जी के।

बी किशोर सुकुमार, ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम है। सखियों ने संभाला, किस बात में? कोई राधा राधा कह रहा है, कोई हमारी प्रतिमा का पूजन कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है। श्री जी कैसे, श्री जी

जन प्यारी जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं, जैसे मानो मोतियों की वर्षा। कोई राधा नाम ले रहा, मेरे को पुकार रहा है, परम कोमल चित लाड़ी, परम मदन टेर के बाबा का जो चरित्र आता है, तो उन्होंने तो यही कहा ना कि लाड़ली लाल के संग में आप भी कठोर हो। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे, इतने वर्ष हो गए वृंदावन वास करते, आंखों से अंधा हो, पूरा जीवन हो गया आपके चरणों में, आज तक आपको करुणा नहीं आई, मुझ दीन पर दया नहीं आई, आपके दरवाजे में पड़ा राधा राधा पुकार रहा हूं। उनको क्या पता कि सामने युगल सरकार प्रतिपल रहते हैं, लाडली जो नहीं रोक पाए, नजदीक जाके कहा बाबा ये तू कैसे कह रहे हो कि लाडली जो कठोर हो गए। तो उनका संग दोष चढ़ता है ना, लाल जो कठोर हृदय के हैं इसलिए संग दोष से कठोर, ऐसे तो पड़ी कोमल, नहीं नहीं मैं कठोर ना है। लाल जी का उलट भेद ही खोल दिया, हम तो केवल दूर से रसा लाडली जी। वैसे लाडली जी ने बाबा के नेत्र छुए, दिव्य देखा ही दर्शन चरणों में। लाडली जी से कहा पहला कार्य करो मेरे को अंधा करो, आंखें खुली तो आपको देखा और देखना नहीं, बस अब और तुरंत हमारी आंखें हटाओ, बस यही रूप में पधारे श्री जी की। बड़ी करुणामयी सरकार, देखो कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो देखो प्रेम चले भरी नयन मैन रस में, स्वामिनी जी के आंखों से अश्रु टपक रहा है और कुंजों में जैसे मोती बिखेरते हुए जा रहे हो ऐसे अश्रु गिरते जा रहे हैं। और चपल चली शीघ्रता, ऐसा हम सबके प्रति उनका प्यार है, ऐसा आपको समझना। बस एक ही कमी है कि हम अपनी ममता को अपने स्नेह को बांटे हुए, नहीं तो जिस दिन मुड़ोगे आप इधर ना, आप खुद देख लेना कि श्री जी का प्यार क्या है। उन्हीं के प्यार से कहीं कुछ प्यार दिखाई दे तो उन्हीं के प्यार का अंश है।

0: गजगामिनी,
1: गजगामिनी प्रिया जो मत वाली चाल से सखी के कांधे पर अपनी भुजा पधराए हुए हंस गति से चल रही, आगे आगे सखियां लताएं निवारती जा रही, जो वृंदावन के पशु पक्षी दर्शन के लिए भाग की मंडली से इतारे उनसे रास्ता करा, वाम करें इतमाम लिए छवि की छड़ी, फूलों की छड़ी ली हुई हटाती जा रही, लताएं देख रही प्रिया जो आ रही तो ऐसे वो नृत्य करती कि सब फूल बिछ जाते हैं, मानो लताएं अपने पुष्पों से श्री लाडली जू के चरणों में पावड़े बिछा रही, महारानी जू गजगामिनी जू पधार रही हंस गति से।

समीप पहुंची, उधर सेवा परायण नूपुरों की ध्वनि सुन करके देखा हो जिनकी प्रतिमा वही स्वामी जी धारण नेत्र, लाडली जी के नेत्र, दो चकोर दो चंद्रमा दो वल पंकज दो, सखियों ने देखा

वही नेत्रों को देखकर युगल सरकार की उस पर सखियां गुलाल उड़ा रही हैं। सी लाडली जो देख के उनकी इस अनुराग को ऐसे प्रेम में विथकित हो रही, व्याकुल हो रही। कीरत की बिटिया विथकी छवि देख के सखी अखियन की पुत्र

दी, क्या नाम है आपका, किस गांव से आई हो और मेरे इस मानसरोवर की कुंज में क्या कामना रखती हो जो ऐसी उपासना कर रहे हो। श्री लालजू महाराज सहचरी वपू है, उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामाजू है। श्यामाजू तो मेरा नाम है, ये श्यामाजू तो। और नंद गांव से आए हो, आप जानते हो नंद गांव, पर पूरे ब्रज में श्यामाजू तो मेरा ही नाम है। तो ये ऐसे ही हैं, इनमें पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कि इनमें कौन श्यामाजू है कौन श्यामजू है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, जैसे दो शीशी में एक ही रंग भर दे ऐसे ही दो देह केवल है, वही एक परम रस है। तो कभी प्रियाजू पुकारने लगती हैं, हा प्यारी जू आप कैसे रुस गई मान कर गए, तो लालजू को लगता है ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। अब प्रियाजू भाव में प्रीतम के हैं बुला रहे हा प्रिया, कभी कभी लालजू कहते हे प्रीतम हे प्यार। तो सखिया यही नहीं समझ पाती कि लाड़िलों के हृदय में चल क्या रहा है, बड़ा एकांतिक प्रेम है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा, मैं नंदगांव की हूं और आपकी अनन्य भक्त हूं। ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपकी अनन्य, बस इससे सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए बस एक ठसक ले आइए हमारी भोरी सखी के लिए, लाडली जी के लिए, मैं आपकी हूं। बस देखो ना महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, मुझे कोई परवाह नहीं, नरक भेज दो या कहीं भी जन्म दे दो, बस महारानी जो आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। क्या फर्क पड़ता है, जहां प्यारी जो वहां निकुंज, ये कहीं भी भेज दो, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख राशि, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। अब सब कुछ छुप सकते हैं, चितवन प्रेमी की बचाई नहीं जा सकती, वो अपनी पहचान बता ही देती है चितवन। जैसे श्री सेवक जी महाराज जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आए, तो बंचन महाप्रभु ने पहले आदेश कर दिया था जिस दिन सेवक जी वृंदावन में आएंगे सब भंडारा लुटा देंगे राधा वल्लभ लाल का, ऐसे महाप्रेमी के आगमन पर। सेवक जी को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री जी की सेवा की सौंध नहीं लुटानी चाहिए, तो छुप करके ऐसे वेश ढक करके आए, और जब नेत्र मिलाए तो राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए। महाप्रभु गोस्वामी श्री बनचंद जी सेवा में थे, उन्होंने कहा श्री जी के नेत्र चंचल हो गए, कोई ऐसा प्रेमी आ गया। तो नीचे जब देखा तो ऐसे वस्त्रों से ढके हुए, बोले सेवक जी ही होंगे। जब निज जनों को भेजा कि आप दामोदर दास सेवक जी है, महाप्रभु आनंद, नेत्र से पता चल जाता है कोई है, निज जन है कोई। प्रेम उशासन लेत मिले दो प्रेम शो, मानहु श्याम चुनी सुबनी खचिहेम।

को तुम राधा नाम जपक, राधा रूप उपासक, ऐसा प्रेम आओ हमारे हृदय से लोगो, लाडली जी ने अपने हृदय से लगा। अब हृदय से लगने पर थोड़ी छुपाया जा सकता है, क्योंकि हृदय की गति प्रेमियों की अलग होती है। ये धड़कन तो बेकार धड़क रही है, जैसे हृदय मशलता रहता है प्रतिपल, कोई मशले, ऐसे प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती रहती प्रेमियों, और जब उनके हृदय मिलते हैं तो वही हृदय जानता, दूसरा नहीं जानता। लालजू का हृदय से लगाना और नेत्र में नेत्र मिलना, सखियों से श्री जी ने कहा और कोई

0: आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे। दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो, जहां पर कि पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा?
2: रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहां पे आ जाता है ना, तो वो चीज उसमें भी काफी वो हर्ट जाता है। और अगर जिस चीज में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, यहाँ पे जा रहे हैं तो हम।
1: इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? क्यों इस पाथ को चुनते हो, क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो?
3: सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है।
1: कितना लग जाता होगा, आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है?
4: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर।
1: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है?
4: जी सर, फिट जी में सर 6-7 ले लेते।
1: नहीं नहीं, 6-7 लाख थोड़ी होती है।
4: यस सर,
1: मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की एक साल की?
4: 2-3 लाख सर।
1: 2-3 लाख रुपए साल की? तो मतलब 2 साल की हो गई 5-6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है?
4: 99% है कि तो नहीं होगा सर।
1: 99% है कि नहीं होगा?
4: यस सर।
1: तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है? या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा, अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट है, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट इज योर बैकअप प्लान?
4: प्राइवेट कॉलेज सर।
1: तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है?
3: पैसा लगेगा।
1: कितना पैसा लगता है? 4 साल का नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो। तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने?
3: यस सर, यस सर, देखा।
1: अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50-60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे?
3: 9 to 10 years।
1: 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा। yes. और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा।
3: इंटरेस्ट भी देना है क्या?
1: इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे तो क्या करोगे? अ सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन।
5: 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है, उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही हैं करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है।
1: ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो, तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है, आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों, आपका क्यों है, जवाब दो।
6: सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे हम पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला।
1: तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वन। टू, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी,
6: लेनी पड़ जाएगी,
1: करनी पड़ेगी, इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए?
6: हमारे ही हुआ।
1: आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई।
6: Yes.
1: तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने एआई के बारे में तो बात ही नहीं करी है कि एआई का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी।
5: सर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 ईयर्स जब था 10 साल का, तब मैं यूट्यूब ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने ई-स्पोर्ट्स भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने, वहां पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहां पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया, जिससे कि मेनली मेरा 50-1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है।
1: अभी आपकी एज कितनी है?
5: 15.5 ऑलमोस्ट लाइक 16 राउंड फिगर।
1: 16 साल?
5: यस सर।
1: तो आपके घर वाले खुश है?
5: बिल्कुल खुश होंगे सर, 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे।
1: लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। जो आप कर रहे हो वो सही है।
5: सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने एक बार दो बार टारगेट को अचीव कर लिया, बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कंफर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है, मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे, तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर?
1: आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा, क्या बोल रहे हो आप? ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जा करके कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर 1 लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से। आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे, प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी।
5: Sure,
1: तो एक सोल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर, अब ये सोल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे, बट मैं ये कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस एंड विद माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबल तो है।
6: मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे वही 1-2 हजार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं। हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा एक मोटरसाइकिल होती है बस, उसमें
1: वो भी आप ही के पैसों से खरीदी होती है।
6: हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस एक साल दे के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज की। हाँ, फ्रॉड है।
1: आपने भी ऐसा ट्राई किया?
6: हाँ, मैंने किया है।
1: आपने कितने पैसे दिए थे?
6: मैंने दिए थे 500 रुपए। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी, सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ तो। मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने फोर्थ डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने। अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कॉन्टेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसा है हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ।
1: ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है, इस बात को लिख करके रख लो। तो चैलेंज ये नहीं है कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है। और जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो, जहां तक नहीं देख पा रहे हो, एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी, इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो। अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। नंबर वन, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहां पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। आने वाले टाइम में जो मीडियोक्रिटी है उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर है इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ में, कि 5-10 साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 10 गुना से, तो 10 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है। तो अगर मेरी एक आईटी कंपनी है और वहां पर 1,00,000 लोग काम करते हैं और वो काम 10,000 लोग कर सकते हैं, तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा? निकाल दूंगा। तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, या

तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा, जो भी कुछ नया हो रहा है एआई की दुनिया में वो सब कुछ सीखने के लिए, वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो एआई एप्लीकेशंस है उनमें, और डेली नई नई एप्स आ रही हैं, तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडेप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो, अगर ये कर सकते हो। यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में, अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है सीखने की कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में, इधर उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 एआई टूल्स के नाम, कोई है जो बता सकता है? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो आपके पास में एज आ जाएगा, कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए, अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है, कुछ क्रिएट करना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हो, अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप एक क्रिएटर हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब क्रिएटर्स, आई एम सेइंग समवन हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक लाइव्स बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे, जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए, उसको एक क्रिएटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं, जॉब की भी तैयारी करनी है तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ूंगा या करूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, नंबर वन। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। जो एजुकेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में। एजुकेशन मतलब क्या, कि कुछ आपने सीख लिया है, अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो, आने वाले टाइम में वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन वो लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले टाइम में, और कौन वो लोग हैं जो नहीं बचेंगे। इफ यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स, यानी अलग अलग चीजों को देख करके आप किसी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जहां से आप पैसा कमा सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंटली, अपने बेस पर, तो फ्यूचर आपके लिए है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ इस डिग्री के बेस पर सर्वाइव कर सकता हूं, तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कुछ अलग अलग हो, उसको जोड़ दिया जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है, तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है BFSI सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे टूल्स ढूंढूंगा जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकेंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोज बना सकूं, और पहले मैं YouTube पे जाकर के देखूंगा कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर बहुत व्यूज आ रहे हैं या जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है Google पे और YouTube पे, क्योंकि अगर Google पे ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि YouTube पे भी ज्यादा होगी। अब मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझना, आइडिया को मत पकड़ना, गड़बड़ हो जाएगी। आइडिया को पकड़ोगे फिर वही बंद दिमाग की तरह कॉपी करने लग जाओगे, लेकिन अगर थॉट प्रोसेस को समझोगे तो कुछ भी कर जाओगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ pictory.ai जहां पे आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और वो उसको वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। ये काम करने में यूजुअली 2 से 4 दिन लगते हैं। तो क्या यहां से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव हो। तो एक दिन में कितनी वीडियोस बन सकती हैं? बहुत सारी। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले मुझे यह समझना होगा कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे, फिर वो स्टडी करके, फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज

म्यूचुअल फंड। तो क्या हो अगर इस तरह की मैं वीडियोस जनरेट करूं थ्रू एआई? अब मुझे उसके लिए कंटेंट चाहिएगा। कंटेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी पे जा करके लिख दूंगा व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। तो चैट जीपीटी पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा, उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे, ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को ले जाकर के मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में, वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूं। लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है, वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो एआई वॉइसेस हैं, जैसे ही यूट्यूब पकड़ लेता है कि इसमें एआई की वॉइस है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर के जो यूट्यूब का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है। अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे, उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी यूट्यूब पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले एक साल तक, ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया, 10 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में, 2-4 दिन को समझ नहीं आया, बेकार है, छोड़ दो, ऐसे नहीं करते ना। 4 साल पता है ना कि वहां पे लगाना है, तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो एक साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो एक साल में मैंने कितनी वीडियो अपलोड कर दी, 365 × 10 यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम कितना लगा, मैक्सिमम 1 से 2 घंटा डेली। इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो, आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि अब मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं। क्योंकि ये भी हो सकता है कल को यूट्यूब एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो एआई जनरेटेड वीडियोस है इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे, तो कहां गया आपका वो 1,00,000 रुपए महीना, गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा, तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है, घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहा हूं, मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैर जमीन पर रखने हैं, उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है, कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है एआई जनरेटेड साउंड्स को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली, कॉन्टेंट चैट जीपीटी से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है, प्लस

कौन है जिसको ये काम आता है? आप कहोगे मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सरवाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं, जो सिर्फ एक काम कर सकता है। वो पास्ट में रेलेवेंट थे, फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि वो एक काम आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी, फिर आप क्या करोगे? लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी? आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ नया समझ में आया है, कुछ नया सीखा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: हम अक्सर अपने बॉडी की हेल्थ पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम उतना ही ध्यान अपने थॉट्स और इमोशंस पर भी देते हैं? क्या स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थिंकिंग का असर सिर्फ हमारी माइंड तक रहता है, या फिर इसका कनेक्शन हमारी फिजिकल हेल्थ से भी होता है? आखिर माइंड और बॉडी एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे हम दोनों के बीच बेटर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। वेलकम मैम।
5: ओके शांति, थैंक यू।
4: तो चलिए शुरू करते हैं आज की मीनिंगफुल डिस्कशन ऑन माइंड बॉडी कनेक्शन।
6: ओके ज्योति जी, क्या मल्टीटास्किंग हमारे माइंड को स्ट्रांग बना रहा है या वीक?
5: ये डिपेंड करता है कि हम उसको अगर दूसरों की देखा देखी अगर हम कर रहे हैं तो जरूर हमारे वो माइंड को वीक बनाएगा
4: जी,
5: क्योंकि हमने सिर्फ एक कंपैरिजन करके और अपने आप को दूसरों को देख करके ही हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर है कि उनको शौक होता है कि बहुत सारे कार्यों को एक साथ करना, बहुत सारी चीज़ों को सीखना, तो ये कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि हर एक नई चीज़ सीखने के लिए हमें उसमें इंटरेस्ट भी आता है और हमारे कुछ ना कुछ चेंजेस भी होते हैं। और जितने भी हमने सक्सेसफुल लोगों को भी देखा है तो उन्होंने कभी भी एक टास्क के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सारे टास्क में दिया है, मल्टीटास्किंग हुए हैं। जैसे अगर उनको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि वो जाकर के रेस्ट करेंगे, वो अपने टाइम अपने वर्क को चेंज कर देते हैं तो उससे उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है
4: जी।
5: तो जो मल्टीटास्किंग लोग हैं, जिनका वो हॉबी है, जिन्हें वो शौक है, तो उनके लिए वो एक पावरफुल टूल है जिसके द्वारा जो है वो माइंड को बिजी रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों का क्रिएटिविटी के साथ करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मल्टीटास्किंग हमें वीक बना रहा है, कहीं ना कहीं हमें वो बहुत सारी जानकारियाँ देता है और स्ट्रांग बनाता है इसीलिए। लेकिन कुछ लोग अगर कंपैरिजन में जा रहे हैं, दूसरों की देखा, अच्छा ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पास जो स्पेशलिटी है वो भी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, उसको भी वो खो देते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं वो वीक बना देते हैं
4: जी।
5: तो इससे पहले हमें खुद को जानना बहुत जरूरी है कि मैंने जो भी हम काम कर रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, तो क्या वो मुझे पसंद आ रहा है, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, या फिर हम लोगों को देख देख के उनको ऐसा दिखाना है या उनको शो ऑफ करना है इसके लिए कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद फिर हम बहुत वीक फील करते हैं, हम अपने आप से होपलेस भी हो जाते हैं और लाइफ ऐसी लगने लगती है जैसे हमारे जीवन में हम भागते भागते थक गए हैं। लेकिन अगर हमने उसको शौक बनाया है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ, एक रास्ता बंद होते ही हमारे पास दूसरा रास्ता खुला हुआ होता है। तो चॉइस करनी है आपको कि वो आप किस रूप में ले रहे हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं और अगर आपने देखा देखी किया तो वीक भी बन सकते हैं।
4: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, का सोशल मीडिया कंपैरिजन हमारे बॉडी एनर्जी को इफेक्ट करता है?
1: जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कई शब्द इसमें यूज किए इस क्वेश्चन में, तो उससे उसका जो सोर्स, जो सबसे पहला सोर्स है, हम देखते हैं कि मोबाइल है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर मोबाइल भी अगर हम अपने पास काफी समय तक रखते हैं तो बॉडी में चेंजेस, फर्क जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो हो रहे हैं। फिर दूसरा वर्ड आपने यूज किया सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया आज की बहुत बड़ी डिमांड हो चुकी है, नीडलेस डिमांड है लेकिन फिर भी बहुत डिमांड है।
0: बिल्कुल।
1: और तीसरा वर्ड जो आपने यहाँ इस क्वेश्चन में यूज किया है, जो कि कंपैरिजन है, और ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज रखता है। अगर एक माँ अपने दो छोटे बच्चों में कंपैरिजन करती है, कंपेयर करती है कि ये अच्छा है और ये नहीं है, ये इंटेलिजेंट है वो नालायक है, तो भी हम देखते हैं कि बच्चे के शरीर में, बच्चे की हरकतों में, बच्चे के थॉट लेवल पे, हर चीज में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यहाँ

0: हॉट लेवल के थ्रू मेरे हर सेल के ऊपर अफेक्ट करेगा,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसीलिए अगर मैं इस कंपैरिजन से बच सकूं तो बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें काफी लोग सक्षम हैं कि वो कंपैरिजन में अपने लेवल को हायर रखते हैं, एंड दैट इज द गुड पार्ट कि अगर कोई मुझे कंपेयर कर रहा है तो लेट हिम बी, उसे करने दें। लेकिन मैं क्या हूँ वो मुझे मेरा आंकलन खुद अपने नजरिए से करना चाहिए। किसी और के चीजों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, बोलने के द्वारा मुझे अपने स्तर को नीचे गिराना या चढ़ाना, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: मैं जो हूँ वो मैं हूँ और मेरे को मैं ही जो है वो आगे या नीचे धकेल सकता है। मैं चाहूँ तो ऊपर जा सकता हूँ उस कंपेरिजन को लेकर ही। कई लोगों को हमने देखा है कि उनको गलत बोला गया लेकिन उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के अपने आप को आगे किया है, और कई लोग हैं जो उस कंपैरिजन के जो कहे एक चादर में अपने आप को ढक लेते हैं और बिल्कुल ही सिकुड़ कर बैठ जाते हैं और अपने आप को फिनिश कर लेते हैं। दैट इज रॉन्ग। तो इसीलिए हमें अपने आप की क्षमता को बढ़ाना है। सोशल मीडिया अगर मुझे कंपेयर कर रहा है, मुझे कंपैरिजन लेवल पर लेकर आ चुका है, तो इट्स नीड द टाइम टू चेंज इट। या तो कुछ दिन उससे दूरी बनाएं या अपने आप से जुड़ना हम शुरू करें, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं।
1: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। आजकल कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, तो क्या ये स्ट्रेस के टाइम पर बॉडी और माइंड का जो रिस्पांस होता है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? आप दोनों का इस पे क्या कहना है?
1: अगर स्ट्रेस की बात करें तो एक्चुअल में स्ट्रेस कोई चीज ऐसी है नहीं, लेकिन हमने हर एक छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस बना लिया है और उसका इफेक्ट सीधा ही हमारी बॉडी पर पड़ रहा है। क्योंकि जैसा ही हम सोचते हैं, जिस विधि से हम चल रहे हैं, आज हम छोटी छोटी बातों का अगर हमने कहीं की अटेंशन नहीं देने के कारण वो टेंशन बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हमने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया है, कोई भी बात को अगर हम पकड़ कर बैठ जाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूँ कि एक हैंकी है और इस हैंकी को आप जो है वो होल्ड करके रखें, और बहुत देर तक अगर आप होल्ड करते हैं तो वो भी हैंकी में वेट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उसको फोर्सफुली पकड़ा हुआ है तो उसके कारण से आपको पूरी बॉडी में स्ट्रेस फील होगा।
0: बिल्कुल सही बात
1: है। तो ऐसे ही हम भी कई बार बातों को पकड़ लेते हैं, चीज़ें जो होने वाली हैं, या तो हम पास्ट की बातों में फंसे हुए होते हैं या फिर हम फ्यूचर की बातों में। किसी ने बहुत अच्छी बात कही भी है कि पास्ट इज़ द हिस्ट्री, वो बीत गया, वो इतिहास है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते
0: जी।
1: फ्यूचर इज़ द मिस्ट्री, वो हमें नहीं पता क्या होने वाला है, बट प्रेजेंट इज़ द गोल्डन गिफ्ट, हम आज में जिए। तो जब हम आज में जीना सीख लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। लेकिन अगर हम पास्ट में की बातों को पकड़ कर बैठे हैं या फ्यूचर की हम चिंता कर रहे हैं लेकिन आज हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो हमारे को स्ट्रेस भी दिलाता है और उसका रिस्पांस ये है कि हमें इरिटेशन होती है, हमें गुस्सा आता है, हम लोगों के साथ निग्लेक्शन, या तो उन्हें निग्लेक्ट करते हैं या खुद को फील कर होता है कि हमें लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सबसे अलग करती हैं, और अलग करती हमारे माइंड में और ज़्यादा उसकी प्रेशर बनता है जो कि बॉडी में कहीं ना कहीं ज़रूर उसका इफेक्ट होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को एग्ज़ाम भी देना है या कहीं जाना भी होता है तो उनको किसी को लूज मोशन लग जाते हैं
0: जी,
1: किसी को जो है वो हेडेक हो जाती है। तो जो भी हमारी बॉडी का वीक पार्ट है उस पर वो स्ट्रेस इफेक्ट डालता है और वो चीज़ हमारे साथ रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है
0: जी।
1: अगर हमने अपने आप को, पहले तो हमें हील करना है अपने अंदर को, माइंड का सीधा सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी से है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ है।
0: बिल्कुल।
1: जितने भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना हुआ है कि उन्होंने अगर अपने मन के थॉट के ऊपर काम किया, विचारों पर काम किया है, तो उनकी बॉडी में जो आए हुए डिसीज भी थे वो भी ठीक हो गए
0: जी।
1: सिर्फ किस लिए? उन्होंने अपने थॉट पर ध्यान दिया है। तो मन का हमारे तन के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ता है, इसीलिए कहते भी हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर अच्छा है तो हमें हरिद्वार जाने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें वहीं से ही हीलिंग मिल जाती है, हमें खुशी मिल जाती है। लेकिन आज की डेट में अगर हम पूछें लोगों से कि आप कैसे हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आप कैसे हैं, तो आप क्या जवाब दें?
0: बहुत बढ़िया।
1: बहुत बढ़िया। और लोगों से पूछेंगे तो क्या कहेंगे? अधिकतर लोगों का जवाब क्या रहता है?
0: ठीक है, अच्छे हैं।
1: ठीक है, अच्छे हैं,
0: ऑल गुड,
1: चल रही है, कट रही है। और सुबह सुबह जब लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो भी उनकी भाषा कैसी हो गई आज की डेट में? मिलते के साथ कहते हैं हाय।
0: हाँ जी।
1: अगर हाय शब्द को हिंदी में लिखा जाए तो हाय हाय है। तो हमारी हर एक वर्डिंग्स में टेंशन दिख रही है, हमारी चाल चलन में टेंशन दिख रही है, हमारा एक दूसरे के साथ जो बात करने का तरीका है उसमें कहीं पर भी खुशी दिखती नहीं है। आज लोग गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते, सीधा मॉर्निंग
0: जी,
1: ना गुड है नहीं तो मॉर्निंग कैसे कहेंगे? तो हमारे जितना हम नेगेटिविटी में रहते हैं हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और उस स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है, बॉडी से फिर वो हमारे रिलेशंस में भी जाता है और धीरे धीरे हम अपने आप की पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल करते हैं। तो सबसे पहले हमें मन को बहुत पॉजिटिव थॉट्स सुबह उठते के साथ अगर हम देते हैं, फिर आप उसका इफेक्ट देखेंगे कि आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ चलेगी।
0: बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी आप क्या कहेंगी?
2: जी बिल्कुल सही है कि मन का प्रभाव तन पर है और तन का प्रभाव मन पर है, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस के दौरान क्या प्रभाव होता है। तो विशेष जैसा मैं खुद अनुभव एक बार किया कि ड्राइविंग के टाइम पे अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो वो भी एक तरह से मैं यही कहूंगी कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस के वो लक्षण है
0: जी,
2: कि आप प्रेजेंट में नहीं है। और प्रेजेंट में आपको क्या देखना है, दाएं बाएं आगे ये सब गाड़ियां देखनी, लोगों को देखनी है, लेकिन लोग क्योंकि पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं, इसीलिए उनके थॉट्स कैप्चर हो जाते हैं, यानी अभी जो सोचना है उसकी बजाय वो आगे पीछे का सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से जब माइंड को या बॉडी को, माइंड के थ्रू बॉडी को एक्सेलेरेटर को प्रेस करना चाहिए, कभी ब्रेक दब जाता है, और ब्रेक को जब प्रेस करना चाहिए वो एक्सेलेरेटर भी दब जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें समझनी होगी कि जहां एक्सीडेंट मैक्सिमम इसी कारण से हो रहे हैं कि ब्रेक दबाना चाहिए था लेकिन गलती से, और गलती कहाँ से हो रही है, बिकॉज ऑफ माइंड कनेक्शन विद द बॉडी,
0: बिल्कुल,
2: तो वहां मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा हमारे को दुष्प्रभाव दिखता है, इसीलिए जो हम कहें कि स्ट्रेस को हम मैनेज करना सीखे, प्रेजेंट में जीना सीखे, जैसे कि ज्योति जी ने कहा वो सबसे बढ़िया चीज है। प्रेजेंट इज वाकई में अ प्रेजेंट, मैं जो अभी कर रहा हूँ उसका फल मुझे नेक्स्ट मिलना है। मैंने ब्रेक प्रेस नहीं किया, एक्सीलेटर प्रेस किया तो उसका गिफ्ट मुझे मिला कि एक हिट हुआ।
0: बिल्कुल,
2: इसीलिए आप प्रेजेंट में रहना सीखें, क्योंकि माइंड और बॉडी का बहुत जबरदस्त कनेक्शन है
0: जी।
2: अगर माइंड के पास जो सूचना है वो बॉडी के अंगों तक वो सेकंड्स में पहुंचाती है, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स के थ्रू, लेकिन अगर वहां पर अगर कुछ सेकंड्स का जर्क आ जाता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस चीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक हाथ होता है माइंड और बॉडी के बीच के संतुलन को बिगाड़ने में।
0: बिल्कुल,
2: तो इस संतुलन को बनाए रखने में हमारे को, जो मैं तो यही कहूंगी कि मेडिटेशन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, कि वो सडनली आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जो एक डैन हैरिस करके एक जो मैं कहूँ न्यूज रीडर है
0: जी,
2: और उन्होंने एक बुक भी लिखी है हैप्पीनेस, ही सेड अबाउट इट कि अगर आप प्रेजेंट करने के टाइम पे इतना हाइपरटेंशन होता था, स्ट्रेस होता था, एंजाइटी होता था, कि बहुत सारी चीजें बिगड़ रही थी, तब उन्होंने मेडिटेशन पे बहुत रिसर्च की और प्रैक्टिकल करके देखा, और उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि एटलीस्ट 10% चेंजेस तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, आपके स्ट्रेस लेवल पे, एंजाइटी पर उसका असर जरूर होगा और वो कंट्रोल होगा, तो फिर बॉडी एंड माइंड का बैलेंस भी नेचुरल एंड ऑब्वियस जो है वो आप गेन कर पाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी कहते हैं कि जो सोचता है वो वैसा ही बन जाता है, तो ये जो सोचता है वैसे ही बन जाता है, ये साइंटिफिकली कितना ट्रू है?
1: इसको अगर हम फिलोसोफर की भाषा में देखें तो विवेकानंद जी ने भी ये कहा है कि जो हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं
0: जी।
1: और बहुत सारे ऐसे और भी फिलोसोफर हुए कि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं, इसका अगर आप प्रैक्टिकल करके देखें, अगर आप बैठे हैं और कोई ऐसे मोमेंट को आप याद कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी थी, तो आपको बैठे बैठे भी आपका चेहरा कैसा होगा? आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आएगी
0: जी,
1: क्योंकि आप उस थॉट में हैं। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात पर विचार कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो कहीं गंभीर है उस पर अगर आप विचार करें तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन वैसा ही होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे चेहरे के भाव होते हैं, और धीरे धीरे क्योंकि

0: कहीं आज हम भी फिर वैसा ही चीजों पे ढलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम नई सोच की बात करते हैं तो सोच नई होने का मतलब कुछ नया हमें सीखना,
1: बिल्कुल
0: ना कुछ नया हमें सीखना। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनको तो हम एज इट इज ही लेंगे। अगर हम ए बी सी डी की बात करते हैं तो आज भी ए फॉर एप्पल ही पढ़ा जाता है, आज भी ए वैसा ही लिखा जाता है जैसा पहले लिखा जाता था, तो उनमें अक्षरों में कोई चेंजेस नहीं है। तो बेसिक चीजें तो वही है। अगर हमारे विचारों में महानता है, श्रेष्ठता है, दूसरों के लिए अच्छे भाव है, दूसरों के लिए हम अच्छा सोचते हैं, तो नेचुरली हमारे पास वही आएगा, वैसे हमारी लाइफ बनेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ तो लोग बुरा ही कर रहे हैं
1: जी,
0: क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है
1: जी।
0: हमारी अच्छी सोच कुछ समय के बाद हमें रिजल्ट देती है।
1: बिल्कुल,
0: कोई भी चीज अगर आप बो रहे हैं और अच्छा फल अगर आप बीज लगा रहे हैं और उसका लंबे समय तक आपको फल लेना है तो डेफिनेट उसका वेट तो आपको करना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर हमने आज ही बीज बोया और कल हम वेट कर रहे हैं कि मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारी लाइफ के अंदर हमें अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना है। और इसको आप जितना प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने विचारों से सृष्टि में बहुत सारी चीजों का परिवर्तन किया है। हम उनकी आज बातें भी सुनते हैं जिन्होंने अपने थॉट के ऊपर कमांड करके अपनी बॉडी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, माना उसी अकॉर्डिंग बॉडी भी चलने लग गई, जिनकी बीमारियां अपने विचारों से ठीक हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। कुछ लोगों ने अपने विचारों से अच्छे भले माहौल को भी बिगाड़ दिया।
1: बिल्कुल,
0: वैसे लोग भी हम देखते हैं। तो हमारे विचार हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश देते हैं। हमारे जीवन के वो बीज हैं जो जीवन रूपी वृक्ष को वैसा बनाते हैं जैसा हम बीज बो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं तो आपकी लाइफ जरूर अच्छी बनेगी। और विचार ही सारी चीजों का जड़ है, उसी पर ही सब चीजें डिपेंड करती है।
1: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, आजकल वर्क कल्चर, रिलेशनशिप, फैमिली में कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनवायरनमेंट जरूर पाया जाता है, तो क्या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहकर भी हम अपने माइंड को पूरी तरीके से पीसफुल रख सकते हैं?
1: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट आपने कहा कि तीनों चीज़ें, जो वर्क प्लेस बोला आपने और सबसे इम्पोर्टेंट जो घर बोला, वहाँ टॉक्सिक एनवायरनमेंट का पाया जाना, एंड इट्स रियली ट्रू।

0: कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए करना होगा, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आप अपने लिए करते हैं, दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं, तो यहाँ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि हम हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट में 24/7 रह रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ पर जो एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, लेकिन है तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, जो विवेकानंद स्वामी जी जब विदेश गए थे तो उनके ड्रेस को लेकर के पूरा ही जो वहाँ का जो लोग थे उन्होंने मजाक उड़ाया था, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था, बहुत हंसे थे। और उन्होंने सिर्फ 2 मिनट दिए गए थे, जबकि बाकी सबको आधा घंटा दिया गया था, लेकिन उनको सिर्फ 2 मिनट दिए गए थे बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, कि वो किस तरीके से आए हैं। तो उस एनवायरनमेंट में, हालांकि हमारे लिए अगर हम खड़े हों तो हमारे लिए तो ये हाईली टॉक्सिक है,
1: बिल्कुल,
0: तब वहां उनकी ये 2 शब्द मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पर इतनी तालियां बजी थी जिसकी गूंज पूरे विश्व में गूंजी। पर कब मैं अपने आप को अगर वहां खड़ा रखती हूँ तो क्या मैं इतनी कॉन्फिडेंटली खड़ी हो सकती हूँ? तो वो क्यों इतने कॉन्फिडेंट हो पाए? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया था, समाज के ऊपर बाद में किया, पहले अपने पर काम किया। टॉक्सिसिटी आज हर जगह है, लेकिन सबसे पहला टॉक्सिक पना जो है मुझे मेरे अपने अंदर का खत्म करना है।
1: बिल्कुल।
0: मैं छोटी छोटी बातों पर डाउन हो जाती हूँ, अपने को इंसल्टिंग फील करती हूँ, गिल्ट मेरे अंदर इतने सारे हैं खुद को लेकर के। तो ये सारी चीजों को मुझे पहले अपने आप को क्योर करना है, हील करना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, जो उन्होंने किया बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी वो ये कर पाए। आपको जहाँ से एनर्जी मिलती है आप वहाँ से अपने आप को अपलिफ्ट करें, ऊपर करें, अपने आप को मोटिवेट करें, कॉन्फिडेंट बने, और फिर उसके बाद आप महसूस करेंगे कि 100% जो एकदम नेगेटिव आपके लिए एनवायरनमेंट है वहाँ भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। इनफैक्ट आपको पता है कि ये मेरा एग्जाम प्लेस है, एग्जाम टाइम है, तो आप अपना वहाँ बेस्टेस्ट प्ले करके आएंगे, क्योंकि आपको पता है इसके बाद मेरी सक्सेस होनी ही होनी।
1: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी, हम सबकी कोई ना कोई एक गट फीलिंग होती है, तो क्या ये गट फीलिंग एक्चुअली बॉडी का इंटेलिजेंस है या सिर्फ इमेजिनेशन?
1: इसको सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कह सकते हैं, कई बार हमारी बॉडी का भी, क्योंकि हमारे 10 ऑर्गन्स हैं ऐसे जिसमें 5 जो हैं वो कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं।
0: क्या बात है।
1: तो ज्ञान इंद्रियां जो हमारी हैं वो हमें कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशन कराती हैं किसी भी चीज़ को देख करके। अगर हमें अंदर से आता है कई बार किसी व्यक्ति को देख करके, नहीं ये रॉन्ग है
0: जी,
1: ये ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी वो सिक्स सेंस पावर जिसको हम कहते हैं वो हमें ये शो करती है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, और उससे हमें बचाव के लिए वो सावधान करती है। कई बार हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम ये कह भी देते हैं कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, और बाद में कुछ समय के बाद जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है तो हम फिर वही बात दोहराते हैं कि पहले मुझे ये फीलिंग आई थी लेकिन मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं। तो ये जो हमें सिक्स सेंस पावर हमें, और हर एक के पास ये सिक्स सेंस पावर होती है, इनफैक्ट जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी तो ये सिक्स सेंस पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है
0: जी।
1: क्योंकि उनके वो जो 5 ऑर्गन्स हैं जो एक हेल्दी व्यक्ति के पास सारी चीज़ें हैं लेकिन उनके पास उसमें कहीं ना कहीं मिस होता है, तो ये गॉड गिफ्टेड होता है कि उनको वो चीज़ फील होती है
0: जी।
1: ये सारी चीज़ें आप देखिए, इसमें जो 5 ऑर्गन्स जिसको मैंने बताया, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम स्पर्श करते हैं किसी चीज़ को, टच से पता चल जाता है कि रॉन्ग है या राइट है
0: जी,
1: जिसको आजकल बच्चों को भी सिखाया जा रहा है। अगर हम स्मेल से हमें पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ नेगेटिविटी है, वो स्मेल से भी उन चीज़ों को भाप सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे को सिर्फ हमने देखा नहीं है लेकिन हमारे माइंड में वो कहीं ना कहीं एक दृश्य बना देती है, तो वो दृश्य

0: भी है जो कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव की इंस्टीट्यूशन कराता है। तो ऐसे 5 ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे ये 5 इंद्रियां हैं, हाथ कान नाक मुंह, ऐसे इसी के ही उसमें स्किन है हमारी, जो स्किन भी हमें पता लग जाती है। कहीं आप देखिए कोई किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि जरा सा ठंडे में भी पता लग जाता है कि नहीं कुछ तो है यहाँ पर जो कि हमें वो फील हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं और इसको हम सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं कह सकते हैं, गट फीलिंग है। और इन चीज़ों पर हमें अगर ध्यान देंगे हम, तो हमें उस चीज़ का ये कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ से हमें एक गिफ्ट मिला हुआ है कि हमें पहले से ही चीज़ों को भांपने की एक हमें विधि मिलती है, बशर्ते हम उसको पहचाने और उसके अनुसार काम करें, रिएक्ट नहीं करें। लेकिन वो हमें एक चेतावनी दे रही है, तो सावधानी रखना तो गलत नहीं है, तो हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए। लेकिन टू मच में भी हम ऐसा ना हो जाए जो हर एक चीज को उसी नजरिए से देखने लग जाए, तो हमें उसको समझना है, उसे समझ करके फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करना है।
1: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। क्या डिटैचमेंट यानी कि वैराग्य जिसे हम कहते हैं, इससे फिजिकल रिलैक्सेशन इम्प्रूव होती है या नहीं, इस पे आप दोनों का क्या कहना है?
1: ये बिल्कुल इम्प्रूव होती है और बहुत वंडरफुली इम्प्रूव होती है। जिसका मैं छोटा सा एग्जांपल कहूँ कि आपके हाथ में आईफोन है, वो भी सबसे हाईएस्ट वर्जन का, जो सबसे लेटेस्ट, तो कितने का है ऑलमोस्ट आप बताएंगे जरा?
0: अप्रोक्स 1 लाख
1: ओनली लेटेस्ट,
0: उससे ज्यादा
1: ज्यादा ऑब्वियस ज्यादा है उससे। और आपको ये दिया गया है और लोकल में आप खड़े हैं, लोकल ट्रेन में,
0: ओके,
1: ठीक है, एंड यू आर गोइंग, जहाँ आपको पता है स्नैचिंग होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, धक्का लग रहा है, गिर सकता है, आपके हाथ में है वो,
0: जी
1: ठीक है, तो आप उसे कितने कॉन्शियसली पकड़ेंगे?
0: बहुत बहुत
1: बहुत ज्यादा, इनफैक्ट अपने को भी इतना केयरिंग से नहीं खड़ा करेंगे जितना उसको पकड़ेंगे। और उसको अगर एक घंटे तक आपको एज इट इज पकड़ के रखना है या फिर एक दिन पूरे के लिए एज इट इज पकड़ के रखना है, तो फिर आपका कैसा रहेगा हाथों का?
0: नहीं, फिर तो ये पेन करने लगेगा,
1: पेन करने लगा, तब वो मोबाइल आपको फिर पेनिंग फील होता है, जबकि वो सबसे ज्यादा अजीज चीज आपके पास है। सेम ये कई बातें हैं, कई लोग हैं, कई चीजें हैं जिनको हमने पकड़ कर रखा है अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में, लेकिन वो क्योंकि एक घंटे या एक मिनट के लिए नहीं पकड़ा है, पता नहीं कितने सालों से पकड़ा हुआ है
0: जी,
1: तो वो पेन हो रहा है। और वो पेन क्योंकि मैं इस चीज की आदी हो गई हूँ इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो पेन है
0: जी।
1: मुझे कई बार वो हिट भी करता है, लेकिन फिर क्योंकि मैं आदी हूँ तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन हिट हो रहा है। तो जब मैं उन चीजों को, जब मोबाइल को मैंने पर्स में रख लिया, मैंने परचेज किया पर्स और उसमें रख लिया, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ
0: जी,
1: तो उसी प्रकार से जब मैं लोगों के साथ, चीजों के साथ, बातों के साथ इस प्रकार से हैंडल करना सीखता हूँ कि हाउ टू हैंडल देम, तो यानी एक तरह का वैराग्य। हैंडलिंग इज नथिंग, हैंडलिंग इज एक अपने अंदर डिटैचमेंट की पावर बढ़ाने का बात होती है, कि मैंने जिसने, जिसका मुझे पता चला कि वो व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहता, तो मैंने अपने अंदर एक संकल्प डाला, क्योंकि वो भी

0: चीजों को तो जाना है, आज या कल वो जाना है, लेकिन कल जाता तो फिर मैंने उसे यूज कर लिया है तो मेरे को थोड़ा सा शायद रिलैक्स होता, लेकिन आज ये कि आज ही खरीदा था, आज चला गया, लेकिन अपने आप को फिर भी फिट करने के लिए मैं डिटैच हो सकता हूँ कि चीजों को आज नहीं तो कल जाना ही है, इसको इसी रीति से जाना था, ये एक चैप्टर है कि आगे से मैं इतना कॉस्टली नहीं लूंगा और अगर लूंगा तो इस तरीके से उसको नहीं उठाऊंगा। तो अपने अंदर मैंने फिर से एक हैंडलिंग जो इन्फॉर्मेशन गेन की, लेकिन एक तरह से ये डिटैचमेंट इन्फॉर्मेशन मैंने अपने अंदर गेन की है, और जितना मैं डिटैच होता चले जाता हूँ तो मैं चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, बातों के प्रति, अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, क्योंकि ये तीन चीज़ों में हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं
1: जी,
0: तो इन सब चीज़ों से जितना मैं डिटैच होता हूँ मैं उतना रिलैक्स रहता हूँ।
1: बिल्कुल सही बात है। ज्योति जी आप क्या कहेंगी इस पे?
2: सबसे पहले तो हमें डिटैचमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि डिटैचमेंट किसको कहते हैं।

0: जाए, मेरा बार बार उसी के पर हाथ ना जाए, इसको कहते हैं डिटैचमेंट। क्योंकि चेंज जरूरी है,
1: बिल्कुल।
0: कहीं पर भी टू मच में अटैचमेंट हमारे लिए दुखदायी हो जाता है, और जो लोग आगे नहीं बढ़ते वही दुख पाते हैं। इसीलिए हमें हर एक लाइफ की चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, हर रिलेशन को मैनेज करना है, लेकिन किसी के साथ हमें चिपकना नहीं है, क्योंकि वो हमें इरिटेट करेगा।
1: बिल्कुल सही बात। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: हमें सबको यही कहना है कि सबके साथ रहे, सबके साथ खुश रहे, लेकिन किसी के साथ ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ पर उसका इतना असर हो जाए कि हम अपने जीवन को जी ना सके।
1: क्या बात है,
2: इसका बहुत बड़ा क्लोजनेस है, और इसको जितना हम गंभीरता से लें बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे क्वेश्चन स्ट्रेस का है, रिलेशंस का है, चाहे वो किसी भी बात का है, लेकिन माइंड बॉडी का रिलेशन शुरू से अंत तक रहेगा, और इसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि अगर माइंड ने कुछ कहा और बॉडी ने उसको नहीं समझा तो बहुत बड़ा एक लॉस हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ को समझने के लिए टाइम दें, समय दें, अपने आप को वैल्यूबल रखें। कोई भी चीज़ आपको नीचे नहीं गिरा सकती है, याद रखिए सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को नीचे गिराते हैं या ऊपर उठाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति। थैंक यू।
3: तो ये थी आज की डिस्कशन माइंड बॉडी कनेक्शन पर बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी के साथ। आज की कॉन्वर्सेशन से एक बात जरूर समझ आती है, जब माइंड शांत और बैलेंस्ड होता है तो बॉडी भी उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने वैल्यूएबल थॉट्स शेयर करने के लिए। मैं हूं पलक, और आप सुन रहे थे नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: नंगे पैरी जान

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो।

0: खिलाना।
1: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
2: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
1: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
3: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
1: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
3: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
1: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी सक्सेस से नहीं बल्कि अपने इम्पैक्ट से याद किए जाते हैं। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनकी जर्नी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि हिम्मत भी चाहिए होती है। हे आई एम मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ऑन रेडियो महारानी। और आज संघर्ष की कहानी में मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसी वुमन की कहानी जिन्होंने उस वक्त एक चैलेंजिंग फील्ड चूज की जब वहाँ वुमन के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, फिर अपने एक्सपीरियंस को सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज किया। एक इंजीनियर, एक ऑथर, जिनकी कहानी हमें बताती है कि असली सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट तक नहीं सीमित होती बल्कि जब आपकी मेहनत और नॉलेज किसी और की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आए तब वो सक्सेस मीनिंगफुल बन जाती है। तो आज संघर्ष की कहानी में हम सुनेंगे कैसे इंस्पायरिंग जर्नी जहां स्ट्रगल है, करेज है और एक पर्पस के साथ जीने की कहानी भी है। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।

0: पड़ोसन हूँ, इसलिए जासूस हूँ।
1: बोलो सिमी बहन जी, तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए, हाय वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लों का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंड जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू संघर्ष की कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। वो हैं सुधा मूर्ति जी। सुधा मूर्ति जी का जन्म 19 अगस्त 1950 को सिंह गांव कर्नाटका में हुआ था। बचपन से ही उनका कनेक्शन बुक्स और लर्निंग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हबली से कंप्लीट की और इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की। और 1970s के दौर में जब इंजीनियरिंग फील्ड में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ करती थी, तब सुधा मूर्ति ने इस फील्ड में अपनी जगह बनाई। वो टाटा मोटर्स में काम करने वाली पहली फीमेल इंजीनियर्स में से एक बनी। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, एक मैसेज था कि टैलेंट और डेडिकेशन के सामने बैरियर्स ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते और आप अगर कुछ नया चूज करते हो कुछ करने के लिए तो उस चीज में आगे आपको सक्सेस जरूर मिलती है। तो कहानी में आगे क्या हुआ और उन्होंने आगे कहानी में अपनी जिंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाया, हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी 89.6 FM. आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका. और लिसनर्स, हर इंस्पायरिंग जर्नी में एक मोमेंट आता है जब इंसान डिसाइड करता है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या होगा. और सुधा मूर्ति जी की जर्नी भी सिर्फ करियर सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रही. उन्होंने टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपीरियंस लेने के बाद सोसाइटी के लिए काम करने का रास्ता चूज किया. 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत हुई, जिसके थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर जैसे एरियाज में काम किया गया. सुधा मूर्ति ने राइटिंग की दुनिया में भी अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाई. उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है और उनकी बुक्स जैसे वाइज एंड अदरवाइज, डॉलर बहू, 3000 स्टीचर्स एंड ग्रैंडमा बैग्स ऑफ स्टोरीज रीडर्स के बीच बहुत पॉपुलर रही हैं. उनकी राइटिंग की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि सिंपल स्टोरीज के थ्रू उन्होंने काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी जैसे वैल्यूज को हाईलाइट किया है. उनकी जर्नी के थ्रू हमें ये सीखने को मिलता है कि नॉलेज तब और पावरफुल बन जाती है जब वो दूसरों के लिए काम आए. तो किस तरह से सुधा मूर्ति जी की जर्नी आगे बढ़ी, हम सारी बातों पे बात करेंगे बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
0: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: जब का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
0: बाय बाय। हाँ हाँ हाँ।
2: किथे गई शराब की गड्डी?

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं कि हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड द होस्ट मोनिका। और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी की कहानी से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ लेसन मिलता है कि लाइफ में सक्सेस पाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सक्सेस के लिए अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो उसे यूज करिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए। और अगर चैलेंजेस आए तो उन्हें अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ का चांस समझिए, क्योंकि एक स्ट्रांग माइंडसेट और कंसिस्टेंट एफर्ट्स किसी भी ऑर्डिनरी जर्नी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे थे संघर्ष की कहानियां ऑन रेडियो महारानी। और आज का शो मेरा लास्ट शो है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। आप रेडियो महारानी के थ्रू और भी इंस्पायरिंग जर्नी सुनेंगे और भी इंस्पायरिंग कहानियां सुनेंगे किसी और होस्ट एंड दोस्त के साथ। फिलहाल आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका कर रही है शाइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। तो मुलाकात तो नहीं होगी, पर अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर शेयर कर सकते हैं। और आपकी कोई विश है, कोई इमोशंस है या कोई फीलिंग्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मोनिका लेती है आप सभी से विदा और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का बहुत ध्यान रखिए।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।

0: कहते हैं ना, दिल सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए भी हेल्दी होना चाहिए। इसी के साथ वेलकम टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्शवंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी जरूरी बातें आप तक लेकर आते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर घर और हर फैमिली से जुड़ा हुआ है, यानी मेंस हार्ट हेल्थ। और अगर बात की जाए हार्ट अटैक और हार्ट डिसीजेस, तो ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों तक लिमिटेड नहीं रहा है, बल्कि यंग एज में भी इसके काफी केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज जानेंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, और साथ ही क्या वो वार्निंग साइन है जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अरविंद फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। तो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में मेंस हार्ट हेल्थ की। और अगर बात की जाए हार्ट हेल्थ की, तो राइजिंग हार्ट अटैक डिजीज इन यंग मैन आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सर डॉक्टर, अगर हार्ट अटैक की बात की जाए, तो पहले हार्ट अटैक को सिर्फ बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो 30 से 40 साल की एज में भी हार्ट अटैक के केसेस काफी बढ़ गए हैं। सर डॉक्टर, आप ये बताइए कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, और साथ ही जितने भी यंग मैन आज हमें सुन रहे हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए।
1: थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो पोषण की पाठशाला। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टू लिसन दीज क्वेश्चंस जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, स्पेशली हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, जो यंगस्टर्स में आजकल एक फियर डेवलप हो गया है। मानिए कि यंग पेशेंट्स हम लोग आज से 10 साल पहले तक इतने हार्ट के नहीं देखते थे जितने आज की डेट में देखना शुरू कर रहे हैं। न्यूज़ भी आती है और हम लोग अपनी कैथ लैब में इमरजेंसीज में ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि 30 साल के, 25 साल के तक, 18 साल के तक पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक आया है। इस चेंज का क्या कारण है? सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में, अपने 10 साल की प्रैक्टिस में रियलाइज़ किया है, वो ये है कि यंगस्टर्स में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मतलब आज से 20 साल पहले इतने यंग एज में स्मोकर्स नहीं देखे जाते, आजकल की डेट में कॉलेज से लेके, इनफैक्ट कभी कभी मैं स्कूल के बच्चों को भी स्मोकिंग करते हुए देखता हूँ। दिस वन सिंगल थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट अटैक इन यंग मेल्स, स्पेशली। फीमेल्स भी खैर स्मोकिंग करती हैं, बट फिर भी कम कॉमन है, बट मेल्स की स्मोकिंग जो हार्ट अटैक करा रही है, और ये यंग एज के हार्ट अटैक्स हैं, ये बहुत ही चिंताजनक चीज़ है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी यंगस्टर्स हैं, प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज इट कैन किल यू एनी टाइम। इसके अलावा भी बहुत कारण रहते हैं जिसके कारण हार्ट अटैक, जिसे कहेंगे सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, जिसमें कि कार्डियोमायोपैथीज, चैनलोपैथीज, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां जो कि फैमिलियल चल रही होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, बट ये फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं मानता हूँ।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, यानी बढ़ती लाइफस्टाइल और हमारी रोज की आदतें हार्ट हेल्थ पर सीधा असर डाल रही हैं। इसी से जुड़ा एक और कॉमन मिथ है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिक ब्रेक। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद से मेंस हार्ट हेल्थ की। सो डॉक्टर, अगर हार्ट डिसीजेस की मैं बात करूँ तो बहुत सारे मिथ एंड रियलिटी है हमारे आसपास, इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। डॉक्टर, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम यंग हैं और फिट दिखते हैं तो हार्ट डिसीज का कोई रिस्क ही नहीं होता, तो डॉक्टर क्या ये सच में सही है? और साथ ही यंग एज में हार्ट को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की हेल्दी हैबिट जरूर अपने आनी चाहिए?
1: देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जैसा इंसान दिख रहा है बाहर से, अंदर भी क्या उसका शरीर स्वस्थ है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर जो है खाली स्किन से ही पता चल जाता है, स्किन के ग्लो से पता चल जाता है कि हेल्दी है, बट अगर ये अंदर कई बार ऐसी बीमारियां पनप रही होती हैं जिनको हम लोग कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, तो हमें लगता है हम हेल्दी हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे कि हम साइलेंट किलर कहते हैं। हमारी स्टडीज में देखा गया है कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन व्हिच इज अनकंट्रोल्ड, मतलब कि हर चौथा बंदा जो है उसको बीपी की बीमारी है और उसका कंट्रोल अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये बीपी अगर लंबे समय तक रहता है तो पहले 5 साल 6 साल कुछ नहीं कहता है, पर धीरे धीरे अंदर से शरीर को खोखला करता जाता है। ऐसी और भी कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर हम स्क्रीन नहीं करें, जिनको हम चेकअप नहीं कराएं रेगुलर, तो धीरे धीरे बॉडी को खाएंगी। इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, पर बाद में जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी।
0: तो डॉक्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज आपने हमें समझाई है, सिर्फ फिट दिखना ही हेल्दी हार्ट की गारंटी नहीं होती है। अब बात करते हैं उन वार्निंग साइन की जिन्हें टाइम रहते पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस पर भी बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: Nine point six FM. Good check.

0: शानदार सुरह के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद से मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। तो डॉक्टर, आप बात करेंगे वार्निंग साइन वी शुड नेवर इग्नोर। तो डॉक्टर, अगर बीमारियों की बात की जाए ना, तो हमारी बॉडी कई बार हमें बहुत पहले से सिग्नल देना शुरू कर देती है, लेकिन हम उन सभी सिग्नल्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर करने लगते हैं। ये बताइए, हार्ट अटैक के वार्निंग साइन क्या होते हैं? साथ ही अगर किसी इंसान को कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं अपनी बॉडी में, तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए?
1: देखिए, हार्ट अटैक का सिम्टम मैं अगर क्लासिकल सिम्टम बोलूं तो एक छाती पे दबाव, उसके साथ बाजू में भी ये दबाव जाना और गले में भी इसी दबाव का महसूस करना, ये एक क्लासिकल सिम्टम्स है। ये एसोसिएटेड विद स्वेटिंग, मतलब खूब सारा पसीना आना, घबराहट होना, इम्पेंडिंग डूम जिसे कहते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि मेरी मौत आ गई, ये वाली फीलिंग क्लासिकल सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूट करती है हार्ट अटैक के। पर 1/3 ऑफ द पेशेंट्स, मतलब एक तिहाई पेशेंट्स इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं। सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में हो रही है, किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, कोई बेहोश हो जाता है, किसी की धड़कन बढ़ रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ चेस्ट पेन नहीं होते हैं हार्ट अटैक में। तो मेरे विचार में ऐसा कोई भी सिम्टम जो अनयूजुअल लगे, जो उनको पहली बार महसूस हो, जिससे उनको की डर लगे, घबराहट हो, तो जरूर नजदीकी अस्पताल में एक बार ECG कराना चाहिए। बिकॉज अब जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि उम्र नहीं रही इस बीमारी की, अब मानिए कि पोस्ट कोविड कह लीजिए, वैक्सीन का असर कह लीजिए, या स्मोकिंग का असर कह लीजिए, या हमारे लाइफस्टाइल का चेंजेस कह लीजिए, पर इसकी कोई उम्र नहीं रही। बट हाँ, 25-30 साल के बाद ये बीमारी किसी को भी हो सकती। तो ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो जरूर नजदीकी अस्पताल में इमरजेंसी जाके ECG कराएं।
0: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने, यानी इमरजेंसी के वक्त सही इन्फॉर्मेशन और तुरंत एक्शन किसी की भी जान बचा सकता है, लेकिन प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो फिर इसी बात पर लाइफस्टाइल का रोल और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसको भी समझेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अभी बाकी है जून का जुनून। इस आग उगलती गर्मी से अगर खुद को है बचाना तो पानी को अमृत समझ पी जाना।
1: साथ आसमां जी रे, अब साथ समंदर पी रे, जल साथ सुरों में कर दे ये ऐलान।
2: सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रखो ख्याल। साइबर क्राइम में हैकिंग, फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग से हो जाओ सावधान। डू योर पार्ट, बी साइबर स्मार्ट।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे इंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। सो डॉक्टर, अब बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड हार्ट हेल्थ की, बिकॉज कहा जाता है लाइफस्टाइल एंड हार्ट हेल्थ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज की बिजी लाइफ में स्ट्रेस, लेट नाइट रूटीन, जंक फूड और एक्सरसाइज की कमी, ये सब हमारा खराब लाइफस्टाइल का पार्ट है। ऐसे में ये सब हमारे हार्ट को किस तरह इफेक्ट करता है, और साथ ही अगर किसी को सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज से शुरुआत करनी हो तो वो किन चीजों से शुरुआत कर सकता है?
1: थैंक यू अंजलि, आपने बहुत ही रिलेवेंट सवाल पूछा है। आजकल की जनरेशन के साथ जो कॉरपोरेट लाइफ के साथ जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है वो इज रियली डेंजरस एंड हार्मफुल टू आवर हार्ट। एंड मैं मानता हूँ कि लाइफस्टाइल में तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है गुड फूड विच मीन्स बैलेंस्ड फूड, गुड स्लीप एंड गुड एक्सरसाइज। ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन के बिना हम लोगों की लाइफ कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएगी। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा लाइफस्टाइल में स्लीप से, क्योंकि आजकल एक तो नाइट शिफ्ट्स हैं कॉर्पोरेट में, लेट वर्किंग आवर्स हैं, इसके बाद लोगों के नेटफ्लिक्स की एडिक्शन, चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की एडिक्शन, सोशल मीडिया की एडिक्शन, इसके कारण बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन इन स्लीप साइकिल हो रही है। लोग कभी सैटरडेज को 2 बजे सो रहे हैं और कभी अपने ऑफिस आवर्स में सो रहे हैं। जो स्टडीज में देखा गया है, अगर आप अपनी स्लीप के ड्यूरेशन को 7 आवर्स टू 9 आवर्स के बीच में नहीं रखते हैं, मतलब 7 आवर्स से कम सोते हैं, 9 आवर्स से ज्यादा सोते हैं, दोनों ही केसेस में हार्ट रिस्क बढ़ता है। दूसरा, नॉट ओनली द नंबर ऑफ आवर्स यू स्लीप, ऑल्सो द पैटर्न इन विच यू स्लीप मैटर्स। मतलब अगर मान लीजिए आप रात में 7 घंटे 12 से 7 सोते हैं, तो अगर उसमें आप ऑल्टर करके उसको 2 से 9 भी कर देते हैं तो भी रिस्क बढ़ता है। तो मतलब अगर 2 घंटे से ज्यादा ऑल्टर होता है स्लीप का टाइमिंग ड्यूरेशन जब आप सो रहे हैं उस टाइम, तो वो भी रिस्क बढ़ाता है। तो एक रेगुलर पैटर्न ऑफ स्लीप, हाँ वेरिएशन ऑफ 1/2 आवर 1 आवर चलता है, पर एक रेगुलर पैटर्न और एडिक्वेट स्लीप दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग स्लीप हाइजीन के नाम से कहते हैं। दूसरा, डाइट। देखिए कॉर्पोरेट में या कहीं भी आजकल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इतनी जॉब्स ट्रैवलिंग वाली हैं, बाहर खाना पड़ता है, बट यू हैव टू पिक वाइजली, बिकॉज बाहर का तला हुआ खाना और लॉट ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट रिच, लॉट ऑफ शुगर रिच ड्रिंक्स या फूड, ये सब इतनी कॉमनली अवेलेबल है आजकल बाहर में, और हेल्दी ऑप्शंस अभी भी हमारे कंट्री में बहुत कम है, और इफ यू वांट तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। तो आई वुड

0: सब चीज़ें आपको अवेयर करेंगी और आप फिर उन ड्रिंक्स को या उन फूड्स को अवॉइड कर पाएंगे। तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी डाइट। लाइफ के लिए हेल्दी एक्सरसाइज, एडिक्वेट एक्सरसाइज, विच आई वुड कॉल एज 30 मिनट्स ऑफ मिनिमम गुड लेवल एक्सरसाइज, नॉट 30 मिनट्स ऑफ टहलना। 30 मिनट टहलने से दोस्त बनेंगे, हार्ट हेल्थ नहीं अच्छी होगी। पर अगर आपको अच्छी हार्ट के लिए एक्सरसाइज करनी है तो 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इज बेयर मिनिमम। इससे स्लीप भी अच्छी आएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी घटेंगे, बॉडी वेट भी मेंटेन होगा, एंड यू विल फील फिट एंड एनर्जेटिक ऑल्सो एंड पॉजिटिव बिकॉज ऑफ गुड हॉर्मोन्स।
1: डॉक्टर से कहा जाता है छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, और जब बात लाइफस्टाइल की हो तो न्यूट्रिशन इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। और इसी बारे में बात करेंगे लेकिन वापस आकर, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद। तो डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ डाइट फॉर अ हेल्दी हार्ट, तो वो क्या होनी चाहिए? ये और अक्सर पोषण की पाठशाला में हम न्यूट्रिशन की बात जरूर करते हैं, क्योंकि सही पोषण ही अच्छी सेहत की बुनियाद होती है। तो डॉक्टर, ये बताइए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए डेली डाइट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जरूर शामिल होनी चाहिए, और साथ ही किन फूड्स को लिमिट या अवॉइड करना चाहिए?
1: डाइट में आजकल बहुत कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, एक साइंस है उसके पीछे। पर मैं सबसे मूल चीज समझने वाली ये है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है खाने की, वो समझना सबसे जरूरी है। आज की डेट में प्लेट में जितना भी पड़ा है उसको खा लेना ठीक नहीं है, अपनी डाइट काउंट करनी जरूरी है। तो आमतौर पे एक फीमेल को 2000 किलो कैलोरीज चाहिए और एक मेल को 2500। सो इस कैलोरी काउंट से हम लोग अगर चलें और इसको डिवाइड करें, कि ऐसा नहीं कि ये जो कैलोरीज हैं ये सारी की सारी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लें, तो अराउंड से 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए, 20% फैट होना चाहिए। इसमें भी जो फैट 20% है उसमें 6% या 7% ही अराउंड घी वाला, जो सैचुरेटेड फैट जिसे कहते हैं, घी हो सकता है। तो ये एक बैलेंस डाइट कॉन्स्टिट्यूट करती है। और इसके अलावा हमें अगर ज़्यादा अपने डाइट को, मतलब पेट को भरने लायक डाइट बनाना है, तो उसमें हमें ऐड करना चाहिए रफेज, जैसे सलाद हो गया और इसी तरह की प्लांट बेस्ड चीज़ें, जो कि हम लोगों का पेट भरें पर ज़्यादा कैलोरीज ना दें। ये तो हुई बात कैलोरीज की।

0: अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर जो है दिन में 2 स्पून या 3 स्पून से ज़्यादा हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए, तो इट्स नॉट गुड फॉर फॉर योर अ लॉट ऑफ थिंग्स। डायबिटीज़ में रिस्क बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वेट बढ़ता है और हार्ट का रिस्क भी बढ़ता है। तो शुगर्स को इज द न्यू पॉइजन कहा जाता है आजकल। तो जो वाइट थिंग्स हैं, सॉल्ट वाइट, शुगर वाइट एंड मिल्क ऑल्सो इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू ज्यादा इन लार्ज क्वान्टिटी। तो इन तीन चीजों से बचें, और बाकी अगर मिल्क लेना है तो आप स्किम्ड मिल्क लें, क्रीम पार्ट है, फैट निकला हो तो उसको आप ले सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रेफर सी फूड मोर देन योर जो आप मटन या वो खाते हैं। जो पोल्ट्री में भी है तो उसमें एग्स खाना इज गुड, बट उसका जो बीच का योक है उसको निकाल के खाएं, दैट यू कैन कंज्यूम एंड दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की है। सही डाइट न सिर्फ हार्ट को हेल्दी रखता है बल्कि कई सीरियस डिसीजेस का रिस्क भी कम कर सकता है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ के ऊपर। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद। डॉक्टर, अब बात करते हैं साइलेंट किलर्स एंड रेगुलर चेकअप्स की। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर कहा जाता है। सो ऐसे में इनका हार्ट डिसीज से क्या कनेक्शन है और साथ ही किस एज से रेगुलर हार्ट चेकअप्स कराना शुरू कर देना चाहिए?
1: हाँ, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है अंजलि। आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को, हमारे जो लोग हैं उनको नहीं पता ये बात कि 20 साल की उम्र से हर साल इंसान को अपना बीपी नापना चाहिए। साल में एक बार ही सही, पर बीपी नापना जरूरी है। उसमें अगर रीडिंग ज्यादा आए तो बार बार भी नापना चाहिए, पर अगर वो नॉर्मल है तो अगले साल नापना चाहिए। तो बीपी को मेजर हमेशा 20 साल की उम्र से हर साल करना चाहिए नियमित तौर पे, क्योंकि बीपी ज्यादा होने के कोई सिम्टम्स नहीं आते। कोई लोग कहते हैं कि बीपी से सरदर्द हो गया, पर यूजुअली बीपी से सरदर्द तभी होता है जब बीपी 200 के पार चले जाता है, और तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। तो बीपी को जरूर नापें हर साल। हर एक यंग आदमी जो कि हेल्दी भी महसूस करता है, जिसको कोई तकलीफ भी नहीं है, उसके बावजूद भी उसे हर साल बीपी नापना चाहिए। दूसरा, आपने बोला डायबिटीज। आमतौर पर यूजुअली रिकमेंडेशंस कहती हैं कि 30 से 35 साल के बाद हर साल शुगर नापना है, पर मैं इसमें डिफर करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि इंडिया जो है डायबिटीज कैपिटल बन गई है वर्ल्ड की। मतलब सबसे ज्यादा डायबिटीज की बीमारी इंडिया में है आज की डेट में। तो ऐसे में हम लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रिवेंशन के लिए 25 साल से 30 साल के बीच में हर साल शुगर नापना शुरू करना चाहिए, और अगर शुगर ठीक आ रहा है तो साल साल पे नापें। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को 20 साल से नापें, एक बार 20 साल पे नाप लें, अगर ठीक आता है तो हर 4-4 साल पे भी नाप सकते हैं, पर बीपी और शुगर हर साल पे नापें 20-25 साल की उम्र से।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, रेगुलर चेकअप्स और टाइम पर डायग्नोसिस बहुत सी प्रॉब्लम से हमें बचा सकता है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए और फटाफट से आज ही अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, एक चेकअप कराइए और अपना ध्यान रखिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: क्या?
1: नहीं
0: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: आप बात में यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, ट्यूब लाइट
0: गिर गया। साले इतने हंसाए तू क्यों गया?
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
0: क्यों
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
0: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब

0: शानदार सुरेख के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर, आज हमने पोषण की पाठशाला में जाना है किस तरह से मेंस को अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही हेल्दी हार्ट की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। तो आज आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, साथ ही आज से ही अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिनका डेली ध्यान रखना चाहिए और साथ ही अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए।
1: 5 हेल्दी हैबिट्स। द फर्स्ट वन डेफिनेटली ऑन माय लिस्ट इज अ गुड 5-7 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड देन सेकंड गुड हैबिट इज गुड हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज 5 डेज अ वीक एट लीस्ट। थर्ड, गुड ईटिंग हैबिट्स व्हिच कंस्टिट्यूट्स ऑफ बैलेंस्ड गुड प्रोटीन डाइट, एंड फोर्थ, गुड मेंटल हेल्थ विच इंक्लूड्स डी-स्ट्रेसिंग योरसेल्फ विद मेडिटेशन, योगा, एंड फिफ्थ वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप स्मोकिंग। थैंक यू वेरी मच अंजलि, एंड इट वॉज ग्रेट टाइम। आई होप आई वॉज यूजफुल टू यू एंड एवरीबडी लिसनिंग।
0: जी डॉक्टर, तो दोस्तों आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हेल्दी हार्ट सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल और सही न्यूट्रिशन से भी बनता है। यानी छोटे छोटे चेंजेस जैसे बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मैनेज करना और टाइम पर हेल्थ चेकअप करवाना हमारे दिल को लंबे टाइम तक हेल्दी रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज हमें रेडियो महारानी के पोषण की पाठशाला में ज्वाइन किया डॉक्टर अरविंद, अ कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। फिलहाल अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर ये ट्रैक। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: जीने का तरीका तुझे सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुझे सुनाते हैं।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने, बागा मा बोले आधी रात।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ फिर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सोचिए, एक 14 साल की लड़की जिसे कभी बॉक्सिंग पसंद थी, कभी स्केटिंग, कभी टेनिस, अचानक एक दिन बंदूक उठाती है और कुछ ही सालों में दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का नाम रोशन कर देती है। लेकिन इस सफर में एक ऐसा मोड़ भी आया जहां पूरा देश उसे असफल मान चुका था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं मनु भाकर की। 18 फरवरी 2002 हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में जन्मी मनु भाकर बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। उनमें एक चीज कॉमन थी, हर काम में सबसे आगे निकलने की जिद। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने बॉक्सिंग की, मार्शल आर्ट सीखी, स्केटिंग में हिस्सा लिया और टेनिस भी खेला। ऐसा लगता था कि खेल कोई भी हो, मनु उसमें अपनी पहचान बनाई लेंगी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उन्होंने शूटिंग रेंज देखी, पहली बार हाथ में पिस्टल पकड़ी और यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। दिलचस्प बात यह है कि शूटिंग बहुत महंगा खेल माना जाता है, लेकिन मनु के परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और पूरा साथ दिया। मनु ने ट्रेनिंग शुरू की और बहुत जल्दी सबको एहसास हो गया था कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। जहां कई खिलाड़ी सालों तक नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, वहीं मनु ने बेहद कम समय में अपने खेल से सभी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना है। और शायद उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ सालों में वो भारतीय शूटिंग की सबसे बड़ी स्टार बनने वाली है। लेकिन स्टार बनने से पहले उन्हें दुनिया को साबित करना था कि वो सिर्फ एक टैलेंट नहीं बल्कि एक चैंपियन है। और कैसे बनी वो चैंपियन करेंगे इसके बारे में बात, कैसे वो पहुंची इंटरनेशनल स्टेज तक, सब कुछ करेंगे बाद, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

जिस उम्र में ज्यादातर स्टूडेंट स्कूल असाइनमेंट्स और एग्जाम की टेंशन ले रहे होते हैं, उस उम्र में एक इंडियन गर्ल इंटरनेशनल स्टेज पर रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी। साल था 2018। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं मनु भाकर की। मनु भाकर नेशनल लेवल पर अपना नाम बना चुकी थी, लेकिन अब उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रूव करना था। मौका मिला कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का, जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हो रहे थे। पूरे इंडिया की नजरें इस यंग शूटर पर टिकी हुई थी। प्रेशर बहुत था और एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज्यादा थी, लेकिन मनु ने प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि कंपटीशन के रिकॉर्ड्स तक हिल गए।

कप में भी गोल्ड मेडल जीता और दुनिया के टॉप शूटर्स को चैलेंज कर दिया। अब उन्हें इंडियन शूटिंग का फ्यूचर स्टार कहा जाने लगा। हर तरफ एक ही डिस्कशन था, क्या ये लड़की ओलंपिक मेडल भी ला सकती है? अनु का कॉन्फिडेंस पीक पर था, वो किसी बड़े नाम से नहीं डरती थी। टारगेट चाहे कितना भी टफ हो, उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता था और वो है परफेक्ट शॉट। लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में सक्सेस कभी परमानेंट नहीं होती, कभी कभी एक ही दिन सब कुछ बदल देता है और मनु की लाइफ में भी वो एक दिन आने ही वाला था, एक ऐसा दिन जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगी। कौन सा था वो दिन, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा। आप

0: पूछा जा रहा हूँ। सवाल है पानी की एक बूंद भी दिखी हो। चल मिठू बस थोड़ी देर और।
1: गाय हमारी माता है तो बोलते हैं, तो फिर इस मम्मी को पानी भी तो पिला ही सकते हैं। उफ, देख क्यों नहीं रहा ये पानी।
2: ओह नो, ये प्लेट में तो पानी ही नहीं है। अले दूसरा भी खाली है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं?
3: गर्मी सिर्फ हमें ही नहीं

बेजुबानों को भी सताती है जो बिन घर और खाने के रोज भटकते हैं। तो ये समझते हुए क्या आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रखेंगे? सड़क किनारे, बालकनी, छत या घर के बाहर, जगह नहीं इंटेंशन ढूंढो। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कभी कभी सालों की मेहनत एक ही पल में बिखर जाती है, और मनु बाकर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब पूरा देश उनसे मेडल की उम्मीद लगाकर बैठा था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन शूटर मनु भाकर की। साल था 2021, टोक्यो ओलंपिक्स, हर एथलीट का सबसे बड़ा सपना, और मनु भाकर इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मेडल कंटेंडर्स में से एक मानी जा रही थी। करोड़ों इंडियंस को उनसे मेडल की उम्मीद थी। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी कहानी बदल दी। मैच के टाइम पर उनकी पिस्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। ओलंपिक्स जैसे स्टेज पर हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। समय निकलता गया, प्रेशर बढ़ता गया, और मनु का रिदम टूट गया। रिजल्ट आया और वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। जो एथलीट मेडल फेवरेट थी वो पोडियम से बहुत दूर रह गई। सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, लोग क्वेश्चंस पूछने लगे। कुछ लोगों ने तो उनकी कैपेबिलिटी पर भी डाउट करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि एक यंग एथलीट के दिल पर क्या बीत रही थी। ओलंपिक से खाली हाथ लौटना उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। यह सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, यह उन सपनों का टूटना था जो उन्होंने बचपन से देखा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग हार के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग हार को अपनी कमबैक स्टोरी बना देते हैं। मनु ने दूसरा रास्ता चुना, और आगे कैसे उन्होंने दुनिया के मन से डाउट को खत्म किया, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

सबसे मुश्किल बैटल कभी कभी ग्राउंड पर नहीं बल्कि अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, और टोक्यो के बाद मनु भाकर को वही बैटल जीतनी थी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं मनु भाकर की। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मनु के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो डिसअपॉइंटमेंट में डूब जाती या फिर वापस उठकर दुनिया को जवाब देती। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हुई, गलतियों का एनालिसिस हुआ, मेंटल स्ट्रेंथ पर काम हुआ, हर दिन एक नए मिशन की तरह था। उनका गोल बहुत सिंपल था, वापस आना और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आना। अगले कुछ सालों में मनु ने लगातार कॉम्पिटिशन खेले, हर टूर्नामेंट उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा और स्ट्रांग बनाता गया। अब वो सिर्फ टैलेंटेड शूटर नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट बन चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। क्रिटिक्स धीरे धीरे चुप होने लगे और सपोर्टर्स को लगने लगा कि मनु की बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आनी बाकी है। अब सारी नजरें पेरिस ओलंपिक्स पर थी। एक सवाल सबके दिमाग में था, क्या मनु भाकर अपनी अधूरी ओलंपिक स्टोरी को कंप्लीट कर पाएंगी? जवाब जल्दी मिलने वाला था और वो जवाब हिस्ट्री बनाने वाला था। कैसे, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान।

ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

0: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो, वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है, तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना?
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं, एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरिस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।

जिस एथलीट को टोक्यो के बाद लोगों ने अंडरएस्टिमेट कर दिया था, उसने पेरिस में ऐसा कमबैक किया कि पूरा देश खड़े होकर तालियां बजाने लगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन शूटर मनु भाकर की। पेरिस ओलंपिक्स 2024, मनु भाकर अब पहली वाली यंग प्रोडिजी नहीं थी, अब वो स्ट्रगल, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुकी थी। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, प्रेशर फिर से था, एक्सपेक्टेशंस फिर से थी, लेकिन इस बार मनु मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार थी। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट, मनु भाकर ने ओलंपिक मेडल जीत लिया। पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली एथलीट बन गई जो कि एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल्स जीतने में सक्सेसफुल रही। ये सिर्फ मेडल्स नहीं थे, ये टोक्यो के दर्द का जवाब था। ये उन सब लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने अंडरएस्टिमेट किया था, और सबसे बड़ा जवाब था उनके खुद के लिए। आज मनु

0: की कहानी हमें एक सिंपल लेसन देती है, कभी कभी जिंदगी आपको गिरा देती है, कभी कभी सपने टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो वही टूटे हुए सपने एक दिन हिस्ट्री बन सकते हैं। और इसीलिए मनु भाकर एक शूटर नहीं, एक कमबैक स्टोरी है, एक इंस्पिरेशन है और एक नाम है जो इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। हमारा नंबर है 9654896896। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। रेडियो महारानी के नाम से आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, you are not ready for this.

अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये। हम एक ऐसी महिला से बात करेंगे जिनका वर्ष 2017 में अंग प्रत्यारोपण हुआ और जिन्हें एक अनजान व्यक्ति और परिवार द्वारा बिना किसी संकोच के किए गए अंगदान ने एक नई खुशहाल जिंदगी दी। सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: नमस्कार दोस्तों, ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका फिर से स्वागत है। आज ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ स्टूडियो में है और वे श्रीमती जया जी से बात कर रही हैं, जिनका वर्ष 2017 में किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दे का प्रत्यारोपण हुआ है। एक अंगदाता ने जया जी के जीवन को एक नई रोशनी दी, तो चलिए अंगदान से जुड़ी उनकी कहानी जानते हैं।
1: शुक्रिया पायल। नमस्कार दोस्तों, मैं ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जया जी, जो हमें अंगदान से जुड़े अपने जीवन के एक पड़ाव से रूबरू करवाएंगी। जया जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे श्रोताओं के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद।
2: मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद गीतिका जी।
1: जया जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें।
2: मेरा नाम जया है, मेरी उम्र 32 वर्ष है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें मेरे हस्बैंड हैं जो आर्मी में हैं और एक 6 साल का बेटा है।
1: जया, तो आपको क्या बीमारी हुई थी और आपने सबसे पहले ऐसे कौन से लक्षण देखे थे जिससे आपको किसी बीमारी के होने का शक हुआ?
2: मुझे बताया गया था कि मुझे CKD हुआ है, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, मतलब मेरी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसका कारण मुझे एक दूसरी बीमारी बताई गई थी ल्यूपस नेफ्राइटिस करके। शुरुआती लक्षणों में मुझे ये दिखाई दिया कि मुझे लगातार बुखार आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, मैं बहुत ही ज्यादा वीक फील करती थी, बहुत जल्दी मुझे थकान लग जाती थी, भूख लगना मुझे बंद हो गई थी और मेरा धीरे धीरे वजन भी कम होने लगा था।
1: तो ये जो बीमारी है ये कौन से वर्ष में हुई थी जया?
2: ये बीमारी मुझे 2015 में हुई थी। जैसे मैंने बताया कि जनवरी 2015 से मुझे लक्षण जो है वो आने लग गए थे, पर धीरे धीरे मैंने जब ये देखना शुरू किया कि मेरी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा है, तो फिर मैं डॉक्टर से मिली। वहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको किडनी की बीमारी हो चुकी है।
1: तो क्या ये आप पहली बार जब आप डॉक्टर से मिली तभी आपको पता चल गया था, या क्योंकि आमूमन देखा गया है कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए भी एक लंबा समय लग जाता है कहीं कहीं पर, तो आपके साथ क्या अनुभव रहा?
2: जी नहीं, मेरा एकदम से तो नहीं पता चला, क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपको पता करना है कि आपकी किडनी का सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। जब मैं अपना शुरुआत में अपना टेस्ट करवाने गई थी तो मुझे मलेरिया की दवाई दे दी गई थी कि आपको मलेरिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप ये दवाई ले लीजिए, बट जब दवाई लगातार लेते हुए भी मुझे अपने अंदर कोई सुधार महसूस नहीं हुआ, तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप दूसरे बड़े हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। फिर मैं देहरादून गई, अपने मम्मी पापा के पास देहरादून गई, वहाँ के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। वहाँ कई टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हाँ, मेरी जो किडनी है वो खराब हो चुकी है, ऑलमोस्ट मतलब 70% मेरी किडनी खराब हो चुकी थी उस टाइम तक।
1: और इस सब प्रक्रिया में कितना समय लगा होगा आपको?
2: करीबन मुझे 1 महीना लग गया था पता करने में
1: कि आखिरकार बीमारी क्या है।
2: हाँ जी, आखिर बीमारी क्या है, 1 महीना मुझे लग गया था।
1: और ऐसे में आपके लक्षण जो है वो बिगड़ते जा रहे थे कि कैसे आप अपने परिवार के साथ कोप अप कर रही?
2: देखिए, ऐसे में मेरे जो लक्षण थे वो बराबर जारी थे। मुझे वॉमिटिंग की जो फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो बहुत ज्यादा मतलब हद तक कम हो गया था, मैं जो भी खाती थी वो मुझे पचता नहीं था, मैं किचन में जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि खाना बनाते हुए जो तड़के की जो स्मेल होती है इतनी स्ट्रॉन्ग लगती थी कि मैं खाना भी नहीं बना पाती थी, बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। तो इस दौरान बहुत ही मुश्किल से मैंने अपना ये फेज निकाला है।
1: यहाँ पर जया, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आकर आपकी आगे की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, हम थोड़ी ही देर में फिर लौटते हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं और विक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में। मैं डॉक्टर दीपिका वशिष्ठ हूँ और मेरे साथ है एक खास मेहमान जया। तो जया जी, हमने जाना कि कैसे सही बीमारी का पता लगाने में आपको एक लंबा समय लगा, जिस कारण इलाज भी सही नहीं हुआ। आपको पहले मलेरिया की दवाई दे दी गई, सही डायग्नोसिस न होने के कारण आप विभिन्न लक्षणों से जूझती रही। तो जब आपको डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है जिसके कारण आपको इतनी तकलीफ हो रही है, अचानक आपके मन में क्या आया और उसके बाद आपने क्या किया?
2: जब मुझे पहली बार पता चला कि किडनी खराब हो चुकी है, डॉक्टर्स ने बताया कि अब 70% हमारी मेरी किडनी जो थी वो खराब हो चुकी थी। तो पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, कहाँ जाएं, क्योंकि इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था हमारे पास, कुछ पता ही नहीं था। एक छोटे शहर से हम आते हैं तो इन सब चीजों, छोटे शहरों में जो है इन बीमारियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जब हमें पता चला कि जो मेरी किडनी है वो खराब हो चुकी है, तब जिस डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया था कि हाँ आपकी किडनी खराब हो चुकी है, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जो है अपना इलाज, जो अपना ट्रीटमेंट जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल से करवाएं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे। हम अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आरआर में या बेस हॉस्पिटल में हमें अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट मिल सकते हैं। उनके सजेशन से जब उन्होंने सजेस्ट किया तो हमें लगा कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। तो हम देहरादून के मिलिट्री हॉस्पिटल में गए, फिर वहां से हमने मुझे दिल्ली बेस हॉस्पिटल के लिए रेफर करवाया गया। तो 15 मई 2015 को मैं दिल्ली पहुंची थी। वहाँ मेरा जो रिपोर्ट थी वो डॉक्टर कर्नल श्रीनिवासन सर ने देखी थी, तो मेरी रिपोर्ट देखते ही उन्होंने मुझे डायलिसिस पे डाल दिया था, क्योंकि मेरा जो क्रिएटिनिन था उस समय 10 पे पहुंच चुका था, और बोला कि 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाने को कहा गया, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन था मेरा उस समय 4 पे आ गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जाता है किसी के लिए भी। फिर बाद में कर्नल श्रीनिवासन सर ने मुझे वहीं बेस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया ताकि मेरी किडनी किस वजह से फेल हुई है इसका कारण का पता चल सके, क्योंकि 3 मेन कारण माने जाते हैं किडनी फेल होने के। एक तो हो गया आपका हाई बीपी, दूसरा डायबिटीज, और तीसरा कोई फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी रही हो तो आपका हो सकता है कि किडनी खराब हो जाए। बट मेरे केस में ये तीनों ही जो कारण थे वो मिसिंग थे। तो जब ये तीनों कारण मेरे उसमें नहीं, मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं पड़ रही थी, तो मेरे काफी टेस्ट करवाए गए। मुझे बीच में आरआर भी रेफर किया गया कि आरआर में जाके आप कुछ टेस्ट करवाइए ताकि हमें पता चले कि किडनी जो है वो आपकी किस वजह से खराब हुई है। और ये प्रोसेस करने में कम से कम 2-3 महीने लग गए कारण का पता करते करते कि मेरी किडनी क्यों खराब हुई। इस बीच मुझे सीवियर एनीमिया भी हो गया, जिसमें मेरी जो खून की कमी थी वो लगातार, मेरा जो खून हीमोग्लोबिन था वो लगातार मेरा गिरता जा रहा था। ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों गिर रहा है, किस क्या कारण है। तो इस बीमारी का पता लगाने के लिए भी मुझे आरआर में रेफर कर दिया गया, जिसमें मुझे रिमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर किया गया, और रिमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में मुझे ल्यूपस के लिए रेफर किया गया। तो तीनों डिपार्टमेंट में मुझे दिखाना पड़ा, डॉक्टर्स को बार बार अपनी रिपोर्ट्स को दिखाती थी मैं। डॉक्टर्स ने मैं समझाया, बीमारी के बारे में जानकारी दी और बताया कि हाँ इन बीमारियों को क्योर किया जा सकता है, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है।
1: तो ऐसे में आपके परिवार को जब आपकी बीमारी का पता चला, और उनका क्या एकदम से रिएक्शन आया जब उनको पता चला कि आपको ऐसी बीमारी है और किडनी जो है वो खराब हो गई है?
2: पहले तो जब पता चला तो सब शॉक में आ गए कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। ये पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, कैसे बीमार पड़ गई। तो पहला रिएक्शन तो यही था। फिर जब धीरे धीरे जब हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ खराब हो चुकी है, अब हमें इलाज की तरफ ध्यान देना है, ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना है, तब मेरे परिवार मेरा साथ खड़ा था, हर मुश्किल में मेरे साथ था। ये सबसे बड़ी बात थी कि हाँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे मॉरली भी सपोर्ट किया कि हाँ तुम सिर्फ अपने अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी का हम देख लेंगे।
1: जब जैसे कि आपने बताया कि आपकी बीमारी के समय आपके परिवार ने और आपके हस्बैंड ने आपका बहुत साथ दिया, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूरी जर्नी में। तो आमतौर पर किडनी डोनेशन की जब बात आती है, हमारे देश में अधिकतर केसेस में परिवार का ही कोई सदस्य किडनी डोनेट करता है, तो आपके केस में क्या ऐसा कुछ हुआ कि कोशिश की गई हो लिविंग डोनेशन के लिए?
2: जी, जब पता चला कि मेरी किडनी खराब हो चुकी है। तो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो ट्रांसप्लांट का है, आप ट्रांसप्लांट करवा दीजिए तो आपकी लाइफ जो है वो ज्यादा बेटर रहेगी। बट इस केस में भी हमें दो ऑप्शन दिए गए कि आप अगर आपकी फैमिली से अगर कोई डोनर आता है, यानी लिविंग डोनर आता है जो सामने से अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए रेडी हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो फैमिली से डोनर आपको देता है उसके मैच करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें मेरे जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी पापा दोनों रेडी हो गए कि हाँ हम देने को तैयार हैं, आप हमारा टेस्ट कर लीजिए, हम आपकी बेटी को किडनी देने के लिए तैयार हैं। बट बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हुए, मैच नहीं हुई मेरे केस में, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी किडनी मैच नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा मेन जो मुद्दा था वो था ब्लड ग्रुप का। तो मेरे पेरेंट्स से मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता था, तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है।
3: तो चाहते हुए भी आपके पेरेंट्स जो है वो आपको किडनी डोनेट नहीं कर पाए?
2: नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत मेडिकल इश्यूज आई थी। पहले तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच करता तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। उसमें एक और थेरेपी होती है जिससे आप आजकल आ चुकी है एक थेरेपी, जिससे आप दूसरे ब्लड ग्रुप में भी किडनी को ले सकते हैं। बट बहुत सारी मेडिकल, मेरी कंडीशन में मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत आई थी जिस वजह से मेरे पेरेंट्स डोनेट नहीं कर पाए।
3: जया, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी गए और अभी आए छोटे से ब्रेक के बाद और बताएंगे कि कैसे जया जी को एक नया जीवन मिला। तो सुनते रहिए कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
4: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: ही अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जया जी से, जिनका 2017 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। जया, आपने ब्रेक से पहले बताया कि कैसे आपको अपनी बीमारी का पता चला और कैसे आपके परिवार के सदस्यों ने आपको सहारा दिया, और ये बात साफ हो गई कि बहुत चाहते हुए भी किन्हीं मेडिकल कारणों की वजह से आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति अंगदान नहीं कर पाया। ऐसे में आपके मन में क्या ख्याल आया और आपको क्या लगा कि कैसे इलाज होगा?
2: पहले तो सारी होप ही हमारी जो थी वो खत्म हो चुकी थी कि अब क्या होगा। अब सेकंड होप हमारी बच गई थी कैडेवर डोनर की। कैडेवर डोनर ये था कि कोई अगर एक्सीडेंट या डेथ केस अगर हॉस्पिटल में आता है मेरे ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ तो वो हमें कॉल करें, तब जाके हमें लाया जाएगा और हमारा जो है उसके साथ हमारा टेस्ट किए जाएंगे। ट्रांसप्लांट के जो प्रोसेस के टेस्ट होते हैं उसके बाद हमें किडनी दी जाएगी, बट ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। क्या पता आपके ब्लड ग्रुप का डोनर आए ना आए, बहुत मुश्किल से जो हम जो कहते हैं ऑर्गन डोनेशन जो है वो हमारे इंडिया में वैसे भी बहुत कम है, तो कैडेवर लिस्ट जो आप कह सकते हैं बहुत लंबी जाती है। बहुत सारे लोग वेटिंग पे होते हैं कि हमें मिल जाए। तो ये जो हमारे मन में पहला विचार मेरे मन में आया कि अब तो बहुत मुश्किल है, अब सारी लाइफ मुझे शायद डायलिसिस से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी वैसे बहुत रेयर था तो इस वजह से मुझे किडनी मिलना तो मतलब इम्पॉसिबल लग रहा था।
1: तो अभी जैसे आपने बोला कि आपको लगा कि शायद सारी उम्र आपको डायलिसिस पर रहना पड़ेगा, तो आपके इलाज में डायलिसिस का एक अनुभव कैसा रहा? मतलब बीमारी का पता चलने के बाद और ट्रांसप्लांट होने तक उसके बीच में डायलिसिस के साथ कैसा नाता रहा?
2: जी, डायलिसिस जो है किडनी में जो मेन इलाज हम कह सकते हैं वो डायलिसिस होता है, इम्पोर्टेंट जो होता है वो डायलिसिस होता है। और जो ह्यूमन डायलिसिस होता है जो मशीन के द्वारा किया जाता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिस्टुला, और फिस्टुला के साथ भी मेरी बहुत बड़ी कहानियां जुड़ी है कि मेरे बीच बहुत लो रहता था तो जो मेरे फिस्टुला हैं वो या तो बहुत धीमा काम करते थे या बिल्कुल ही बंद हो जाते थे। कई बार मेरी दो बार मुझे फिस्टुला बनवाने पड़े, उसमें भी मेरे कई बार उन्हें ओपन करने के लिए मेरी सर्जरी हुई कई, पर ये जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक डेढ़ साल तक मुझे फिस्टुला पे रखा गया, खींच खींच के, मतलब कह सकते हैं कि खींच खींच के उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा इसे डायलिसिस किया। बट जब ये सब सक्सेस नहीं हुआ तो डॉक्टर कर्नल सतीश मंडल का, उस समय जिन्होंने मेरा केस लिया था श्रीनिवासन सर के बाद जिन्होंने मेरा केस लिया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप सीएपीडी करवा लीजिए। सीएपीडी हम कह सकते हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप सीएपीडी करवा लीजिए। सीएपीडी हम कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि वाटर डायलिसिस, वो थोड़ा इजी होता है ह्यूमन डायलिसिस से, उसमें रिस्ट्रिक्शन कम होती है आपके लिए। ह्यूमन जो डायलिसिस होता है उससे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आपकी कम होती है, पर बहुत हद तक मुझे जो कहते हैं कि सुई चुभने से मुझे बहुत डर लगता है तो उससे मुझे काफी आजादी मिल गई थी जब मैंने अपना सीएपीटी करवाया था। और इसी दौरान मेरे पापा का भी टेस्ट चल रहे थे हमारे ट्रांसप्लांट प्रोसेस के लिए, पर क्योंकि मेरे मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुए थे, मैंने बताया था कि मेरी सीवियर एनीमिया थी तो मुझे हर बार ब्लड की जरूरत होती थी, तो मेरा जो पीआरए परसेंटेज था वो बहुत हाई जा रहा था, तो इस कारण से डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम आपके पापा फादर की किडनी जो है वो आपको नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लगाई जाएगी तो फिर वो खराब हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप अपना नाम कैडेवर लिस्ट में डाल लीजिए ताकि अगर कोई भी केस आता है तो हम आपको बुला सकें। कैडेवलिस्ट के लिए मुझे फॉर्म वगैरह भरवाए गए मुझसे कि हम आपका नाम कैडेवलिस्ट में डाल रहे हैं। मैं बहुत लकी थी कि मुझे विद इन अ मंथ, मतलब जून में मुझे मना कर दिया गया था कि आपके फादर की किडनी नहीं लगाई जा सकती है, एंड जुलाई एंड तक मुझे कॉल आ गया था कि आप आ जाइए, आपके जो ग्रुप का एक केस आया हुआ है एक्सीडेंट केस है, वो जो वो है आपके पेशेंट के ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं तो आप आ जाइए अपना ट्रांसप्लांट प्रोसेस का टेस्ट कर लीजिए। तो बाय द गॉड ग्रेस मुझे मेरे जो सारे टेस्ट थे वो उनके साथ मैच हो गए, क्लियर हो गए, और 2017 अगस्त 3 अगस्त 2017 को मेरा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो गया।
1: तो आपके ट्रांसप्लांट को 3 साल हो गए हैं और हम जानते हैं

0: ट्रांसप्लांट होने के बाद एक नया ही दौर शुरू होता है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि एक अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांट ने कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल दी?
1: ट्रांसप्लांट के बाद एक नई लाइफ आपका वेट कर रही होती है, इंतजार कर रही होती है। जिस समय मैं डॉक्टर की निगरानी में और नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में थी, ट्रांसप्लांट के बाद एक महीना मुझे इनकी निगरानी में रखा गया, उस समय को मैं कहती हूँ कि मेरा लर्निंग पीरियड था। अपने न्यू लाइफ को मैं कैसे जीऊंगी, कैसे अपनी नई लाइफ में एडजस्ट करूंगी, इसलिए मेरा पूरा लर्निंग पीरियड वो मैं मानती हूँ अपने लिए। क्योंकि पूरी नर्सिंग स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने मुझे समझाया कि आप किस तरीके से अपना ख्याल रखेंगी आगे जाके, आप अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे और हर चीज को आप कैसे सैनिटाइज करके इस्तेमाल करेंगी, अपने जो छोटी छोटी बातें, जो आप घर जो खाना है वो घर का पका हुआ होना चाहिए, घर का खाना होना चाहिए, पानी जो है वो आप उबाल के पीजिए और दवाइयाँ आप टाइम टाइम के लीजिए, जो क्या कहते हैं, अपने हाथों को बार बार धोइए, अच्छे से साबुन से धोइए। ये सब चीजें हमें उस दौरान में समझाई गई और बोला गया कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी मर्जी से कुछ भी दवाइयां वगैरह ना खाएं, और अगर हो सके तो थोड़ी से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आप जब आप भी ट्रांसप्लांट जब होते हैं तो आपको खाने का कुछ भी मन नहीं करता है, और जैसे ही आपका ट्रांसप्लांट होता है तो आपको लगता है कि आप क्या क्या खा जाए, तो उसमें वेट बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें कहते हैं कि आप अपनी वेट को कंट्रोल करके रखें, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो आप वॉकिंग वगैरह योगा वगैरह कर सकते हैं वो कीजिए, और जो भीड़ भाड़ वाली इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उसमें नहीं जाना है, मास्क लगा, अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो मास्क लगा के जाइए। ये सब चीजें उस दौरान में बताई गई, समझाई गई, और ये भी एक मतलब एक खुशी का एहसास होता है ना कि हाँ अब मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, मैं अपने बच्चे के साथ खेल पाऊंगी, उसे पढ़ा पाऊंगी, जो पहले मजे करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि एक तो बीमारी होती है, ऊपर से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो उस बीमारी से, तो उतना दूसरों पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब एक खुशी का पल था कि हाँ अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ।
0: तो जाने से पहले जया, आप हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश दें ताकि वो लोग भी ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा दें।
1: जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अंगदान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जागरूकता पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई अंग मिले ताकि वो अपनी लाइफ एक नए तरीके से जी सके। और अगर यदि कुछ मेरे या मेरे परिवार के साथ घटित होता है तो मैं अपना वॉलेंटरी अपना अंगदान करने के लिए ऑर्गन डोनेशन में अपना नाम लिखवाना चाहूंगी। और बस अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अच्छी सोच, नेक इरादा, अंगदान से समाज का भारी फायदा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जया, आपने बहुत सही बात कही, अच्छी सोच, नेक इरादा, और हम सभी को आगे बढ़कर इस इरादे को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि हम अंगदान के बारे में और बात करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को बताएं और इसे बढ़ावा दें। तो आपने यहाँ आकर अपनी कहानी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जया। हम दोस्तों फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: शुक्रिया डॉक्टर कीतिका, आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान करके अपने जाने के बाद किसी की जान बचा सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताइए और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी MS धोनी और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी कहानियों की जिन्होंने अपनी लाइफ की दिशा ही बदल दी। और सक्सेस कहते हैं एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी ऑफन साइलेंट होती है, लोनली होती है और कई बार इनविजिबल होती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं बात करती हूँ उन कहानियों की जो सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं बल्कि हिम्मत, पेशेंस और रिस्क के पन्नों में लिखी जाती है। आज की स्टोरी कोई स्टार्टअप फंडिंग वाली फेरी टेल नहीं है, ना ही कोई ओवरनाइट वायरल सक्सेस। ये कहानी है पेशेंस की, ऑब्जर्वेशन की और उस कॉन्फिडेंस की जो भीड़ में ऑपोजिट जाकर डिसीजन लेने की हिम्मत देता है। इमेजिन करो एक छोटा सा सिंगल रूम अपार्टमेंट जहाँ स्पेस कम था लेकिन सपने बहुत बड़े थे, जहाँ लग्जरी नहीं थी लेकिन सीख बहुत थी, और जहाँ किसी ने ये डिसाइड किया कि जिंदगी सरकमस्टांसेस से नहीं डिसीजन से बनती है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की लेकिन मार्केट को ऐसे पढ़ा जैसे कोई किताब पढ़ता है, जिसने बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों नहीं सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की और आज वही इंसान ग्लोबल रिच लिस्ट में जगह बना चुका है। बिलियंस की नेटवर्थ, हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स और एक ऐसा ब्रांड जो मिडिल क्लास की शॉपिंग हैबिट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि शुरुआत बिजनेस से नहीं हुई थी, शुरुआत लॉस से हुई थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी घाटे में था। उस मोमेंट पे दो रास्ते थे, एक सेफ जॉब या अनसर्टेनिटी भरा रिस्क, और इन्होंने चुना बिल्कुल सही रिस्क। लेकिन रिस्क भी ऐसा जो समझ से लिया गया था, ना कि एक्साइटमेंट से। इन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, लोगों की साइकोलॉजी को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस सीखी। आज के टाइम में हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने इयर्स तक क्वाइटली ग्राउंड वर्क किया। नो हाइप, नो मीडिया इंटरव्यूज, नो फ्लैशी लाइफस्टाइल, बस ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेटजी और साइलेंट एग्जीक्यूशन। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब पूरा मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रहा था, ये इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन में सोच रहा था और यही डिसीजन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि कभी कभी सक्सेस भीड़ के साथ चलने में नहीं बल्कि भीड़ को समझने में होती है। तो आज हम सक्सेस को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कैसे लॉस अपॉर्चुनिटी बना, कैसे पेशेंस प्रॉफिट में बदला और कैसे एक सिंपल साइकोलॉजी ने रिटेल इंडस्ट्री की डेफिनेशन बदल दी। लेकिन स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करता है। मीडिया से दूरी, सिंपल वाइट क्लॉथ्स और लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सिंपल। लोग उन्हें एक निकनेम से भी जानते हैं जो उनकी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। लेकिन वो निकनेम क्या है और आखिर वो इंसान है कौन, ये मैं बताऊंगी लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड और आज मैं बात करने वाली हूँ एक साइलेंट बिलियनियर के बारे में जो स्पॉटलाइट से दूर रहकर भी करोड़ों लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। नाम है राधा किशन दमानी। जी हाँ, वही विजनरी माइंड जिन्होंने बनाया डीमार्ट। आज दुनिया इन्हें रिटेल किंग के नाम से जानती है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 1,00,000 करोड़ तक पहुँच चुकी है, लेकिन जर्नी शुरू हुई थी सिर्फ 5,000 रुपए से। स्टॉक मार्केट से शुरुआत, फादर के गुजरने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर एक ऐसा डिसीजन जिसने इन्हें मार्केट में एक अलग पहचान दी। जब पूरा मार्केट तेजी पर भरोसा कर रहा था तब इन्होंने गिरावट पर दाव लगाया और यही स्ट्रेटेजी खासकर हर्षद मेहता दौर में इनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। लेकिन दमानी सिर्फ इन्वेस्टर नहीं थे, वो ऑब्जर्वर थे। इन्होंने समझा भारत की असली ताकत लग्जरी नहीं बल्कि वैल्यू शॉपिंग है और इसी ऑब्जर्वेशन ने जन्म दिया एक ऐसे रिटेल मॉडल को जो प्रॉफिट से पहले ट्रस्ट बनाता है। लेकिन सवाल अब ये है, सिंगल रूम से रिटेल एम्पायर तक का ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ, इनका बचपन कैसा था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था और कॉलेज ड्रॉप होने के बाद इन्होंने खुद को कैसे रीबिल्ड किया, ये सब बताऊंगी। लेकिन लगान फिल्म का गाना आ रहा है, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं आपके साथ गीत हूँ। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत किसी ऑफिस केबिन से नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे से होती है बॉस। राधा किशन दमानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। साल 1954, राजस्थान के बीकानेर में एक मारवाड़ी परिवार में जन्म और बाद में परिवार का शिफ्ट होना सपनों के शहर मुंबई में। लेकिन मुंबई की चमक हर किसी को लग्जरी नहीं देती। फैमिली सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहती थी जहां स्पेस कम था लेकिन सीख बहुत थी। इनके फादर शेयर ब्रोकर थे और बचपन से ही नंबर्स, रिस्क और मार्केट की बातें इनको सुनने मिलती थी। शायद वहीं से ऑब्जर्वेशन की आदत डेवलप हो गई। इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की मुंबई यूनिवर्सिटी से, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया। ये डिसीजन फेलियर नहीं था, ये क्लैरिटी थी, क्योंकि कई बार डिग्री से ज्यादा डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। लाइफ स्मूथली चल रही थी, लेकिन 1985 से 1986 में इनके फादर की अचानक तबीयत खराब हो

और इमोशनल प्रेशर सब एक साथ आ गया था, कर रहा था। और उस टाइम इन्होंने एक टफ डिसीजन लिया बिजनेस को बंद करने का। सोचिए, एक यंग लड़का फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और सामने कोई क्लियर रोड मैप नहीं। लेकिन यहीं से इनकी रियल लर्निंग शुरू हुई। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट को सीरियसली समझना शुरू कर दिया। कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई बिग कैपिटल नहीं, बस 5,000 रुपए और सीखने की भूख। वो मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने नहीं, मार्केट को समझने आए थे। उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया, फियर और ग्रीड को समझा और पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। 1990 का दशक इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे ड्रामेटिक फेज, जहां एक्साइटमेंट भी थी और अनसर्टेनिटी भी। और इसी फेज में दमानी ने वो किया जो बिगनर्स रेयरली करते हैं। इन्होंने भीड़ को फॉलो नहीं किया, बल्कि भीड़ को पढ़ा। और यहीं से उनकी आइडेंटिटी एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में बनने लगी। लेकिन इन्वेस्टर से एंटरप्रेन्योर बनने तक का डायरेक्शन कैसा था, वो अचानक नहीं था। उसके पीछे था इयर्स का ऑब्जर्वेशन और एक सिंपल रियलाइजेशन। भारत का कंज्यूमर लग्जरी नहीं, वैल्यू चाहता है। और इसी रियलाइजेशन ने फ्यूचर में एक रिटेल रेवोल्यूशन की नींव रखी। लेकिन वो रियलाइजेशन बिजनेस में कैसे बदला, पहला स्टोर खोलने का डिसीजन कैसे आया और एक इन्वेस्टर अचानक रिटेलर क्यों बना, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। इन्वेस्टर बनना एक जर्नी थी लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना एक रिस्क। राधा किशन दवानी के बारे में बात चल रही है आज बिजनेस अनप्लग्ड में, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन से अपनी पहचान बना ली। प्रॉफिट भी था, रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन अंदर कहीं एक ऑब्जर्वर अभी भी एक्टिव था। वो लगातार एक चीज नोटिस कर रहे थे, इंडिया का मिडिल क्लास शॉपर, शॉपिंग उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बजट इम्पोर्टेंट होता है और ट्रस्ट उससे भी कहीं ज्यादा। मार्केट में ऑप्शंस तो थे लेकिन अफोर्डेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का गैप भी था। और यहीं से एक थॉट आया, क्या रिटेल को सिंपलर, चीपर और मोर रिलायबल बनाया जा सकता है। ये थॉट सिंपल था लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क।

की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप नंबर से खेलते हो, रिटेल में हैबिट से। साल 2002 मुंबई के पवई में एक क्वाइट शुरुआत हुई। पहला डी मार्ट स्टोर खुला। नो हाइप, नो ग्रैंड लॉन्च, बस एक क्लियर साइकोलॉजी, कम मार्जिन, ज्यादा वैल्यू और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। लेकिन स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई। रियल बिजनेस ग्लैमरस बाहर से लगता है, लेकिन अंदर लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री, सप्लायर रिलेशन और ऑपरेशनल प्रेशर का कॉन्स्टेंट चैलेंज होता है। दवानी साहब ने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया, स्टोर किराए पर नहीं होंगे, ओनरशिप होगी। ये डिसीजन शॉर्ट टर्म में हैवी इन्वेस्टमेंट था, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी। इन्होंने सप्लायर पेमेंट सर्कल भी छोटा रखा, 7 से 10 दिन, जहां बाकी कंपनीज 20 से 30 दिन लेती थी, वहीं इस अप्रोच ने सप्लायर्स का ट्रस्ट जीत लिया। और बिजनेस में ट्रस्ट आप जानते ही हैं, एडवर्टीजमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन बिजनेस अकेले नहीं बनता, टीम बनाना, राइट पीपल चुनना और अनग्लैमरस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दमानी स्पॉटलाइट से दूर रहते थे, लेकिन टीम के लिए उनकी क्लैरिटी बहुत विजिबल थी। नो अननेसेसरी एक्सपेंशन, नो प्रेशर ग्रोथ, बस सस्टेनेबल स्केलिंग। धीरे धीरे स्टोर्स बढ़ने लगे, कस्टमर लॉयल होने लगे और ब्रांड साइलेंटली हाउसहोल्ड नेम बनता गया। लेकिन हर ग्रोथ फेज के साथ प्रेशर भी आता है, एक्सपेंशन का प्रेशर, कॉम्पिटिशन का प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। अब सवाल ये था, क्या ये स्लो एंड स्टेडी स्ट्रेटेजी फास्ट ग्रोइंग रिटेल मार्केट में टिक पाएगी? क्या साइलेंट ग्रोथ एक दिन एक्सप्लोसिव सक्सेस में बदलेगी, या कंपटीशन इसे पीछे छोड़ देगा? इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: करोड़ों कस्टमर्स की डेली शॉपिंग हैबिट का हिस्सा। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स की नहीं, ये ट्रस्ट की ग्रोथ थी। फाइनेंशियल्स भी इसी कहानी को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेवेन्यू हर साल स्टेडली बढ़ता गया, प्रॉफिट इम्प्रूव होता गया और मार्केट कैप कई गुना बढ़ गया। 2017 में पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स का IPO आया और लिस्टिंग के साथ ही मार्केट ने क्लियर मैसेज दे दिया, साइलेंट एग्जीक्यूशन भी ब्लॉकबस्टर हो सकता है। नेटवर्थ के मामले में राधा किशन दमानी ग्लोबल रिच लिस्ट में नाम बना चुके थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात, उनकी सिंपलिसिटी वही रही, वाइट क्लॉथ्स, लो प्रॉफिट लाइफ, मीडिया से दूर। शायद इसीलिए इन्हें मिस्टर वाइट एंड वाइट भी कहा जाता है। लेकिन इस एम्पायर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लग्जरी नहीं, डिसिप्लिन है। कम मार्जिन, फास्ट पेमेंट साइकिल, ओन स्टोर्स, कंट्रोल एक्सपेंशन और यही स्ट्रेटेजी इन्हें कंपटीशन से अलग बनाती है, क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नंबर नहीं बल्कि लेसन होता है। राधा किशन दमानी की कहानी हमें बताती है, आपको फ्लैशी होने की जरूरत नहीं, आपको फास्टेस्ट होने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपको पेशेंट और ऑब्जर्वेंट जरूर होना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा कैपिटल पैसा नहीं, क्लैरिटी होती है। उन्होंने मार्केट को समझा, कंज्यूमर को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को समझा। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो तो शायद ये मैसेज आपके लिए है, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक लॉन्ग टर्म। फॉलो ट्रेंड्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग फॉलो करो और ग्रोथ के पीछे भागने से पहले ट्रस्ट को बिल्ड करो। फेलियर्स आएंगे, कंफ्यूजन होगा, कंपैरिजन भी होगा, लेकिन याद रखना, हर सक्सेसफुल ब्रांड कभी अननोन ही था और शायद आज आप भी उसी अननोन फेज में हो जहां पेशेंस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो टेक योर टाइम, ऑब्जर्व मोर, पैनिक लेस और कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बोरिंग कंसिस्टेंसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बनाती है। इसी के साथ ये था आज का एपिसोड बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जहाँ सक्सेस सिर्फ दिखाई नहीं देगी बल्कि समझ भी आएगी। टिल देन, ड्रीम बिग, स्टे ग्राउंडेड एंड कीप बिल्डिंग एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
1: ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मन उदास कापे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना, ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो। मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली तुम बोलते रहो।
1: सुनो सुनो।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
2: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
1: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके
3: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ

कभी सोचा है प्लेट भी जिंदा हो सकती है? कभी महसूस किया है कि जब गर्म चावल किसी हरे पत्ते को छूते हैं तो सिर्फ भाप नहीं उड़ती, एक पुरानी याद उड़ती है शहर के स्टील और सेरेमिक के बीच। कहीं खो गया है वो हरा रंग जो कभी हर शादी, हर भोज, हर उत्सव का सेंटर हुआ करता था। वो कहा है कि चांदी के बर्तन चमक सकते हैं, पर मिट्टी और पत्ता महका करते हैं। कुछ चीजें दिखती कम है पर महसूस ज्यादा होती हैं। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात करेंगे एक ऐसे थाल की जो फैक्ट्री में नहीं बल्कि एक पेड़ पर उगा। अब बात कर रहे हैं बनाना लीफ की, तो चलिए आइए जानते हैं परंपरा का गहरा इतिहास क्या कहता है। भारत में प्रकृति कभी सिर्फ रिसोर्सेस नहीं रही, वो रिश्ता रही है। फिर बात करें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, केले के पत्ते पर भोजन सिर्फ एक कस्टम नहीं, एक मर्यादा है। पुराने दौर में हर घर के पास बर्तन नहीं होते थे, मेटल काफी महंगा था, पर पेड़ वो सबका था। और रही बात केले की पेड़ की, तो केले का पेड़ शुभ माना गया। विवाह और पूजा में इसके पत्ते और तना दोनों का उपयोग होता था, इसलिए जब भोजन पत्ते पर आने लगा तो उसमें पवित्रता का एक भाव जोड़ दिया गया। वो कहा है कि जिस पेड़ ने सांस दी उसी ने थाल दिया। इंसान और प्रकृति का ये सबसे पुराना सौदा था। केले का पत्ता सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक साइंस भी अपने साथ लाता है। इस साइंस के बारे में बात करेंगे वापस आकर, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बनाना लीफ के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस, साइंस जो स्वाद बदल देती है। बनाना लीफ के सरफेस पर एक नेचुरल वैक्स कोटिंग होती है। जब गर्मा गर्म खाना जैसे सांबर, चावल या घी बनाना लीफ पर डाला जाता है तो पत्ते की सरफेस हल्का सा रिएक्ट करता है और बस इसी रिएक्शन से एक सटल अर्थी अरोमा रिलीज होता है, इसलिए बनाना लीफ पर खाने का टेस्ट थोड़ा अलग लगता है, जरा सा फ्रेश, जरा सा वार्म। और बात करें हाइजीन की तो बनाना लीव्स में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सिंगल यूज, बायोडिग्रेडेबल, जीरो डिटर्जेंट और साथ ही जीरो रेसिड्यू होती है। और बस इसीलिए आज दुनिया में इको फ्रेंडली का टैग लगाकर बेचा जा रहा है इन्हें। जबकि अगर बात की जाए हमारे पुरखों की तो बिना टैग के जी रहे थे बनाना लीव्स के साथ। जब साइंस परंपरा के साथ खड़ी हो जाए तो रिवाज अंधविश्वास नहीं रहता, विजडम बन जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ जानते हैं सर्विंग की ज्योमेट्री। अगर आप कभी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फेस्ट में बैठे हैं तो आपने नोटिस किया होगा हर आइटम की जगह फिक्स्ड होती है। जैसे बात करें मीठा, तो मीठा सबसे पहले दिया जाता है, नमक ऊपर लेफ्ट साइड रखा जाता है, पीकल साइड में रखा जाता है और राइस हमेशा सेंटर में। ये कोई रैंडम अरेंजमेंट नहीं है बल्कि ये एक डाइजेशन पैटर्न और प्रैक्टिकल सर्विंग लॉजिक का एक प्लांट है। और बस इतना ही नहीं, पत्ता किस डायरेक्शन में रखा जाएगा वो भी एक ओकेजन बताता है। खाने की प्लेट भी एक लैंग्वेज बोलती है, बस हम सुनते रहे। वो कहा है कि हर दाने की जगह तय होती है, हर स्वाद का अपना मकाम होता है। जिंदगी भी तभी बैलेंस्ड लगती है जब हर रिश्ता सही जगह होता है। बनाना लीफ से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं जानेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बनाना लीफ के बारे में। तो चलिए जानते हैं ओनम सद्या पत्ते पर जो त्योहार मनाया जाता है। ओनम के दौरान जो सद्या सर्व होता है वो बनाना लीफ पर ही परोसा जाता है। 20 से 26 आइटम्स तक अव्यल, ओलन, तोरण, पायसम, रंग, टेक्सचर, टेम्परेचर सब एक पत्ते पर नजर आता है। सोचिए एक लीफ पर पूरा फेस्टिवल। ये सिर्फ खाना नहीं, कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। और इतना ही नहीं, शादी, सम्मान और समानता। माना जाता है बनाना लीफ पर खाना खाना एक इक्वालिटी सिंबल रहा है। सब लोग एक ही लाइन में बैठकर खाते हैं, सेम पत्ता सेम सर्विंग, ना वीआईपी प्लेट ना स्पेशल बॉल, एक पत्ता सबके लिए। इसमें एक साइलेंट डेमोक्रेसी देखी जाती है। वो कहा है कि जब पत्ता सबका एक सा हो तो फर्क सिर्फ पेट का रहता है, स्टेटस का नहीं। बनाना लीफ ने हर घर में कैसे अपनी जगह बनाई, परंपरा से लेकर साइंस तक सब कुछ अपने साथ समेट ही रखा। अब वापस आकर जानेंगे कि आज के जमाने में कितनी अहमियत है इस लीफ की। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं बनाना लीफ के बारे में। तो आज का जमाना और कल की सीख का एक परफेक्ट कॉम्बो है। आज वेडिंग्स में फैंसी क्रॉकरी है, थीम डेकोर है, इम्पोर्टेड कटलरी है, पर जब बनाना लीफ आता है तो लोग फोटो लेते हैं क्योंकि उन्हें फील आता है वो उनके बचपन, दादी का घर या किसी टेंपल फेस्ट से जुड़ा हुआ है। कभी कभी सिंपलिसिटी ही लग्जरी होती है। और बात कर ही रहे हैं बनाना लीफ की, वो कहा है कि थाल बदलते गए जमाना बदलता गया, पर जो पेड़ से जुड़ा रहा वो कभी अकेला नहीं रहा। अगली बार अगर मौका मिले तो स्टील की प्लेट साइड रख देना और एक पत्ता बिछा कर देखना, हो सकता है खाना वही हो पर एहसास बदल जाए। इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजली साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो बातें हम नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो हम किसी नज्म में लिख देते हैं, किसी कविता में लिख देते हैं। और शायद इसीलिए हर कविता सिर्फ लिखी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। तो आज दिल शायराना में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। मेरे साथ काफी सारे जो कवि हैं वो मौजूद हैं, कवित्री मौजूद हैं मेरे साथ। अनिका जी हैं, आलोक जी हैं, स्मिता सिंह चौहान जी हैं, स्वाति जी हैं और जय सिंह जीत जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा सभी से है, ये सवाल है कि लिखना जो था वो आपकी चॉइस था या जरूरत है? और
6: मजबूरी
4: क्यों? बट
6: बिकॉज हर एक शायर शायरी शौक से नहीं लिखता, बजाय इसके कि वो किसी से वो अपनी बातें कहे, वो लिखना ज्यादा जरूरी समझता है। तो वो मजबूरी धीरे धीरे उसका शौक बन जाती है, और जब मजबूरी शौक में बदलती है तभी बड़ा शायर बनता है।
4: क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात कह दी है आपने। अनिका जी, आपसे भी इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी।
5: जी बिल्कुल सही कहा सर ने, लिखना एक वो होता है जब हम किसी से कुछ कह नहीं पाते। आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिससे आप अपनी जिंदगी की कहानी रख सकें, उसको फिर हम गजल, नज्म, शायरी, किताब जैसे शब्दों में पिरो के ऑफर लोगों के आगे रखते हैं।
4: जी।
5: लोग वो सुन लेते हैं पर दर्द नहीं सुन पाते हैं। तो इसलिए ये सही बात है, बिल्कुल आप मजबूर हैं तभी कुछ लिख रहे हैं। बट हाँ, शौक भी है, क्योंकि जब तक आपको कहते हैं ना शायर पैदा होते हैं बने ते नहीं है। दिल तो सभी के टूटते हैं पर सब लिखते भी नहीं है। तो हम लिख पा रहे हैं, ये कृपा है ऊपर वाले की हम पे।
4: स्वाति जी
7: बिल्कुल मैम और सर ने बहुत अच्छे से बोला और अच्छे बताए। जैसे आजकल की, मतलब मैं समझ पाती हूँ आजकल की जो दुनिया है ना उसके सामने आप कुछ कहने जाओ तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आप पे उल्टा रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर आप उसे शब्दों के साथ उनको रखते हो समाज में तो सब कोई सुन लेता है। कहीं ना कहीं वो आपकी एक सच्चाई ही होती है, जो प्रॉपर आप किसी के सामने रखोगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन आप वही अब शब्दों में पिरो देते हो, समाज के सामने रखने लगते हो तो वो एक अच्छा निर्देश की तरह लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो होता है कि हम जो नहीं कह पाते समाज में उसे अपने शब्द के माध्यम से पहुंचाते हैं
4: जी,
7: और एक लिखना बाद में वही शौक बन जाता है
4: जी। स्मिता जी आपके पास आते हैं।
8: मेरे लिए तो लिखना जो है वो मौन को आवाज देना है, और वो मौन कोई भी हो सकता है, चाहे वो इस पृथ्वी में चिड़िया का मौन हो, चाहे वो जानवरों का है, जंगलों का है, अपना मौन हो, या फिर किसी समाज की ऐसी समस्या का मौन हो जिसमें कोई कुछ नहीं बोल पाता तो कवि बोल देता है। तो मेरे लिए वो एक आवाज है कि मौन को आपने आवाज दी है, और इस पर आपको इस हुनर पे ना गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये आवाज सबके पास नहीं होती है। किसी के मौन को आवाज देना सबके बस की बात नहीं है, और हम कभी ऐसा कर पाते हैं ये मुझे अच्छा लगता है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि ये मेरी मजबूरी होती है या मैं मजबूरी से लिखती हूँ, मुझे ये

0: लगता है कि जो चीज़ कोई इस पृथ्वी पे बोल नहीं पाएगा ना, और अगर मैंने वो नोटिस की है और मुझ में ये हुनर है तो मैं उसे आवाज़ ज़रूर दूंगी।
1: क्या बात है सर, आपके पास आते हैं जयसिंह जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
2: जी गीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं बहुत बचपन से कविताएं सुनता था जी, कवि सम्मेलनों में जाता था।
1: हाँ।
2: कब सुनते सुनते मैं कवि बन गया मुझे सच में पता ही नहीं चला। और अब मेरा उद्देश्य है कि कुछ अच्छा पेश किया जाए। जैसे प्यार को हवस ना करके प्यार ही रखा जाए, मैं इस प्रयास में लगा हूं।
1: क्या बात है। और ये जैसे आपने कहा कि मैं बस बन गया, तो कभी कभी इत्तेफाक भी अच्छे होते हैं।

0: आते हैं। जैसे अभी मैंने हाल ही में कविता चिड़िया पे लिखी थी, मैं उसे दाना ही दे रही थी, पर मैं ये सोच रही थी कि कई लोग देते होंगे दाना, पर मेरे कवि मन में ये आया कि ये दाना जो है ना, मेरा उस पे कोई एहसान नहीं है, ये मेरे झिझक है जो जंगल में काट के हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं उसकी शायद कहीं झिझक कोई शर्मिंदगी में मिटाना चाह रही हूँ और इसलिए मैं इसे देती हूँ। तो उसी पर वो एक इमोशन आया और मैं लिखने बैठी और बन गई कविता। ऐसे ही जैसे अभी मदर्स डे था, तो 80s 90s की जो माए हैं जो अपनी बात कभी कह ही नहीं पाती थी, उन्होंने सबसे ज्यादा सहा है, ठीक है। तो अभी मेरी माँ बहरीन से आई थी, आपको पता है वहाँ क्या चल रहा है इस वक्त युद्ध का, तो वो बहरीन से आई तो मैं उन्हें देख रही थी क्योंकि वो एक ट्रॉमा में थी। तो जब मैंने उन्हें देखी तो मुझे लगा कि इनका जो अंदर का जो ट्रॉमा युद्ध को देख के पैदा हुआ ना, वो सिर्फ वो नहीं था, वो उनकी वो कहानी भी है जो पिछली रह गई, क्योंकि वो उसी चीज पे कह रही थी कि हमने क्या देखा, हमने कुछ नहीं देखा और अब हम ये भी देख रहे हैं। तो वहां से इमोशन आ गया। इमोशन को आप बांध नहीं सकते, वो एक ऐसा समंदर है आपके अंदर, वो कहीं से भी आप पे उफन सकता है, कहीं से भी सुनामी ला सकता है। तो मेरे लिए तो इमोशन यही है।
1: जी क्या बात है सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे एक सवाल है। हम अगर बात करें हमारे हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि जो रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो समाज को आईना दिखाने का काम किया करते थे, तो क्या लगता है आज के समय जो कविताएं लिखी जा रही हैं समाज को आईना दिखा रही हैं?
2: जी, आज की कविताएं आज के हिसाब से आईना दिखा रही हैं, और उस वक्त जो परिस्थितियां थी प्रेमचंद जी के समय में, उन्होंने उन परिस्थितियों को यथार्थ बनाकर लिखा, उस वक्त भी बहुत पसंद की जा रही थी
1: जी।
2: और आजकल के कवि भी किसी टॉपिक को पकड़कर बहुत अच्छे से पेश कर रहे हैं। मैं

0: आपके पास आती हूँ. स्टेज पोएट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है और आप मंच की कवित्री हैं, तो आप बहुत ही बखूबी ये बात जानती हैं, जहाँ लोग सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि रिएक्ट भी करते हैं, अपने इमोशंस भी दिखाते हैं. तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इफेक्ट हुई हो, आप जो सोच कर गई हूँ एग्जैक्ट वो परफॉर्म ना कर पाई हूँ?
1: हाँ, वो अक्सर हर बार यही होता.
0: अच्छा,
1: है
0: हर बार होता है,
1: मतलब सबके साथ होता होगा शायद.
0: हाँ, हाँ, हाँ.
1: हम अपने अंदर से कुछ पैरामीटर्स लेके चलते हैं कि हम ये पढ़ेंगे. पब्लिक डिपेंड करता है कि आप यूथ के जेंजी हैं तो क्या हमें प्रस्तुत करना है, आप थोड़े बुजुर्ग हैं, शायराना मतलब प्रॉपर उस्ताद लोग हैं तो हम क्या करेंगे उर्दू मुशायरे में. तो वो डिपेंड पब्लिक पर ही करता है कि आप कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले भी लोग पढ़ रहे होते हैं
0: जी.
1: उतना भी जजमेंट हो जाता है कि वो लोग कैसे सुन रहे हैं.
0: हाँ.
1: अगर नहीं तो फिर चेंज करते हैं सेम टाइम पर. लेकर तो हम एक्स्ट्रा ही जाते हैं
0: जी. जी आलोक यादव जशनूर जी, आपके पास आती हूँ और एक सवाल आपसे करना चाहूंगी. बात करेंगे जॉन एलिया साहब के बारे में, बिकॉज आजकल तो लोग, मुझे लगता है कि जो पोइट्री के दीवाने नहीं है वो भी जानते हैं, बिकॉज जॉन एलिया साहब को इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पर लोग सुन रहे हैं जिनको समझ नहीं आता, इनफैक्ट वो भी सुन रहे हैं. तो खैर अच्छी बात है ये, बट जॉन एलिया साहब जो बिना किसी फिल्टर के लिखा करते थे, आपको क्या लगता है आज के जमाने में भी जो कवि हैं वो बिना फिल्टर के लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं फिल्टर आ गए हैं पोएट्री में भी?
2: जी, ये मेरे हिसाब से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. एंड मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे नोन है वो, जो कि विदाउट एनी फिल्टर से लिख रहे हैं.
0: ओके.
2: एंड करंट सिचुएशन मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ तो मैं यही बोलूंगा कि उन लोगों का जो बोलने का तरीका है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस रहती है, लाइक एक नाम है अनंत गुप्ता करके हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो सीरियसली ऐसा लगता है कि उनकी वाणी में, बोलने में, उनके एक प्रवाह जो उनका चलता है बोलने का, उसमें कोई भी किसी भी तरह का फिल्टर नहीं है. कुछ लोग रखते हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे अपनी मर्यादा में बोलना है, जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरे वर्ड्स किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे लोग फिल्टर लगा सकते हैं, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है.
0: एग्जैक्टली मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप कैसे डिसाइड करते हैं, क्या आपको पब्लिक को सुनाना है, क्या उनसे छुपाना है?
2: मैं कभी कोई भी चीज कभी सोच के नहीं लिखता. मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हमेशा उस चीज के लिए तैयार होके ही लिख रहा हूँ कि मैं किसी को भी ये चीज सुना सकता हूँ किसी भी मंच पे.

0: स्वाति जी आपके पास आते हैं। देखो मुझे नाम याद हो गया है
1: बहुत अच्छा
0: जी। एक वक्त था जब शायरी सिर्फ महसूस की जाती थी, अब रिकॉर्ड भी होती है, इनफैक्ट वायरल भी होती है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने पोइट्री को ज्यादा पावरफुल बनाया है या कहीं ना कहीं पोइट्री और ये लिटरेचर पीछे छूट गया है इसके वजह से?
1: बिल्कुल नहीं। पहले नंबर तो सोशल मीडिया के जरिए आज जहाँ नहीं जाना चाहिए पोएट्री वहाँ तक पहुँच रही है। हम गांव तक भी इसको ले जा रहे हैं। जो पोएट्री शब्द है उसको कोई जानता नहीं था गांव में, आज गांव में भी जो है वो सुनना चाह रहे हैं
0: जी।
1: और पोएट्री एक ऐसा माध्यम है जिससे मतलब समाज में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, उसको भी ले जाया जा रहा है। तो मैं तो पोएट्री को ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा है। जो पहले था वो भी अच्छा था उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से जो है वो भी अच्छा है
0: जी। स्मिता जी
1: जी,
0: बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, तो आपके हिसाब से एक अच्छी कविता की पहचान क्या होती है?
2: मेरे हिसाब से देखिए कविता अच्छी बुरी तो नहीं होती, कविता कविता होती है। और जहाँ तक कनेक्शन का सवाल है कि हम लोगों से कनेक्ट आप तब हो पाते हैं जब आप बहुत सरल साधारण तरीके से अपनी बात को कह पाते हैं, जिसमें दूसरा ये समझे कि अरे ये तो मेरा ही दर्द था जो उसने बोल दिया, है ना। लेकिन बहुत क्लिष्ट अगर आप शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा कि जैसे आजकल एक जो आपने भी सोशल मीडिया वाली बात की कि सोशल मीडिया में ना एक होड़ लगी हुई है कि हम कैसे किससे आगे जाना चाहते हैं उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी तकनीक को जब बीच में डाल रहे हैं। ये चीज मैं इसलिए यहाँ पे बोल सकती हूँ क्योंकि अभी कुछ नए नए पोएट भी मैंने देखे हैं जहाँ चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो गया।
0: मैं यही बोलने वाली थी।
2: तो वो जब आते हैं ना तो आप वो कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज तकनीक आपके भाव नहीं ला पाएंगे, तकनीकी चीजें सरलता नहीं ला पाएंगी, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग वाकई लिख रहे हैं, लिखते हैं, चाहे वो चार लाइनें लिखें, दो लाइनें लिखें, पर वो जब भी बोलेंगे ना तो वो कनेक्ट होगा और होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं होते
0: जी। सर आपके पास आना चाहूंगी, जय सिंह जी, अभी हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे इस बारे में कि आपको लिखने से पहले एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कविताओं की बात कहूँ, अगर जैसे मैं बात करती हूँ सिंगिंग की या किसी और अदर आर्ट की, तो वहाँ लोग अपना मेंटोर चुनते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कविता के क्षेत्र में ये चीज उतनी नहीं है, उतना मेंटोर नहीं है, वो सिखाने वाले नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप?
3: जब कोई फील्ड में आता है इसमें कविता के फील्ड में तो हो सकता है कि वो बगैर किसी गुरु के आ जाए, लेकिन यदि आने के बाद वो गुरु को ढूंढ कर लिखता तो बहुत अच्छा लिखता
0: है।
1: क्या बात है?
3: वो एक बहर में चल सकता है, एक पूरी परंपरा में चल सकता है। और मेरे हिसाब से हमें गुरु तो बनाना चाहिए ताकि हम अपने इमोशंस को भली भांति पेश कर सके।
0: जैसे आपने बात की बहर की, आजकल लोग मोस्टली मीटर में नहीं लिख रहे हैं, छंद मुक्त ही लिखते हैं, तो क्या लगता है

0: है उसका भी। अच्छा, जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक कवि से पूछा था, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने कहा जो मीटर में ना हो उसे आप ख्याल कह सकते हैं, आप उसे, हाँ, आप उसे गजल नहीं कह सकते।
1: गजल नहीं।
0: तो ये जो लिख रहे हैं लोग, इस तरीके का जो कंटेंट है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
2: मैं ये मानता हूँ, मान लीजिए इमोशंस अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा आए हुए किसी विषय के ऊपर, उस वक्त वो मीटर की तरफ जाएगा तो इमोशंस या तो खत्म हो जाएंगे या आधे हो जाएंगे,
0: बंद जाएंगे।
2: लेकिन अगर हमें एक्सपीरियंस है मीटर्स का, तो हम मतलब अपनी बात को ढंग से कह भी सकते हैं, ऐसा भी मुनासिब है, मुश्किल भी नहीं है।
0: जी जी।
2: लेकिन उसके लिए एक एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है।
0: जी जी। तो किन किन कवियों को पढ़ सकते हैं जो हमारी यंग जनरेशन है? बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी ऐसे ना लिखा जाए, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ के आए। तो कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे?
2: डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं,
0: हाँ जी,
2: सुनील जोगी हैं, राजेंद्र चौहान हैं, और बहुत ऐसे और भी कवि लिखते हैं, और जैसे कुमार विश्वास जी हैं,
1: उनकी तो बात ही अलग है,
2: और सबीना अदीब जी हैं, बहुत गहरा लिखती हैं। जो जितना ज्यादा सुनेगा गीत जी, वो उतना अच्छा लिखेगा, मैं ये मानता हूँ।
1: सुनना पढ़ना जरूरी है,
3: सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है।
0: अनिका जी, आपसे भी यही सवाल है, एग्जैक्ट सेम सवाल ही है, अगर आज की यंग जनरेशन पोएट्री लिखना स्टार्ट कर रही है, तो उन्हें सबसे पहले क्या चीजें सीखनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
1: कि ख्याल तो कुछ भी हो सकता है किसी का, और जैसे कि बहर पैरामीटर की बात चल रही थी, तो पानी जब बिना मर्यादा के है तो कैसा है? मर्यादा मर्यादित है बहर पैरामीटर, आप जब मर्यादा में बहते हैं, नल के थ्रू जा रहा है तो सुविधाजनक है, बिना उसके बाढ़ भी ला सकते हैं शब्द, तो पैरामीटर तो पहले इसलिए भी जरूरी है। और पढ़ने के लिए कुछ भी भाव आपकी जिंदगी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम, मैं दर्द लिखती हूँ, कुछ मोहब्बत लिखते हैं, कुछ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ें, अच्छे अच्छे जो भी आपसे पढ़, आप साथ, जैसे अभी हम जुड़े हैं, आपसे सीखने को मिलेगा, बड़े लोगों से सीखने के लिए मिलता है, सबकी संगत में रहें, कि हर किसी राइटर को पढ़ना और सुनना ज्यादा जरूरी है आपको एक अच्छी चीज करने के लिए।
0: जी जी,
1: बहुत जरूरी है। आप जब तक, जैसे कि जॉन इलिया की बात की आपने, जॉन इलिया, प्रवीण शाकिर जी, शबीना अदीब जी, अंजुम रहबर जी, बड़े बड़े नाम, कुमार विश्वास, जैसे मैं तो फैन हूँ, बिग फैन ऑफ कुमार विश्वास, उनकी वजह से ही आज मैं लिख रही हूँ शायद। तो ऐसे नामों को आपको जरूरी है, जैसे कोई पूछता है कि क्यों लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस वो शायरी सुन ली थी उनके, उसके बाद लगा यही करना है, तो वो नाम जरूरी है, और पैरामीटर बहुत जरूरी है।

0: जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं आज दिल शायराना को, वो सोच रहे होंगे कि मेन मुद्दे पर आ जाए, इतने सारे जब कवि और कवित्री जुड़े हैं तो उनकी रचनाएं ना हो तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अब हम सीधा रचनाओं पे बढ़ते हैं, तो सबसे ये सेम सवाल है आपसे शुरुआत करते हैं अनिका
1: जी, बताएं मैम
0: क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक या मंच की तालियां या अकेले कमरे में बैठी हुई एक सच्ची लाइन?
1: सच्ची लाइन को ही मंच पे ले जा रही हूँ मैं पहले अकेले में लिखती हूँ और फिर मंच तक जाना मुझे उसके लिए अच्छा लगता है।
0: एक कवि जो होते हैं अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा के
1: बात करी मैम, आपको अकेले कमरे में लिखना पसंद है या फिर सबके सामने ले जाना? तो अकेले कमरे में लिख के सामने ले जाना, बहुत ले जाना।
0: तो क्या ऐसा लिखा था जिसपे बहुत तालियां मिली हो और बहुत
1: मैम तालियां मिली? वो तो अभी थोड़े दिन के लिए गुप्त रख रही हूँ,
0: अच्छा
1: वो वायरल भी गया आपको बताया भी।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: तो अभी
0: यहाँ भी गुप्त रखेंगे हम, कोई बात नहीं, हम किसी और रचना पर आते हैं।
1: हाँ तो फिर मैंने एक मतलब धोखे पर ही लिखा था मैम, एक मतला दो शेर।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: अर्ज है। मैं इश्क कर रही थी ईमान की तरह, वो इश्क कर रहा था एहसान की तरह, जो कलमे के मानी तक जानता नहीं, जो कलमे के मानी तक जानता नहीं, मैं उसको पढ़ रही थी कुरान की तरह।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: एक नज्म की तरह थी मेरी ये जिंदगी, और जिंदगी में गम थे उनवान की तरह,
2: क्या मिसरा।
1: और छुआ था ख्वाब में उसने एक दफा मुझे, छुआ था ख्वाब में उसने एक दफा मुझे, अब तक महक रही हूँ मैं लोबान की तरह।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आलोक जी आपके पास आते हैं, आपसे भी ये सेम सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
2: मुझे, मैं जिस विधा में लिखता हूँ वो अक्सर यही इश्क मोहब्बत प्यार या कह सकते हैं मनमसीयत। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ये भी बोला था कि मजबूरी है, और फिर मैम ने उसको इतनी अच्छी तरह क्लैरिफाई किया ये बात मैम की, जो मैं बहुत अच्छी लगी, वहां से मैं यहाँ से मैं उस चीज को लेके जाऊंगा अपने साथ और अपना नजरिया बदलने की कोशिश करूंगा मैं।
0: बहुत बढ़िया। तो क्या आपको एग्जैक्टली क्या ज्यादा पसंद है, ओपन माइक की तालियां या सच्ची लाइन अकेले कमरे में बैठी?
2: मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे सामने बैठे हुए जो लोग हैं वो एक अच्छे श्रोता हूँ, वो उन्हें सुनना आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वक्ता जब माइक पर कुछ भी बोल रहा होता है तो उसके सामने जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं उसकी परफॉर्मेंस में।
0: एग्जैक्टली, हम बहुत अच्छे श्रोता हैं और हम वेट कर रहे हैं आपकी रचना का कि जल्दी से कोई रचना आए हमारे सामने और हमारे लिसनर्स के साथ।
2: आपने जो तालियों की बात करी थी ये एक ऐसा ख्याल है, मुझे बहर की जानकारी नहीं है, मैं हमेशा बहर से बाहर ही लिखता हूँ।
0: अच्छा जी।
2: और ये एक ऐसा ख्याल है जिसपे मैंने जो सोचा था वो मैं एक बार कर चुका हूँ कि टोटल ऑडियंस वॉज साइलेंट। मैं अर्ज करता हूँ, मैं ऐसे सबको खुश रख रहा हूँ जैसे मैं खुद खुश रहना भूल रहा हूँ। मुझे इल्म नहीं है किसी की बेरुखी का, मैं तो खुद की बेरुखी से मर रहा हूँ।
3: क्या बात है, क्या ख्याल है, बहुत
0: बढ़िया।
2: तेरी गोद में सर रख कर फिर कभी रोऊंगा माँ, फिलहाल मैं तुझसे सच बोलने को तड़प रहा हूँ।
3: क्या बात है।
2: मंसूबे गलत नहीं थे मेरे, मैं किसी को समझा नहीं पाया, इसीलिए आज खुद को खुद से अलग कर रहा हूँ।
3: क्या बात, अच्छा अच्छा।
2: खुद को उलझा लिया है मैंने पहेलियों में, अब सुलझने के लिए दिल तार तार कर रहा हूँ। मुझसे प्यार करने वालों मुझे माफ कर देना, मैं आखिरी दफा आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ।
3: क्या बात है,
2: आखिरी शेर है कि नहीं रहा दम कि अब एक कदम और भी चल सकूं, ऐ जिंदगी मैं अपनी लाश को इधर से उधर कर रहा हूँ।
0: क्या बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है इसको सुन के कि आपने ऐसा कुछ अपने से इंस्पायर्ड होके ये चीज लिखी है, ऐसा कुछ?
2: यस एग्जैक्टली।
0: ओके स्वाति जी आपके पास आते हैं, क्या ज्यादा पसंद है आपको, ओपन माइक की तालियां या अकेले कमरे में बैठी कुछ बढ़िया सी लाइन?
4: हम सब कवियों का ये है कि हम एकांत जब होते हैं ना तो हमारे पास भावनाओं का एक श्रृंखला बनते जाता है, जिसे हम शब्द देते हैं। और जब हम वो शब्द देते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई सुने और सुनने के बाद उसको सार्थक कर दे, बस हमारी इतनी ही तृप्ति रहती है।
0: जैसे सर ने कहा था बात चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए।
4: हमें उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस हम जो अपने भावनाएं रात रात भर कभी कभी महीनों महीनों हम जाके एक रचना पूरी कर पाते हैं, और जब हम चाहते हैं ना कि इसे कोई सुने ना, तो बस उसको सुन के वो सार्थक कर दे। बस इतनी सी इच्छा हमारे पास रहती है, तो बस
0: हम वाह करने के लिए तैयार हैं।
4: बिल्कुल
0: दीजिए आप अपनी रचना।
4: तो मैं ज्यादा संघर्ष लिखती हूँ और मेरा भी अभी मतलब मैं बेहद तो सीख रही हूँ, लेकिन मुक्तक मेरा एक है, सुनिएगा। क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, प्रॉपर मैं बिहार से हूँ और यहाँ मैं छात्र हूँ, और कोई भी हो, छात्र हो, कोई भी अपने घर से दूर रह रहा है ना, तो एक वो संघर्ष कर रहा है।
0: बिल्कुल।
4: और उसे पता होता है कि एक दिन वो कुछ भी कर ले, उसे घर की तरफ लौटना ही है। तो उसी पे रचना

0: बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर के लिए जो बात कही ना आपने आखिर में कि हम सब भले ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार हमें अपने घर ही लौटना है। और मैंने
1: शाश्वत सच है,
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने किसी एक बहुत ही खूबसूरत शायर की कुछ ऐसी लाइन पढ़ी थी, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, अगर अपने शहर जो होते तो घर चले जाते।
1: घर चले जाते। वाह वाह।

0: सुमिता जी आपके पास आते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: आपसे भी सवाल है, क्या ज्यादा पसंद है आपको?
1: देखिए, हर कवि या शायर जो भी हैं, सबको एकांत ही पसंद होता है. जो तालियों वाला माहौल है, वाहवाही वाला माहौल है, वो तो 2020 के बाद शुरू हुआ. लोग 2020 से पहले भी थे.
0: हाँ जी.
1: ये अच्छी बात है कि डिजिटली ये चीज आई और लोगों को, कई लोगों को पहचान मिली.
0: हाँ,
1: कई लोगों को उनका जो एकांत का लिखा हुआ है वो लोगों के सामने आया. लेकिन अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मुझे वाहवाही और तालियों से ज्यादा ये चाहिए होता है कि वाह स्मिता तूने क्या लिखा. वो मुझे बहुत, मतलब कुछ ऐसा लिख दो कि आपको लगे कि हाँ आपने कुछ ना अपने मन को संतुष्ट किया, तो वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है. ओपन मिक में भी हम जाते हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि कुछ चलन ऐसा हो गया है, क्योंकि कोई चीज जब अधिकता में हो जाती है ना तो उसकी वैल्यू गिर जाती है. अब ऐसे अधिकता हो गई है कि वहाँ श्रोता नहीं होते हैं.
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वहाँ सिर्फ कवि होते हैं. सबको जल्दी है कि हम अपना बोलें, एक दिन के चार चार ओपन मिक हो रहे हैं, तो उसमें ना कोई किसी को सुनता है, ना कोई किसी को परखता है, ना कोई किसी को कुछ बताता है कि भाई तुम अपने को ऐसे इम्प्रूव कर लो या ऐसे कर लो. तो मैं इसीलिए ओपन मिक बहुत कम जाती हूँ. मैं एक दिन का, जिस दिन जाऊंगी महीने में दो जाती हूँ, और आराम से सुन के आती हूँ 15-20 लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनना बहुत जरूरी
0: है. एग्जैक्टली,
1: है ना. कहना तो सबको आता है, कहते हैं कि लिखना कितना अच्छा है ये जरूरी नहीं है, आपको सुना किसने वो ज्यादा जरूरी है, है ना. आप लिख सकते हैं. तो अभी मैंने ना माँ पे, मैं आपको बता रही थी कुछ देर पहले कि मैंने अपनी माँ पे लिखी थी.
0: हाँ जी.
1: तो ये मन के भाव है जो उन्हें देख के आए थे.
0: हाँ जी.
1: और ये 80s और 90s की माओ को समर्पित है.

0: प्रचार अब जब ऐसी माओ से ना हम बेटियां जो आज बाहर निकल पाई हैं उनके सहने की वजह से तो हम क्या सीखते, बस दो लाइन है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि मैं

0: रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत रचना है आपकी। सीरियसली ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे लगता है माँ दुनिया की एक ऐसी चीज है जो सुकून देती है, है ना
0: जी।
1: तो मैं बहुत अच्छा नहीं लिखती मैं, लेकिन हाँ मैं पढ़ती बहुत अच्छा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे कवियों को, बहुत अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ा है, मजाज, फराज, फैज साहब, जॉनी लिया साहब, गालिब, तो बहुत कुछ मैंने सीखा है उनकी रचनाओं से। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिख लेती हूँ। वैसे ही माँ के लिए लिखा था कि बहुत कुछ मिलता है जिंदगी में, पर है माँ तेरी आंचल जैसी खिली जन्नत नहीं मिलती।
0: बहुत खूबसूरत।
1: सर आपके पास आते हैं, आपसे भी ये सवाल है, आपको क्या ज्यादा पसंद है?
2: मुझे ये पसंद है, हमने कोई चीज मान ली एकांत में लिखी हो, जो देश दुनिया से उठाई हो, उस पे अगर हमें वाह मिले तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मंच हो चाहे ओपन माइक हो।
0: बिल्कुल,
2: वैसी ही एक रचना मैं आपके सामने अगर इजाजत हो।
1: बिल्कुल सर।
2: एक पहले मुक्तक, फिर एक गजल आपके बीच। मुक्तक यूं कहे, ताजगी है हताशा नहीं है, जिंदगी है निराशा नहीं है, ये दिलो जान है शायरों की, शायरी है तमाशा नहीं।
0: क्या बात।
2: और एक गजल है, वैसे तो वो तरन्नुम में है, बहर में है, लेकिन मैं वैसे बहर में पढ़ता हूँ।
1: जी जी।
2: हमें नफरतों को मिटाना पड़ेगा, अमन चैन से दिल लगाना पड़ेगा, वो जिसने हमारे सभी ख्वाब लूटे उसे माफ करके दिखाना पड़ेगा।
0: क्या, क्या, क्या
1: बात है।
2: कि नफरत हमेशा अंधेरा करेगी, चरागे मोहब्बत जलाना पड़ेगा।
1: क्या बात है।
2: बड़ी मजहबों की दीवारें खड़ी हैं, उन्हें उल्फतों से गिराना पड़ेगा। और बेटियों के लिए शेर देख लें, सबक हौसलों का सिखा कर पढ़ा कर हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
2: और गजल का मक्ता यूं के, अगर चाहता है रहे प्यार जिंदा, तुझे जीत कर हार जाना पड़ेगा।
1: क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।

0: तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके, लेकिन समय सीमा का ख्याल रखते हुए अब हमें शो की समाप्ति पर आना पड़ेगा। तो जाते जाते सबसे फिर एक और सवाल, सबसे ये सवाल कि कविता क्या है आपके लिए? अनिका जी आपसे पूछना चाहूंगी,
1: कविता क्या है? कविता माँ के लिए बनाया हुआ एक अच्छा खाना है जिसे बच्चों के आगे परोसा जाए तो वो तारीफ करें।
0: हाँ।
1: भक्त के लिए भक्ति है और मेरे जैसों के लिए तो आज की कह सकते हैं आप कि हम जो लिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बस कि भगवान है हमारा, अगर उसे आप जैसे लोग सुन रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, तो सब कुछ है, क्योंकि हमारे पास लिखने के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि रिश्ते नाते सब एक अलग चीज है, आपके पास जब आपकी कला है ना तो वो अलग चीज है
0: जी।
1: अगर वो सब होते तो शायद हम ये लिखते ही नहीं, हम लोगों के साथ अच्छे होते
0: जी।
1: जब कोई नहीं बचा, सब खोने के बाद ये मिली, तो ये तो सब कुछ ही है अभी फिलहाल, बाकी ज्यादा बेहतर जानते होंगे।
0: तो जाते जाते कोई और आपकी चंद लाइन जो आप यहाँ पर रखना चाहती
1: हैं? हाँ मैम, जरूर। तो चार लाइनों का एक किताब रख देती हूँ मैम, उस इंसान के लिए जिसकी वजह से आज मैं लिख रही हूँ।
0: अरे हाँ। जी जी।
1: कर के वादा मुकर गए तुम भी, बे इरादा मुकर गए तुम भी, जितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे, जितनी उम्मीद थी मुझे तुमसे, उससे ज्यादा मुकर गए तुम भी।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया।
0: क्या बात है, वो सुन रहे होंगे वैसे ही। हो सकता है।
1: बिल्कुल। आज सुने
0: जी। आलोक जी आपके पास आते हैं, क्या है कविता आपके लिए?
2: अभी जो मैंने जवाब दिया था इस बात का, वो बदल जाएगा।
0: हाँ।
2: भी अगली बार मुझसे सवाल,
0: वैसे अभी भी बदल सकता है
2: अभी, आप चाहें। इसलिए नहीं कि जो मैंने जवाब दिया था कि शायरी मेरी मजबूरी है, वो मैं माशूका बनाऊंगा, उसका कारण मैं ढूंढूंगा।

0: क्योंकि बिना कारण के किसी बात का जवाब देना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि अपनी ही बात में फंसना मुझे अच्छा नहीं लगता।
1: तो चलिए अगली बार आपसे फिर मिलेंगे और ये जो जवाब है उसका हमें इंतजार रहेगा। तो जाते जाते आपकी कुछ और कोई रचना, कुछ लाइन्स?
0: जी मैं चार लाइनें पेश
1: करता हूं। बिल्कुल।
0: मेरी आंखों की गुलाबी नसें चीख रही थी, मेरी खाल से कोई मेरे रोंगटे खींच रहा था, मेरे आंसुओं को बहने की इजाजत नहीं थी, मुझे क्या बोलना था और मैं क्या बोल रहा था।
2: क्या बात है,
0: बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है स्वाति जी।
3: बिल्कुल।
1: क्या है कविता आपके लिए?
3: कविता मेरे लिए साधना है। हम कोई चीज को मतलब साधना में बदल देते हैं ना, तो हम जितना साधना करेंगे उसके करीब और जाएंगे।
1: मैं कहने वाली थी हंसी आपके लिए, क्योंकि जब से आप आई हैं और आपको कविता की जो कविता के नाम से जो स्माइल आ रही है आपके चेहरे पर
3: मैं सोच रही थी कि क्या
1: जी।
3: तो मेरे लिए साधना ही है
1: जी,
3: मैं जब भी बैठती हूँ कुछ लिखने तो वो एक साधना ही है। माँ भगवती की कृपा होती है तभी हम कुछ रच पाते हैं।
1: क्या बात है।
3: तो
1: कुछ कहना चाहेंगी और जाते हुए आप?
3: हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमें गिराते हैं, हम उठते हैं कोई गिराने की कोशिश करता है, तो चार पंक्तियाँ उसी पे लिखी थी
1: जी। जी।
3: गिराओ मुझे तुम किस हद तक गिरा सकते हो, गिराओ मुझे तुम किस हद तक गिरा सकते हो, खुद को सही मुझे कितना गलत बता सकते हो। आसमान खुला है जमी की गोद खाली है, आसमान खुला है जमी की गोद खाली है, एक इंसान की खातिर कितना पत्थर बिछा सकते हो, एक इंसान की खातिर कितना पत्थर बिछा सकते हो। बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।

0: श्वेता जी आपके पास आते हैं जी, आप क्या कहेंगी, क्या है आपके लिए कविता?
1: मेरे लिए तो कविता जो है ना इस पूरी धरा का सबसे खूबसूरत राग है, वो राग जिसे जो अनसुने होते हैं ना वो कवि हृदय सुन लेते हैं। कभी शायद कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वो अनसुने राग जो हम दुनिया को सुनाते हैं ना वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अभी जैसे स्वाति ने बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिराते हैं और फिर हम उठते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए कुछ ऐसे लिखा था, चार लाइनें सुना देती हूँ, लंबी है कविता बट चार लाइनें, कि एक चींटी का रास्ता भी रोकते हैं व्यर्थ बैठे लोग, और आप सोचते हैं कि ये लोग तुम्हें बढ़ाएंगे, जो खुद चल नहीं पाए कभी वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, राहों पर कांटे बोने वाली फितरत हो जिनकी वो तुम्हारे सपनों के लिए क्या कालीन बिछाएंगे, और जो भावनाओं की ऊंचाई छू नहीं पाए कभी वो दूसरों के आसमान नापते हैं, जो उड़ने का हौसला भी जुटा नहीं पाए कभी वो तुम्हारे पंखों की थकान मापते हैं, बढ़ने की बात ना किया करो इनसे, बढ़ने की बात ना किया करो इनसे, ये तुम्हें गिराने का साजो सामान मापते हैं, ये तुम्हें गिराने का साजो सामान मापते हैं, इनकी दुनिया छोटी है इनसे उलझना ठीक नहीं, इनकी दुनिया छोटी है इनसे उलझना ठीक नहीं, ये वो धुंधले आईने हैं तुम्हारी शख्सियत का उन्मान मापते हैं, तुम्हारी शख्सियत का उन्मान मापते हैं।
0: बहुत प्यारा, चार लोग तो नहीं है
1: नहीं क्योंकि जिसने मेहनत की होती है ना, और मेरा एक मानना है कि जो चीजों को लेके बहुत, जिनको हुनर होता है किसी भी चीज का, संगीत का, कविता रचने का, किसी भी चीज का, वो कभी किसी दूसरे का ना उन्मान नहीं माप सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी मेहनत करके अगर मैं यहाँ तक पहुंचूं तो उसने कितनी मेहनत की होगी। तो निंदा रस वहाँ नहीं होता कहीं, जहाँ हुनर होता है वो वहाँ होता है, जहाँ व्यर्थ बैठे रहते हैं लोग।
0: एग्जैक्टली सर, आपके पास आते हैं जयसिंह जी, तो आपके लिए कविता क्या है?
2: कविता कवि का एक ऐसा संदेश है जिसे वो एक बार लिख कर अनंत श्रोताओं और पाठकों तक पहुंचा सकता है।
0: हाँ जी,
2: बस मेरी नजर में यही कविता है।
0: तो जाते जाते आपकी कुछ और लाइंस,
2: एक मुक्तक मैं सबके बीच रखता हूँ, एक आदर्श मुक्तक है। न होकर रंग बूतो गुल सिता में कुछ नहीं होता, मोहब्बत के बिना ऊंचे मकाम में कुछ नहीं होता, बहुत रंगीन है दुनिया बड़ी दिलकश नजारे हैं, मगर माँ बाप से बढ़कर जहाँ में कुछ नहीं होता।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आप सभी से बात करके मुझे बहुत मजा आया, आई होप आप लोगों को रेडियो महारानी के स्टूडियो में आकर उतना ही मजा आया होगा, ये तो आप खुद बताएंगे जब आप इस शो को सुनेंगे। तो सबसे मैंने पूछ लिया है कविता क्या है, तो मैंने जैसे कहा मैं थोड़ा बहुत लिख पाती हूँ, जब शुरुआत में कभी लिखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या लिखूं, क्योंकि बहुत नई थी लिखने में, कविताओं के लिए ही कागजों के लिए लिखा था और पूछा था कि क्या लिखूं मैं, मुझे तुम ही बता दो ना। तो मैंने लिखा था कि कह दूं तुझसे सदियों की कहानी या चंद लम्हों का इतिहास लिखूं, ए कोरे कागज तू ही बता आज क्या खास लिखूं।
3: अरे
0: तो बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो वेरी मच आप मेरे साथ जुड़े,
1: थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा
0: जी,
1: बहुत ही प्यारा लगा हमें
0: जी
1: यहाँ सो करके
0: जी। तो वक्त बदलता रहेगा लेकिन जो कविताएं हैं, जो नज़में हैं, जो हमारा लिटरेचर है वो ऐसे ही जिंदा रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपने एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम

0: हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके और मैं हूँ आपकी अपनी
1: रेट्रो वाली सपना
0: और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज मैं किसी स्टार की बात नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि आज तो सारे स्टार्स हैं, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बहुत ही खास दिन यानी कि फ्रेंडशिप्स डे। और यारों के नाम आज का मेरा एपिसोड भी है। यहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ बॉलीवुड के कुछ ऐसे दोस्त जो कि सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़े बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी हमेशा कमिटेड रहे और हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। तो चलिए जानेंगे ऐसे बहुत सारे दोस्ती के किस्से, वो भी बॉलीवुड से, जहां हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने की होड़ में रहता है। पर यहां तो हम ऐसे दोस्तों की बात करने वाले हैं जो कि फैमिली बन गए हों। खैर, आज का एपिसोड आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दो दो सरप्राइजेस हैं आपके लिए। यस, पहला सरप्राइज तो ये है कि आज शो खत्म होने तक आपको मुझे कॉल करना है या फिर डीएम करके बताना है उस जोड़ी के बारे में, उन दोस्तों की जोड़ी के बारे में जिनको अगर बॉलीवुड में कभी भी लाइफ टाइम फ्रेंडशिप अवार्ड मिलता तो किस जोड़ी को मिलता। तो आज ये अवार्ड देने वाले हैं आप सभी, तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे दो घंटे तक क्योंकि अवार्ड देने वाला लेने वाले से हमेशा बड़ा होता है। और साथ ही एक और सरप्राइज है जो कि मैं अभी बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ऐसी किसी जोड़ी को भी आप जानते हैं उनके बारे में कोई किससे साझा करना चाहते हैं तो फटाफट फोन उठाइए और मेरा नंबर मिलाइए। नंबर है 9654896896। इंतजार कर रही हूँ मैं आप सभी के कॉल्स का। स्टे ट्यून्ड विद रेडियो महारानी।

0: आज मैं आपको बताती हूँ सीट बेल्ट ना लगाने के दो फायदे।
1: छोटी बच्ची हो क्या?
0: पहला फायदा, आपकी गाड़ी फुली ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि दरवाजे से उतरने की बजाय गाड़ी आपको खुद झटका लगने पर बाहर फेंकेगी।
2: शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
0: दूसरा फायदा, आपको पार्किंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि चालान भरते भरते आपकी गाड़ी ही बिक जाएगी।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को।

स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्ती दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे। और इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मेरे और आप सभी के दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो चलिए बॉलीवुड की दोस्ती भी सेलिब्रेट कर लेते हैं और मेरे पास कुछ रुझान आने लगे हैं और आज फिल्म फेयर फ्रेंडशिप डे अवार्ड के लिए पहला नॉमिनेशन मिला है आशा पारेख, वहीदा रहमान और हेलन जी को। ये तीनों ही खूबसूरत लेजेंडरी आर्टिस्ट जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मी दौर में एंट्री ली थी बॉलीवुड में। वैसे जो लोग भी इन तीन देवियों की दोस्ती को जानते थे वो इन्हें मजाक मजाक में चार्लीज एंजल्स भी बुलाया करते थे। एक बार 2013 में इन्होंने डिसाइड किया कि शूटिंग नहीं सिर्फ मस्ती करेंगे और फिर तीनों निकल पड़ी 10 दिन के क्रूज ट्रिप पर। क्रूज इतना पसंद आया कि उसके बाद टर्की, अलास्का, कनाडा, अंडमान कश्मीर वेकेशंस का तो एक सिलसिला ही बन गया। और सिर्फ फॉरेन ट्रिप्स ही नहीं, मुंबई में भी जब टाइम मिलता था लंच डेट, मूवी प्लान्स, किसी के घर तो किसी के बाहर, ऐसा था एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। अच्छा सोचिए, जिस इंडस्ट्री में लोग एक फ्राइडे के बाद बदल जाते हैं वहाँ 60 साल से ज्यादा पुरानी दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत चल रही है। और कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इनकी दोस्ती सिर्फ वेकेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है। मुश्किल वक्त में भी इन्होंने एक दूसरे का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें इनकी पर्सनल लाइफ और इनकी दोस्ती में भी आई, जिसकी वजह से कई बार ऐसा लगा कि अब ये दोस्ती आगे नहीं चल पाएगी। लेकिन कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी चीज को संभाल के रखा जा सकता है। ये तो हमारी दोस्ती है। क्या हुआ था इनके साथ ऐसा जिसकी वजह से इनकी दोस्ती पूरी तरह से हिल गई थी, ये भी बताऊंगी आपको। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक को।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूं, आवारा हूं।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

कभी कभी जिंदगी में फैमिली से पहले दोस्त समझ जाते हैं कि हमारे साथ कोई तकलीफ हो रही है, और ऐसे ही दोस्तों को आज ये शो डेडिकेट कर रही हूँ मैं आपकी अपनी रेट्रो वाली सपना। और रात बाकी बात बाकी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ऐसी दोस्तों की जोड़ी की जिन्होंने एक मिसाल कायम की है, और इसमें हमने अभी बात की तीन देवियों की, यानी कि हमारी चार्लीज एंजल्स, वहीदा रहमान, आशा पारेख और हेलेन जी। आशा जी हमेशा ही अपने दोस्तों को बहुत प्रेज करती हैं, उन्हें बहुत रिगार्ड करती हैं, उनके बारे में हर जगह बात करती हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था उनकी जिंदगी में जब वो डिप्रेशन के पीक पर पहुंच गई थी। ये वक्त था जब उन्होंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था, तो वो अपनी लाइफ के अकेलेपन में कुछ इस तरह से डूब रही थी कि वो डिप्रेशन में जा चुकी थी और किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। तब इनकी लाइफ के उन टू एंजल्स ने इन्हें उस दर्द से बाहर निकाला और हमेशा उनके साथ खड़ी रही। अपनी ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल में भी आशा पारेख जी ने अपनी सहेलियों की बात की है। वैसे भाई दोस्ती हो तो ऐसी, सिर्फ कैमरा के सामने नहीं बल्कि ऑफ कैमरा भी ये दोस्ती हमेशा ही सच्ची रही। इस फ्रेंडशिप डे पर इन तीनों लेजेंडरी आर्टिस्ट को रेडियो महारानी करता है सैल्यूट। और क्योंकि असली दोस्ती वही होती है जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती और भी ज्यादा गहरी होती जाती है, तो क्या कहती है पब्लिक, मिल सकता है इन्हें अवार्ड? चलिए आप वोट करते रहिए, और तब तक मैं लेती हूँ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जल्द लौटूंगी एक और नॉमिनेशन के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए इन म्यूजिकल ट्रैक। चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: लिया।
1: अरे सुन लिया है तो बता भी दूं कि 2 बजे तुम लोग जाते कहाँ हो।
2: ओए तैनू नहीं पता, 2 तो 5 89.6 FM ते आंदा है शो दिल से देसी।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके सपना हूँ मैं आपके साथ। और आज फ्रेंडशिप डे स्पेशल में हम बात कर रहे हैं फिल्मी दोस्तों की जोड़ियों की। और इसी में हमारा दूसरा नॉमिनेशन है अमिताभ जी का, यानी कि शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जी। भाई बॉलीवुड में जब भी दोस्ती की बात होती है तो अमिताभ का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों ने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं पूरी 13 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सुहाग, शान, नमक हलाल और ना जाने कितनी यादगार फिल्मों के नाम शामिल है। लेकिन इनकी दोस्ती की शुरुआत स्टारडम के बाद नहीं हुई थी, बल्कि अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में हो गई थी। दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमा रहे थे, काफी स्ट्रगल चल रही थी। वहीं शशि कपूर ने उन्हें हमेशा ही एक दोस्त की तरह सपोर्ट किया। वैसे इन दोनों की जोड़ी का एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। एक फिल्म मेकर ने शशि कपूर की फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब के कुछ सीन्स को एडिट करके छोटा कर दिया। जब ये बात शशि साहब को पता चली तो वो इतना गुस्सा हुए और उन्होंने डायरेक्टर से जाकर कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। देखिए कहते हैं ना कि दोस्ती में कभी भी क्रेडिट्स का हिसाब नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है। और भैया इसीलिए तो रवि और विजय की इस जोड़ी को फिल्मी सेट पर हर कोई बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। जैसे ही कैमरा ऑफ होता था तो ये दोनों मैजिकली एक्टर्स बन जाते थे और बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर होते थे। और जैसे ही कैमरा ऑफ होता था दोनों की शरारतें शुरू हो जाती थी। खैर वक्त बदलता है पर दोस्ती नहीं। अमिताभ प्रूव करते हैं इस कोट को, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब अमिताभ बच्चन साहब एंग्री यंग मैन बन चुके थे फिल्म इंडस्ट्री के और उनकी पॉपुलैरिटी फिल्म इंडस्ट्री में आसमान छू रही थी। लेकिन शशि साहब को कभी भी उनसे इनसिक्योरिटी नहीं हुई, रादर वो हमेशा उनके लिए खुश होते रहे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही मोटिवेट करते रहे। और इसीलिए अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की दोस्ती बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत दोस्तों की जोड़ी में शुमार है। आप इन्हें कितने नंबर देते हैं मुझे जरूर बताइएगा। और फिल्म फेयर फ्रेंडशिप अवार्ड ये जोड़ी जीत सकती है? अगर हाँ तो मुझे बताएगा कौन? आप ही बताएंगे। तो तुरंत अपना फोन उठाइए और मुझे बताइए कि क्या हमारी जोड़ी नंबर 2 को मिल सकता है ये अवार्ड। वेट कर रही हूँ आपके रिस्पॉन्स का।

0: 93.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपने एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: भाई दोस्ती स्पेशल शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ और आज हम फ्रेंडशिप्स डे स्पेशल शो कर रहे हैं और इसी में नॉमिनेशन चल रही है भाई। आज की हमारी नॉमिनेटेड तीसरी दोस्तों की जोड़ी है आशा भोसले और आरडी बर्मन साहब की। वैसे बहुत सारे लोग इन्हें हस्बैंड वाइफ की तरह भी देखते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये मैरिड कपल चाहे जैसा भी रहा हो दोनों की दोस्ती बहुत ही अमेजिंग रही। क्या आप जानते हैं कि आरडी बर्मन सिर्फ 17 साल के थे जब वो 23 साल की आशा भोसले जी से मिले थे और अरमान फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान ही एसडी बर्मन साहब यानी कि हमारे पंचमदा के पिताजी ने आशा जी से कहा था कि आशा हमारे बेटे से मिलो और हमारे ये पतले दुबले से शर्मीले से आरडी बर्मन उस वक्त आशा जी को देखकर इतने नर्वस हो गए थे और इतने खुश भी थे कि उन्हें देखते ही उन्हें कह बैठे कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मुझे ऑटोग्राफ देंगी प्लीज। भाई ऑटोग्राफ तो आशा जी ने इन्हें दे ही दिया था लेकिन उसी के साथ हमारे आरडी बर्मन साहब यानी कि पंचमदास साहब अपना दिल दे बैठे आशा जी को। काफी वक्त तक ये दोनों मिलकर काम करते रहे और इनके बीच जो दोस्ती थी वो गहरी होती गई। ये दोस्ती प्यार में बदली और प्यार शादी में। शादी ज्यादा वक्त तक तो नहीं चल पाई लेकिन हाँ दोनों ने अपनी आखिरी सांस तक अपनी दोस्ती निभाई। कई खूबसूरत गाने इस फिल्म इंडस्ट्री को दिए और आशा जी हर वक्त ये कहती थी कि पंचम ने मेरी आवाज के वो टेक्सचर्स लोगों को सुनाए जो मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे अंदर है। भाई असली दोस्तों वही होता है जो आपके अंदर के छुपे हुए टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आया। ऐसा ही कुछ हमारे पंचम दा ने आशा जी के साथ भी किया था। उनकी इतनी खूबसूरत आवाज, उनके इतने खूबसूरत टेक्सचर्स दुनिया के सामने लेकर आए और बेहतरीन गानों के रूप में लेकर आए। तो क्या बोलती है पब्लिक, ये जोड़ी नंबर 3 बन सकती है आज के हमारे फ्रेंडशिप्स डे अवार्ड के विनर? अगर हाँ तो बताइए मुझे जल्दी से। नंबर तो आप जानते ही है 9654896896। इंतजार कर रही हूँ आपके रिस्पॉन्स का।
1: शुक्रिया, करम, मेहरबानी। दोस्तों जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले

0: बबली।
1: ओए बबली, पता है यार, आज मैं एक बाबा के पास गया और उन्होंने कहा मेरी कुंडली में दोष है, मैं जो भी काम करूँगा वो कांड में बदल जाएगा।
2: तो अच्छा है ना बंटी, बुढ़ापे में तेरे पास सुनाने के लिए किस्से तो मिल जाएंगे।
1: अरे यार, किस्से तो तब सुनाऊंगा ना जब मुझे कुछ याद रहेगा।
2: क्यों?
1: बाबा ने कहा मेरी मेमोरी लॉस हो जाएगी।
2: तो फिर तूने इस दोष का कोई उपाय नहीं पूछा?
1: ये भी पूछा, बाबा ने कहा अगर मैं रोज किसी लड़की को झूठी कहानियां सुना के पागल बनाऊंगा तो मेरी मेमोरी लॉस नहीं होगी। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने कहा बुढ़ापे में मेरे हाथ पर कांपने लग जाएंगे।
2: फिर तो सही है ना बंटी, कांपते हाथों से तो फोन तो यूज कर ही लेगा, लेकिन अगर पासवर्ड तेरे को याद नहीं रहेगा तो तेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? ऐसा कर, जल्दी से ना कोई लड़की ढूंढ और उसे पागल बनाना शुरू कर दे।
1: वही तो कर रहा हूँ पागल।
2: तूने मुझे पागल बोला? चल ठीक है, थैंक यू। तेरे को पता है पागल का मतलब ना क्रेजी होता है, और क्रेजी का मतलब होता है आर्टिस्ट, और जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो नेचर वाइज बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। तूने इनडायरेक्टली मुझे ब्यूटीफुल कह दिया, थैंक यू।
1: अबे जा रे, अगर तेरे दिमाग में ये भी फितूर है ना कि तू खूबसूरत है तो आंखों में सिर्फ काजल लगाना ही काफी नहीं है, तू एक काम कर, गले में ना नींबू मिर्ची और हाँ चप्पल भी लटका ले।
3: इस हंसी मजाक में क्या बंटी कभी समझ पाएगा बबली के दिल की बात? जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी, कुछ हटके।
4: बंटी और बबली, बंटी और बबली।
5: आज मैं आपको बताती हूँ सीट बेल्ट ना लगाने के दो फायदे।
6: छोटी बच्ची हो क्या?
5: पहला फायदा, आपकी गाड़ी फुली ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि दरवाजे से उतरने की बजाय गाड़ी आपको खुद झटका लगने पर बाहर फेंकेगी। दूसरा फायदा, आपको पार्किंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि चालान भरते भरते आपकी गाड़ी ही बिक जाएगी।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को।

मेरे जहन में एक सवाल हमेशा घूमता है कि ये अच्छे दोस्त मिलते कहाँ हैं? किसी ज्वेलरी शॉप पर मिलते हैं, क्योंकि अक्सर हम अच्छे दोस्तों को हीरे ही तो कहते हैं, और ये हीरे ज्वेलरी शॉप पर तो मिलते नहीं, कभी रोड पर, कभी स्कूल, कभी कॉलेज, तो कभी हमारे पड़ोस में, तो कभी स्टेशन पर भी मिल जाते हैं। जी हाँ, अब जो मैं नॉमिनेशन आपके सामने लेकर आने वाली हूँ, इनकी मुलाकात स्टेशन पर ही हुई थी। दरअसल बॉम्बे टॉकीज जाने के लिए एक लड़की ने ट्रेन बोर्ड की, तो उसने नोटिस किया कि एक नौजवान भी उसे देखकर ट्रेन में चढ़ गया। जब वो मलाड स्टेशन उतरी तो वो लड़का भी पीछे पीछे उतर गया। अब लड़की ने टांगा पकड़ा स्टूडियो जाने के लिए, तो वो लड़का भी टांगा पकड़कर उसी स्टूडियो पहुंच गया। अब भाई वहां जाकर इस लड़की ने घबराकर म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश जी से कहा कि ये लड़का मेरा स्टेशन से पीछा कर रहा है। तो खेमचंद जी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे किशोर कुमार साहब थे। और जानते हैं कि ये लड़की कौन थी? None other than our very own Nightingale, लता मंगेशकर जी। ये जो कंफ्यूजन थी एक बहुत ही खूबसूरत दोस्ती में बदल गई, और अक्सर रिकॉर्डिंग के टाइम ये दोनों इतना हंसा करते थे कि लता दी को कई बार सीरियस गाने गाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। वो हमेशा कहती थी कि जो भी गाना मैं किशोर दा के साथ गाती हूँ, उस गाने में मुझे सेंटिमेंट्स लाने में, इमोशंस लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं हमेशा हंसती ही रहती हूँ। वैसे ये दोस्ती बहुत स्पेशल है ना, जहाँ पर आप किसी को सिर्फ खुश रखते हैं, ऐसे दोस्त जिंदगी में

बहुत ही कम मिलते हैं, और अगर ऐसे दोस्त आपकी जिंदगी में भी हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। भाई वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे किशोरदा कितने नॉटी नेचर के थे, और इन दोनों दोस्तों के बारे में एक चीज और बहुत ज्यादा फेमस थी कि इनकी सारी शरारतें एक जगह आकर खत्म हो जाती थी, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी लता दी थी। अपनी इस दोस्त के सामने किशोरदा कुछ भी नहीं कह पाते थे। एक बार अमेरिका में एक टीवी इंटरव्यू शूट होना था, कैमरा रेडी, क्रू रेडी, सब कुछ तैयार था, लेकिन किशोरदा ने जैसे ही लाइट और कैमरास देखे वो जाकर सीधा एक रूम में चुपचाप बैठ गए। अब वो बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं थे, सब परेशान हो गए कि ये इंटरव्यू किस तरह से हो पाएगा। तभी किशोरदा ने एक शर्त रखी कि इंटरव्यू मैं सिर्फ एक कंडीशन पर दूंगा, अगर इंटरव्यू लता मंगेशकर कंडक्ट करेंगी तो। अब जब इस शर्त के बारे में लता दी को पता चला तो वो तुरंत जाकर इंटरव्यूअर की चेयर पर बैठ गई, और उसके तुरंत बाद ही हमारे किशोरदा कमरे से बाहर आए और पूरा इंटरव्यू बहुत ही आराम से चला गया। वैसे अक्सर हम ये कहते हैं ना कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही दोस्ती की जा सकती है, लेकिन इस जोड़ी में तो सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, वो थी सुर। और आज के हमारे ये जो नॉमिनेशन है, क्या जीत पाएंगे फ्रेंडशिप्स अवार्ड? तो चलिए वोट जारी रहेगा, आप फटाफट अपना वोट करते रहिए। शो के एंड में हम रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं डिक्लेयर कर देती हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: एक नज्म असली दोस्ती के नाम।
1: तेरे जैसा फ्रेंड ना कोई।
0: एक दोस्त है मेरी, घूमने फिरने का बड़ा शौक रखती है। जब भी मिलती है कोई ना कोई वेकेशन प्लान कर लेती है। कभी बीच कभी माउंटेन का सपना दिखाकर पापा नहीं मानेंगे, लास्ट मोमेंट पर कह देती है जैसी भी है, पर मुझसे बहुत प्यार करती है। पर अपने प्लान पर इकरार करवा कर खुद इनकार करती है। अगर आपके पास भी एक ट्रिप कैंसिल करने वाला दोस्त है तो रेडियो महारानी की तरफ से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे।

0: आज मैं आपको बताता हूँ पानी बर्बाद करने के दो फायदे।
1: कौन है ये पागल आदमी?
0: पहला फायदा, आपको बारिश से बचने के लिए छाता नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नदियाँ सूख जाने से बारिश ही नहीं होगी।
2: बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी।
0: दूसरा फायदा, आप एनिमल लवर बन जाएंगे और आपको ऊंट पालना पड़ेगा, क्योंकि पानी सूख जाने से आपका सारा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।
4: अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है।
5: पेड़ काटने का पहला फायदा, आप सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स भरने वाले नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन भी आपको लाखों में खरीदनी पड़ेगी।
6: गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।
5: दूसरा फायदा, आपके साथ साथ आपका शहर भी पढ़ा लिखा हो जाएगा, क्योंकि हर गर्मी में उसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी।
3: ना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को।

वेलकम बैक है जी, सपना हूँ मैं आपके साथ। और रात भर की बात बाकी में आज हम दोस्ती स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरी अगली नॉमिनेटेड जोड़ी है देवानंद और गुरुदत्त साहब की। 1940s में दो यंग लड़के सपनों से भरे हुए जो कि बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे एक दुकान पर मिले और वहाँ देव साहब ने नोटिस किया कि अरे इस लड़के ने तो मेरी शर्ट पहनी है। वो लड़का गुरुदत्त साहब थे, लेकिन ये बात जानकर कि लॉन्ड्री वाले ने दोनों की शर्ट्स बदल दी थी, दोनों एक दूसरे के करीब आए, काफी देर हंसते रहे और इसके बाद ये दोस्ती इस कदर आगे बढ़ी कि दोनों ने कर लिया था एक दूसरे से प्रॉमिस और उसी प्रॉमिस ने इंडस्ट्री को दो बहुत बड़े बेहतरीन कलाकार और डायरेक्टर्स भी दिए थे। जहां देवानंद साहब ने गुरुदत्त से ये प्रॉमिस किया कि जब भी मैं अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा तो मेरे बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म का डायरेक्शन तुम करोगे, वहीं गुरुदत्त साहब ने भी देव बाबू से ये प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में एज एन एक्टर डायरेक्ट करूंगा। और दोनों ने ही अपने प्रॉमिसेस फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करने के बाद पूरे किए। नवकेतन के बैनर तले देव साहब ने अपनी पहली फिल्म का डायरेक्शन गुरुदत्त से ही करवाया था। फिल्म का नाम था बाजी। सुपर डुपर हिट रही थी ये फिल्म और हमारे गुरु भाई कौन से कम थे, उन्होंने भी अपना प्रॉमिस देव साहब से पूरा करते हुए अपनी फिल्म CID में एज एन एक्टर लिया था। ये फिल्म भी बहुत ही जबरदस्त हिट रही थी। दोनों ने ही खूब नाम कमाया, खूब शोहरत कमाई, लेकिन अपने दोस्ती के रिश्ते को कभी नहीं छोड़ा और सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़े बल्कि अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए एक दूसरे को भी आगे बढ़ाया। भाई इसी का नाम तो दोस्ती है, आगे बढ़ेंगे लेकिन दोस्तों के बिना नहीं। ये जो सीख हमें इन दोनों दोस्तों से मिलती है, अगर आज हम इस सीख को अपनी जिंदगी में अपना ले तो हमारा कोई भी दोस्त कभी भी हमसे दूर नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्ती जो है बहुत ही नायाब चीज है। चलिए इसी के साथ आज की हमारी जोड़ियां हुई फाइनल, हमारे सारे नॉमिनेशंस आपके सामने। आप तुरंत अपना फोन उठाइए और वोट करके बताइए कि हम किसको देने वाले हैं आज का अवार्ड। इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक आप सभी के लिए, वापस आऊंगी और रिजल्ट अनाउंस करूंगी। और साथ ही वक्त है अपने सेकंड सरप्राइज को भी डिस्क्लोज करने का, तो बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: घंटी और बबली।
1: ओए बबली, पता यार आज मैं एक बाबा के पास गया और उन्होंने कहा मेरी कुंडली में दोष है, मैं जो भी काम करूँगा वो कांड में बदल जाएगा।
2: तो अच्छा है ना बंटी, बुढ़ापे में तेरे पास सुनाने के लिए किस्से तो मिल जाएंगे।
1: अरे यार, किस्से तो तब सुनाऊंगा ना जब मुझे कुछ याद रहेगा।
2: क्यों?
1: बाबा ने कहा मेरी मेमोरी लॉस हो जाएगी।
2: तो फिर तूने इस दोष का कोई उपाय नहीं पूछा?
1: ये भी पूछा, बाबा ने कहा अगर मैं रोज किसी लड़की को झूठी कहानियां सुना के पागल बनाऊंगा तो मेरी मेमोरी लॉस नहीं होगी। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने कहा बुढ़ापे में मेरे हाथ पर कांपने लग जाएंगे।
2: फिर तो सही है ना बंटी, कांपते हाथों से तो फोन तो यूज कर ही लेगा, लेकिन अगर पासवर्ड तेरे को याद नहीं रहेगा तो तेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? ऐसा कर, जल्दी से ना कोई लड़की ढूंढ और उसे पागल बनाना शुरू कर दे।
1: वही तो कर रहा हूँ पागल।
2: तूने मुझे पागल बोला? चल ठीक है, थैंक यू। तेरे को पता है पागल का मतलब है क्रेजी होता है, और क्रेजी का मतलब होता है आर्टिस्ट, और जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो नेचर वाइज बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। तूने इनडायरेक्टली मुझे ब्यूटीफुल कह दिया, थैंक यू।
1: अबे जा रे, अगर तेरे दिमाग में ये भी फितूर है ना कि तू खूबसूरत है तो आंखों में सिर्फ काजल लगाना ही काफी नहीं है, तो एक काम कर, गले में ना नींबू मिर्ची और हाँ चप्पल भी लटका ले।
3: इस हंसी मजाक में क्या बंटी कभी समझ पाएगा बबली के दिल की बात? जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी, कुछ

एयर करूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ खूबसूरत लाइंस भी लिखी हैं जो मैं अभी पढ़ने वाली हूं। पर उससे पहले मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगी आज का सरप्राइज नंबर 2। अब आपके लिए तो ये सरप्राइज हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा सा इमोशनल पल इसलिए है क्योंकि पिछले 2.5 सालों से मैं एक शो कर रही हूँ जिसका नाम है रात बाकी बात बाकी, जो कि आज होने वाला है मेरा आखिरी शो। जी हाँ, इसके बाद रात बाकी बात बाकी में सपना साउंड नहीं करेगी क्योंकि ये शो हो रहा है बंद। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे या फिर आप मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे, बल्कि आप मेरे एक और पहलू को अब रेडियो पर सुन सकते हैं हर वीकेंड 8 से 9, क्योंकि लेकर आ रही हूं मैं कुछ खूबसूरत कहानियां आप सभी के बीच। ये कहानियां आपकी, मेरी या किसी की भी हो सकती हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और जितना प्यार आपने रात बाकी बात बाकी को दिया, आई एम श्योर इतना ही प्यार आप मेरे आने वाले शो कहानी अभी बाकी है को भी देंगे।

तो चलिए वक्त हो चला है हमारे आज के लकी विनर्स का। खैर मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैसेजेस मेरे पास आए हैं उन सब में ऑलमोस्ट एक बात कॉमन है, वो सब ये कहते हैं कि दोस्ती कभी फर्स्ट सेकंड या थर्ड नहीं होती, दोस्ती दोस्ती होती है। इसलिए फिल्म फेयर फ्रेंडशिप्स डे अवार्ड दिया जाता है हमारे सभी दोस्तों को, क्योंकि दोस्ती अपने आप में बहुत स्पेशल है। लेकिन जिन लोगों ने भी मुझे मैसेजेस किए हैं उन सब का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिसमें धर्मेंद्र जी, सुभाष जी, नरेंद्र बंसल जी, जिन्होंने मुझे दो बहुत ही खूबसूरत लाइन्स भेजी हैं जो कि मैं पढ़ना चाहूंगी। जिक्र मेरा आएगा महफिल में जब जब दोस्तों, जिक्र मेरा आएगा महफिल में जब जब दोस्तों, रो पड़ेंगे याद करके यार सब यारी मेरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी खूबसूरत पंक्तियां हमारे साथ शेयर की। और इसी के साथ विजय प्रहलाद जी, राजेश शर्मा जी, रवि नारंग, सौरभ द्विवेदी और सुखदेव सिंह जी, ये सभी लोग जिन्होंने अपने टेक से मेरा साथ दिया है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके प्यार का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, जो प्यार आपने पिछले 2.5 सालों में मुझे और रात बाकी बात बाकी को दिया, ये प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, और ऐसा ही प्यार मैं आगे भी आपसे चाहती रहूंगी। फिलहाल वक्त है आप सब से विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीकेंड एक नए शो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दिस इज मी सपना साइनिंग ऑफ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आई है वहीं से है तू ठीक, न नजरों में आ न मुझको तू दिख, मैं तोड़ूंगा दिल तेरा लेके ही तो लिख, बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच, बोली में थोड़ा रियान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है, बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ, BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
6: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
7: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
7: अर्जुन नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
7: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
7: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
7: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
7: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
7: अरे यार, वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता.

0: महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना, जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझे

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद कटकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

उम्र है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM
4: कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: स्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो, सुनो।

बेहतर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा।

0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

Dolls, पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

नौकरानियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: बड़ा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: हर है
1: जाली।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकट सिरा कूड़े घुमुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकट सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे रफ्ता।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजे सरकार।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस किसी चीज मत लिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: है शाम जब तुम घर लौटते हो। माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। वेलकम मैम।
1: ओम शांति।
2: थैंक यू।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज की मीनिंगफुल डिस्कशन ऑन माइंड बॉडी कनेक्शन।
1: ओके ज्योति जी, क्या मल्टीटास्किंग हमारे माइंड को स्ट्रांग बना रहा है या वीक?
2: ये डिपेंड करता है कि हम उसको अगर दूसरों की देखा देखी अगर हम कर रहे हैं तो जरूर हमारे वो माइंड को वीक बनाएगा
0: जी,
2: क्योंकि हमने सिर्फ एक कंपैरिजन करके और अपने आप को दूसरों को देख करके हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर है कि उनको शौक होता है कि बहुत सारे कार्यों को एक साथ करना, बहुत सारी चीज़ों को सीखना, तो ये कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि हर एक नई चीज़ सीखने के लिए हमें उसमें इंटरेस्ट भी आता है और हमारे कुछ ना कुछ चेंजेस भी होते हैं। और जितने भी हमने सक्सेसफुल लोगों को भी देखा है तो उन्होंने कभी भी एक टास्क के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सारे टास्क में दिया है, मल्टीटास्किंग हुए हैं। जैसे अगर उनको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि वो जाकर के रेस्ट करेंगे, वो अपने टाइम अपने वर्क को चेंज कर देते हैं तो उससे उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है। तो जो मल्टीटास्किंग लोग हैं, जिनका वो हॉबी है, जिन्हें वो शौक है, तो उनके लिए वो एक पावरफुल टूल है जिसके द्वारा जो है वो माइंड को बिजी रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों का क्रिएटिविटी के साथ करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मल्टीटास्किंग हमें वीक बना रहा है, कहीं ना कहीं हमें वो बहुत सारी जानकारियाँ देता है और स्ट्रांग बनाता है इसीलिए। लेकिन कुछ लोग अगर कंपैरिजन में जा रहे हैं, दूसरों की देखा, अच्छा ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पास जो स्पेशलिटी है वो भी कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, उसको भी वो खो देते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं वो वीक बना देते हैं
0: जी।
2: तो इससे पहले हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो भी हम काम कर रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, तो क्या वो मुझे पसंद आ रहा है, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, या फिर हम लोगों को देख देख के उनको ऐसा दिखाना है या उनको शो ऑफ करना है इसके लिए कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद फिर हम बहुत वीक फील करते हैं, हम अपने आप से होपलेस भी हो जाते हैं और लाइफ ऐसी लगने लगती है जैसे हमारे जीवन में हम भागते भागते थक गए हैं। लेकिन अगर हमने उसको शौक बनाया है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ एक रास्ता बंद होते ही हमारे पास दूसरा रास्ता खुला हुआ होता है। तो चॉइस करनी है आपको कि वो आप किस रूप में ले रहे हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं और अगर आपने देखा देखी किया तो वीक भी बन सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, का सोशल मीडिया कंपैरिजन हमारे बॉडी एनर्जी को इफेक्ट करता है?
1: जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कई शब्द इसमें यूज किए इस क्वेश्चन में, तो उससे उसका जो सोर्स, जो सबसे पहला सोर्स है, हम देखते हैं कि मोबाइल है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर मोबाइल भी अगर हम अपने पास काफी समय तक रखते हैं तो बॉडी में चेंजेस, फर्क जो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो हो रहे हैं। फिर दूसरा वर्ड आपने यूज किया सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया आज की बहुत बड़ी डिमांड हो चुकी है, नीडलेस डिमांड है लेकिन फिर भी बहुत डिमांड है।
0: बिल्कुल।
1: और तीसरा वर्ड जो आपने यहाँ इस क्वेश्चन में यूज किया है, जो कि कंपैरिजन है, और ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज रखता है। अगर एक माँ अपने दो छोटे बच्चों में कंपैरिजन करती है, कंपेयर करती है कि ये अच्छा है और ये नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, वो नालायक है, तो भी हम देखते हैं कि बच्चे के शरीर में, बच्चे की हरकतों में, बच्चे के थॉट लेवल पे, हर चीज में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यहाँ सोशल मीडिया पे कंपैरिजन हो रहा है, और ये एक ऐसा कंपैरिजन है जो आज की डेट में बहुत बड़ी हमारे लिए अहमियत रखता है।
0: बिल्कुल।
1: और इस कंपैरिजन को मैं जब जब देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो, मेरा मीडिया जो सोर्स है मोबाइल, वो मेरे हाथ में है, और मैं उसको जब जब याद करता हूँ, देखता हूँ, छूता हूँ, मुझे वो कंपैरिजन हिट करता है।
0: जी।
1: और जैसे जैसे वो मुझे कंपैरिजन हिट करेगा, वो मेरे हार्मोन्स को भी हिट करेगा, वो मेरे थॉट लेवल के थ्रू मेरे हर सेल के ऊपर इफेक्ट करेगा।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसीलिए अगर मैं इस कंपैरिजन से बच सकूं तो बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें काफी लोग सक्षम है कि वो कंपैरिजन में अपने लेवल को हायर रखते हैं, एंड दैट इज द गुड पार्ट, कि अगर कोई मुझे कंपेयर कर रहा है तो लेट हिम बी, उसे करने दें, लेकिन मैं क्या हूँ वो मुझे मेरा आंकलन खुद अपने नजरिए से करना चाहिए। किसी और के चीजों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, बोलने के द्वारा मुझे अपने स्तर को नीचे गिराना या चढ़ाना, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और मेरे को मैं ही जो है वो आगे या नीचे धकेल सकता है। मैं चाहूँ तो ऊपर जा सकता हूँ उस कंपेरिजन को लेकर ही। कई लोगों को हमने देखा है कि उनको गलत बोला गया लेकिन उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के अपने आप को आगे किया है, और कई लोग हैं जो उस कंपैरिजन के, जो कहे चादर में अपने आप को ढक लेते हैं और बिल्कुल ही सिकुड़ कर बैठ जाते हैं और अपने आप को फिनिश कर लेते हैं। दैट इज रॉन्ग। तो इसीलिए हमें अपने आप की क्षमता को बढ़ाना है। सोशल मीडिया अगर मुझे कंपेयर कर रहा है, मुझे कंपैरिजन लेवल पर लेकर आ चुका है, तो इट्स नीड द टाइम टू चेंज इट। या तो कुछ दिन उससे दूरी बनाएं, या अपने आप से जुड़ना हम शुरू करें, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। आजकल कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, तो क्या ये स्ट्रेस के टाइम पर बॉडी और माइंड का जो रिस्पांस होता है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? आप दोनों का इस पे क्या कहना है?
1: अगर स्ट्रेस की बात करें तो एक्चुअल में स्ट्रेस कोई चीज ऐसी है नहीं, लेकिन हमने हर एक छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस बना लिया है और उसका इफेक्ट सीधा ही हमारी बॉडी पर पड़ रहा है। क्योंकि जैसा ही हम सोचते हैं, जिस विधि से हम चल रहे हैं, आज हम छोटी छोटी बातों का अगर हमने कहीं की अटेंशन नहीं देने के कारण वो टेंशन बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हमने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया है, कोई भी बात को अगर हम पकड़ कर बैठ जाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूँ कि एक हैंकी है और इस हैंकी को आप जो है वो होल्ड करके रखें, और बहुत देर तक अगर आप होल्ड करते हैं तो वो भी हैंकी में वेट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने उसको फोर्सफुली पकड़ा हुआ है तो उसके कारण से आपको पूरी बॉडी में स्ट्रेस फील होगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: तो ऐसे ही हम भी कई बार बातों को पकड़ लेते हैं, चीज़ें जो होने वाली हैं, या तो हम पास्ट की बातों में फंसे हुए होते हैं या फिर हम फ्यूचर की बातों में। किसी ने बहुत अच्छी बात कही भी है कि पास्ट इज़ द हिस्ट्री, वो बीत गया वो इतिहास है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते
0: जी।
1: फ्यूचर इज़ द मिस्ट्री, वो हमें नहीं पता क्या होने वाला है, बट प्रेजेंट इज़ द गोल्डन गिफ्ट, हम आज में जिए। तो जब हम आज में जीना सीख लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है।

0: कहीं ना कहीं हमें सबसे अलग करती है, और अलग करती है हमारे माइंड में और ज़्यादा उसकी एक प्रेशर बनता है जो कि बॉडी में कहीं ना कहीं जरूर उसका इफेक्ट होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को एग्जाम भी देना है या कहीं जाना भी होता है तो उनको किसी को लूज मोशन लग जाते हैं
1: जी,
0: किसी को जो है वो हेडेक हो जाती है। तो जो भी हमारी बॉडी का वीक पार्ट है उस पर वो स्ट्रेस इफेक्ट डालता है और वो चीज़ हमारे साथ रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है
1: जी।
0: अगर हमने अपने आप को पहले तो हमें हील करना है अपने अंदर को, माइंड का सीधा सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी से है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ है।
1: बिल्कुल,
0: जितने भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना हुआ है कि उन्होंने अगर अपने मन के थॉट के ऊपर काम किया है, विचारों पर काम किया है, तो उनकी बॉडी में जो आए हुए डिसीज भी थे वो भी ठीक हो गए
1: जी।
0: सिर्फ किसलिए? उन्होंने अपने थॉट पर ध्यान दिया है। तो मन का हमारे तन के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ता है, इसीलिए कहते भी हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।
1: अर्थात
0: मन अगर अच्छा है तो हमें हरिद्वार जाने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें वहीं से ही हीलिंग मिल जाती है, हमें खुशी मिल जाती है। लेकिन आज की डेट में अगर हम पूछें लोगों से कि आप कैसे हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आप कैसे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे?
1: बहुत बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया है। और लोगों से पूछेंगे तो क्या कहेंगे? अधिकतर लोगों का जवाब क्या रहता है?
1: ठीक है, अच्छे हैं।
0: ठीक है, अच्छे हैं,
1: ऑल गुड,
0: चल रही है, कट रही है। और सुबह सुबह जब लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो भी उनकी भाषा कैसी हो गई आज की डेट में? मिलते के साथ कहते हैं हाय।
1: जी,
0: अगर हाय शब्द को हिंदी में लिखा जाए तो हाय हाय है। तो हमारी हर एक वर्डिंग्स में टेंशन दिख रही है, हमारी चाल चलन में टेंशन दिख रही है, हमारा एक दूसरे के साथ जो बात करने का तरीका है उसमें कहीं पर भी खुशी दिखती नहीं है। आज लोग गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते, सीधा मॉर्निंग,
1: मतलब
0: गुड है नहीं तो मॉर्निंग कैसे कहेंगे। तो हमारे जितना हम नेगेटिविटी में रहते हैं हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, और उस स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है, बॉडी से फिर वो हमारे रिलेशंस में भी जाता है, और धीरे धीरे हम अपने आप की पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल करते हैं। तो सबसे पहले हमें मन को बहुत पॉजिटिव थॉट सुबह उठते के साथ अगर हम देते हैं, फिर आप उसका इफेक्ट देखेंगे कि आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ चलेगी।
1: बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी आप क्या कहेंगी?
2: जी बिल्कुल सही है कि मन का प्रभाव तन पर है और तन का प्रभाव मन पर है, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस के दौरान क्या प्रभाव होता है। तो विशेष जैसा मैं खुद अनुभव एक बार किया कि ड्राइविंग के टाइम पे अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो वो भी एक तरह से मैं यही कहूंगी कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस के वो लक्षण है
1: जी,
2: कि आप प्रेजेंट में नहीं है। और प्रेजेंट में आपको क्या देखना है, दाएं बाएं आगे ये सब गाड़ियां देखनी है, लोगों को देखनी है, लेकिन लोग क्योंकि पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं इसीलिए उनके थॉट्स कैप्चर हो जाते हैं, यानी अभी जो सोचना है उसकी बजाय वो आगे पीछे का सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से जब माइंड को या बॉडी को, माइंड के थ्रू बॉडी को एक्सेलेरेटर को प्रेस करना चाहिए, कभी ब्रेक दब जाता है, और ब्रेक को जो प्रेस करना चाहिए वो एक्सेलेरेटर भी दब जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी होगी कि जहाँ एक्सीडेंट मैक्सिमम इसी कारण से हो रहे हैं कि ब्रेक दबाना चाहिए था लेकिन गलती से, और गलती कहाँ से हो रही है? बिकॉज ऑफ माइंड कनेक्शन विद द बॉडी।
1: बिल्कुल,
2: तो वहाँ मैं एक्सेलेटर प्रेस कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा हमारे को दुष्प्रभाव दिखता है, इसीलिए जो हम कहें कि स्ट्रेस को हम मैनेज करना सीखें, प्रेजेंट में जीना सीखें, जैसे कि ज्योति जी ने कहा वो सबसे बढ़िया चीज़ है। प्रेजेंट इज वाकई में अ प्रेजेंट, मैं जो अभी कर रहा हूँ उसका फल मुझे नेक्स्ट मिलना है। मैंने ब्रेक प्रेस नहीं किया, एक्सेलेटर प्रेस किया तो उसका गिफ्ट मुझे मिला कि एक हिट हुआ।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए आप प्रेजेंट में रहना सीखें, क्योंकि माइंड और बॉडी का बहुत जबरदस्त कनेक्शन है
1: जी।
2: अगर माइंड के पास जो सूचना है वो बॉडी के अंगों तक सेकंड्स में पहुंचाती है, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स के थ्रू, लेकिन अगर वहां पर अगर कुछ सेकंड्स का जर्क आ जाता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक हाथ होता है माइंड और बॉडी के बीच के संतुलन को बिगाड़ने में।
1: बिल्कुल।
2: तो इस संतुलन को बनाए रखने में हमारे को, जो मैं तो यही कहूंगी कि मेडिटेशन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है।

0: कि वो सडनली आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो एक डैन हैरिस करके एक जो मैं कहूँ न्यूज रीडर है
1: जी।
0: और उन्होंने एक बुक भी लिखी है एग्जैक्टली तो मुझे नाम पूरा याद नहीं, बट 10% हैप्पीनेस ही सेड अबाउट इट कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं उन्हें न्यूज प्रेजेंट करने के टाइम पे इतना हाइपर टेंशन होता था, स्ट्रेस होता था, एंजाइटी होता था कि बहुत सारी चीजें बिगड़ रही थी। तब उन्होंने मेडिटेशन पे बहुत रिसर्च की और प्रैक्टिकल करके देखा और उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि एटलीस्ट 10% चेंजेस तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, आपके स्ट्रेस लेवल पे, एंजाइटी पर उसका असर जरूर होगा और वो कंट्रोल होगा, तो फिर बॉडी एंड माइंड का बैलेंस भी नेचुरल एंड ऑब्वियस जो है वो आप गेन कर पाएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया,

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी कहते हैं कि जो सोचता है वो वैसा ही बन जाता है, तो ये जो सोचता है वैसे ही बन जाता है, ये साइंटिफिकली कितना ट्रू है?
1: इसको अगर हम फिलोसोफर की भाषा में देखें तो विवेकानंद जी ने भी ये कहा है कि जो हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं
0: जी।
1: और बहुत सारे ऐसे और भी फिलोसोफर हुए कि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं, इसका अगर आप प्रैक्टिकल करके देखें, अगर आप बैठे हैं और कोई ऐसे मोमेंट को आप याद कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी थी, तो आपको बैठे बैठे भी आपका चेहरा कैसा होगा? आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आएगी
0: जी,
1: क्योंकि आप उस थॉट में हैं। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात पर विचार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो कहीं गंभीर है उस पर अगर आप विचार करें तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन वैसा ही होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे चेहरे के भाव होते हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि विचार हमारे बीज है लाइफ के, तो जैसा आप बीज डालेंगे फल वैसा ही आपको मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: हमारी लाइफ वैसी ही बनती जाती है जैसे हमारा थॉट प्रोसेस चलता है
0: जी।
1: इसीलिए आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अपनी सोच को बदलो
0: जी,
1: अपनी सोच का परिवर्तन करो। आज अगर हम पुरानी सोच को देखते हैं जिसे हम पुरानी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हम भी फिर वैसा ही चीज़ों पर ढलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम नई सोच की बात करते हैं तो सोच नई होने का मतलब कुछ नया हमें सीखना।
0: बिल्कुल।
1: ना कुछ नया हमें सीखना, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनको तो हम एज इट इज ही लेंगे। अगर हम ए बी सी डी की बात करते हैं तो आज भी ए फॉर एप्पल ही पढ़ा जाता है, आज भी ए वैसा ही लिखा जाता है जैसा पहले लिखा जाता था। तो उनमें अक्षरों में कोई चेंजेस नहीं है, तो बेसिक चीजें तो वही है। अगर हमारे विचारों में महानता है, श्रेष्ठता है, दूसरों के लिए अच्छे भाव है, दूसरों के लिए हम अच्छा सोचते हैं, तो नेचुरली हमारे पास वही आएगा, वैसे हमारी लाइफ बनेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ तो लोग बुरा ही कर रहे हैं
0: जी,
1: क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है
0: जी।
1: हमारी अच्छी सोच कुछ समय के बाद हमें रिजल्ट देती है।
0: बिल्कुल।
1: कोई भी चीज़ अगर आप बो रहे हैं और अच्छा फल अगर आप बीज लगा रहे हैं और उसका लंबे समय तक आपको फल लेना है, तो डेफिनेट उसका वेट तो आपको करना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर हमने आज ही बीज बोया और कल हम वेट कर रहे हैं कि मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारी लाइफ के अंदर हमें अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना है। और इसको आप जितना प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने विचारों से सृष्टि में बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन किया है। हम उनकी आज बातें भी सुनते हैं जिन्होंने अपने थॉट के ऊपर कमांड करके अपनी बॉडी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, माना उसी अकॉर्डिंग बॉडी भी चलने लग गई। जिनकी बीमारियां अपने विचारों से ठीक हो गई, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं। कुछ लोगों ने अपने विचारों से अच्छे भले माहौल को भी बिगाड़ दिया।
0: बिल्कुल।
1: वैसे लोग भी हम देखते हैं। तो हमारे विचार हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश देते हैं, हमारे जीवन के वो बीज हैं जो जीवन रूपी वृक्ष को वैसा बनाते हैं जैसा हम बीज बो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं तो आपकी लाइफ जरूर अच्छी बनेगी। और विचार ही सारी चीज़ों का जड़ है, उसी पर ही सब चीज़ें डिपेंड करती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिले।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, आजकल वर्क कल्चर, रिलेशनशिप, फैमिली में कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनवायरनमेंट जरूर पाया जाता है, तो क्या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहकर भी हम अपने माइंड को पूरी तरीके से पीसफुल रख सकते हैं?
1: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट आपने कहा कि तीनों चीज़ें, जो वर्क प्लेस बोला आपने और सबसे इम्पोर्टेंट जो घर बोला, वहाँ टॉक्सिक एनवायरनमेंट का पाया जाना, एंड इट्स रियली ट्रू।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सत्य है कि आज टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता जा रहा है। कितने ही लोग हैं जो शाम को वापस घर जाना नहीं चाहते हैं, पर जाना है। क्यों? क्योंकि और कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। कितने ही लोग हैं जो सुबह उठकर ऑफिस आना नहीं चाहते हैं। कितने ही बच्चे हैं जो स्कूल भी नहीं जाना चाहते, जबकि स्कूल सबसे ईजीएस्ट जो कहें प्लेस है खुश होने का, आगे बढ़ने का, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन लोग न बच्चे नहीं जाना चाहते। तो ये टॉक्सिक वर्ड यानी जहर, और जहर माना ही बहुत ही ज़्यादा हाईली नेगेटिव, जो हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को, दिमाग को, इनफैक्ट आत्मा को भी डैमेज कर रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द बोला टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो क्या यहाँ पीसफुल 100% रहना पॉसिबल है? तो मैं ये ज़रूर कहूँगी हाँ है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा एबनॉर्मल होना पड़ेगा, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए करना होगा। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आप अपने लिए करते हैं, दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं, तो यहाँ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि हम हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट में 24/7 रह रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर जो एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, लेकिन है तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, जो विवेकानंद स्वामी जी जब विदेश गए थे तो उनकी ड्रेस को लेकर के पूरा ही जो वहाँ का जो लोग थे उन्होंने मजाक उड़ाया था, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, बहुत हंसे थे। और उन्होंने सिर्फ 2 मिनट दिए गए थे, जबकि बाकी सबको आधा घंटा दिया गया था, लेकिन उनको सिर्फ 2 मिनट दिए गए थे बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, कि वो किस तरीके से आए हैं। तो उस एनवायरनमेंट में, हालांकि हमारे लिए अगर हम खड़े हों तो हमारे लिए तो ये हाईली टॉक्सिक है।
0: बिल्कुल।
1: तब वहाँ उनके ये 2 शब्द, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पर इतनी तालियां बजी थी जिसकी गूंज पूरे विश्व में गूंजी। पर कब मैं अपने आप को अगर वहां खड़ा रखती हूँ तो क्या मैं इतनी कॉन्फिडेंटली खड़ी हो सकती हूँ? तो वो क्यों इतने कॉन्फिडेंट हो पाए? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया था, समाज के ऊपर बाद में किया, पहले अपने पर काम किया। टॉक्सिसिटी आज हर जगह है, लेकिन सबसे पहला टॉक्सिक पना जो है, मुझे मेरे अपने अंदर का खत्म करना है।
0: बिल्कुल।
1: मैं छोटी छोटी बातों पर डाउन हो जाती हूँ, अपने को इंसल्टिंग फील करती हूँ, गिल्ट मेरे अंदर इतने सारे हैं खुद को लेकर के। तो ये सारी चीज़ों को मुझे पहले अपने आप को क्योर करना है, हील करना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है। जो उन्होंने किया बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, वो ये कर पाए। आपको जहाँ से एनर्जी मिलती है, आप वहाँ से अपने आप को अपलिफ्ट करें, ऊपर करें, अपने आप को मोटिवेट करें, कॉन्फिडेंट बने, और फिर उसके बाद आप महसूस करेंगे कि 100% जो एकदम नेगेटिव आपके लिए एनवायरनमेंट है, वहाँ भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। इनफैक्ट आपको पता है कि ये मेरा एग्जाम प्लेस है, एग्जाम टाइम है, तो आप अपना वहाँ बेस्टेस्ट प्ले करके आएंगे, क्योंकि आपको पता है इसके बाद मेरी सक्सेस होनी ही होनी।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है नया नजरिया।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी, हम सबकी कोई ना कोई एक गट फीलिंग होती है, तो क्या ये गट फीलिंग एक्चुअली बॉडी का इंटेलिजेंस है या सिर्फ इमेजिनेशन?
1: इसको सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कह सकते हैं, कई बार हमारी बॉडी का भी, क्योंकि हमारे 10 ऑर्गन्स हैं ऐसे जिसमें 5 जो हैं वो कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं।
0: क्या बात है।
1: तो ज्ञान इंद्रियां जो हमारी है वो हमें कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशन कराती है किसी भी चीज़ को देख करके। अगर हमें अंदर से आता है कई बार किसी व्यक्ति को देख करके, नहीं ये रॉन्ग है
0: जी,
1: ये ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी वो सिक्स सेंस पावर जिसको हम कहते हैं वो हमें ये शो करती है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, और उससे हमें बचाव के लिए वो सावधान करती है। कई बार हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम ये कह भी देते हैं कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, और बाद में कुछ समय के बाद जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है तो हम फिर वही बात दोहराते हैं कि पहले मुझे ये फीलिंग आई थी लेकिन मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं। तो ये जो हमें सिक्स सेंस पावर हमें, और हर एक के पास ये सिक्स सेंस पावर होती है, इनफैक्ट जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी तो ये सिक्स सेंस पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है
0: जी।
1: क्योंकि उनके वो जो 5 ऑर्गन्स हैं, जो एक हेल्दी व्यक्ति के पास सारी चीज़ें हैं लेकिन उनके पास उसमें कहीं ना कहीं मिस होता है, तो ये गॉड गिफ्टेड होता है कि उनको वो चीज़ फील होती है
0: जी।
1: ये सारी चीज़ें आप देखिए, इसमें जो 5 ऑर्गन्स जिसको मैंने बताया, जो सेंसेस हैं, जैसे कि हम स्पर्श करते हैं किसी चीज़ को, टच से पता चल जाता है कि रॉन्ग है या राइट है
0: जी,
1: जिसको आजकल बच्चों को भी सिखाया जा रहा है। अगर हम स्मेल से हमें पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ नेगेटिविटी है, वो स्मेल से भी उन चीज़ों को भाप सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे को सिर्फ हमने देखा नहीं है लेकिन हमारे माइंड में वो कहीं ना कहीं एक दृश्य बना देती है, तो वो दृश्य भी है जो कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव की इंस्टीट्यूशन कराता है। तो ऐसे 5 ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे ये 5 इंद्रियां हैं, हाथ कान नाक मुंह, ऐसे इसी के ही उसमें स्किन है हमारी, जो स्किन भी हमें पता लग जाती है। कहीं आप देखिए कोई किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि जरा सा ठंडे में भी पता लग जाता है कि नहीं कुछ तो है यहाँ पर जो कि हमें वो फील हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं और इसको हम सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं कह सकते हैं, गट फीलिंग है। और इन चीज़ों पर हमें अगर ध्यान देंगे हम, तो हमें उस चीज़ का ये कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ से हमें एक गिफ्ट मिला हुआ है कि हमें पहले से ही चीज़ों को भांपने की एक हमें विधि मिलती है, बशर्ते हम उसको पहचाने और उसके अनुसार काम करें, रिएक्ट नहीं करें, लेकिन वो हमें एक चेतावनी दे रही है। तो सावधानी रखना तो गलत नहीं है, तो हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन टू मच में भी हम ऐसा ना हो जाए जो हर एक चीज़ को उसी नज़रिए से देखने लग जाए। तो हमें उसको समझना है, उसे समझ करके फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करना है।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है नया नजरिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। क्या डिटैचमेंट यानी कि वैराग्य जिसे हम कहते हैं, इससे फिजिकल रिलैक्सेशन इम्प्रूव होती है या नहीं, इस पे आप दोनों का क्या कहना है?
1: ये बिल्कुल इम्प्रूव होती है और बहुत वंडरफुली इम्प्रूव होती है। जिसका मैं छोटा सा एग्जांपल कहूँ कि आपके हाथ में आईफोन है, वो भी सबसे हाईएस्ट वर्जन का, जो सबसे लेटेस्ट, तो कितने का है ऑलमोस्ट आप बताएंगे जरा?
0: अप्रोक्स 1 लाख
1: ओनली लेटेस्ट,
0: उससे ज्यादा
1: ऑब्वियस ज्यादा है उससे। और आपको ये दिया गया है और लोकल में आप खड़े हैं, लोकल ट्रेन में,
0: ओके,
1: ठीक है, एंड यू आर गोइंग, जहाँ आपको पता है स्नैचिंग होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, धक्का लग रहा है, गिर सकता है, आपके हाथ में है वो
0: जी,
1: ठीक है, तो आप उसे कितने कॉन्शियसली पकड़ेंगे?
0: बहुत बहुत ज्यादा।
1: इनफैक्ट अपने को भी इतना केयरिंग से नहीं खड़ा करेंगे जितना उसको पकड़ेंगे। और उसको अगर एक घंटे तक आपको एज इट इज पकड़ के रखना है या फिर एक दिन पूरे के लिए एज इट इज पकड़ के रखना है, तो फिर आपका कैसा रहेगा हाथों का?
0: नहीं, फिर तो ये पेन करने लगेगा,
1: पेन करने लगा, तब वो मोबाइल आपको फिर पेनिंग फील होता है, जबकि वो सबसे ज्यादा अजीज चीज आपके पास है। सेम ये कई बातें हैं, कई लोग हैं, कई चीजें हैं जिनको हमने पकड़ कर रखा है अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में, लेकिन वो क्योंकि एक घंटे या एक मिनट के लिए नहीं पकड़ा है, पता नहीं कितने सालों से पकड़ा हुआ है
0: जी,
1: तो वो पेन हो रहा है। और वो पेन क्योंकि मैं इस चीज की आदी हो गई हूँ इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो पेन है
0: जी।
1: मुझे कई बार वो हिट भी करता है, लेकिन फिर क्योंकि मैं आदी हूँ तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ, लेकिन हिट हो रहा है। तो जब मैं उन चीजों को, जब मोबाइल को मैंने पर्स में रख लिया, मैंने परचेज किया पर्स और उसमें रख लिया, अब मैं रिलैक्स्ड हूँ
0: जी,
1: तो उसी प्रकार से जब मैं लोगों के साथ, चीजों के साथ, बातों के साथ इस प्रकार से हैंडल करना सीखता हूँ कि हाउ टू हैंडल देम, तो यानी एक तरह का वैराग्य। हैंडलिंग इज नथिंग, हैंडलिंग इज एक अपने अंदर डिटैचमेंट की पावर बढ़ाने का बात होती है, कि मैंने जिसने, जिसका मुझे पता चला कि वो व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहता, तो मैंने अपने अंदर एक संकल्प डाला, क्योंकि वो भी एक इंसान है और उसका अपना एक नजरिया है, वो भी एक जीवंत शक्ति है और उसके अपने चॉइसेस हो सकते हैं। तो ये चीज जब मैं अपने अंदर बार बार दोहराती हूँ तो मैं डिटैच हो रही हूँ,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन टुडे आई एम लर्निंग हाउ टू हैंडल ह्यूमंस
0: जी,
1: ठीक है। तो डिटैचमेंट इज अ वेरी गुड पावर और बहुत बड़ी पावर है। और जब मैं अपने आप को चीजों से डिटैच होना शुरू करती हूँ, अगर मान लीजिए वो फोन लोकल में आपके हाथ से गिर जाता है और तब वहाँ आप रोना स्टार्ट करती हैं, लेकिन रोने से आपको कोई फायदा नहीं है
0: जी,
1: until and unless you're having an insurance, लेकिन फिर भी अगर गिर गया है तो आप रो रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने आप को एक थॉट देते हैं कि चीजों को तो जाना है, आज या कल वो जाना है, लेकिन कल जाता तो फिर मैंने उसे यूज कर लिया है तो मेरे को थोड़ा सा शायद रिलैक्स होता, लेकिन आज ये कि आज ही खरीदा था, आज चला गया, लेकिन अपने आप को फिर भी फिट करने के लिए मैं डिटैच हो सकता हूँ कि चीजों को आज नहीं तो कल जाना ही है, इसको इसी रीति से जाना था, ये एक चैप्टर है कि आगे से मैं इतना कॉस्टली नहीं लूंगा और अगर लूंगा तो इस तरीके से उसको नहीं उठाऊंगा। तो अपने अंदर मैंने फिर से एक हैंडलिंग जो इन्फॉर्मेशन गेन की, लेकिन एक तरह से ये डिटैचमेंट इन्फॉर्मेशन मैंने अपने अंदर गेन की है। और जितना मैं डिटैच होता चले जाता हूँ तो मैं चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, बातों के प्रति, मैं अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, क्योंकि ये तीन चीज़ों में हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं
0: जी,
1: तो इन सब चीज़ों से जितना मैं डिटैच होता हूँ मैं उतना रिलैक्स रहता हूँ।
0: बिल्कुल सही बात है। ज्योति जी आप क्या कहेंगे इस पे?
2: सबसे पहले तो हमें डिटैचमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि डिटैचमेंट किसको कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोगों को ये शायद पता ही नहीं है कि डिटैचमेंट क्या है। वैराग्य का मतलब घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, जॉब छोड़ देना, और अरे हम सिर्फ छोड़ दें उसको हम वैराग्य कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैराग्य चीज़ों को छोड़ना नहीं है, जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि किसी भी चीज़ को हैंडल करना, मतलब मैनेज करना, हमें हर एक चीज़ को मैनेज करना है, छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। छोड़ने से तो आप किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे, बार बार उसकी याद सताती रहेगी, तो माइंड में तो आपने वो रखा ही है
0: जी।
2: अगर किसी को कहा जाए कि एक सफ़ेद रंग का हाथी है और उसको आपको नहीं सोचना है, तो कहीं ना कहीं वो सफ़ेद हाथी ही सोच रहे हैं लोग। तो हमें डिटैच होना है, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब उन चीज़ों को यूज़ करें एज ए इंस्ट्रूमेंट और उसको हम छोड़ भी दें एज ए इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये चीज़ें मिली हैं, ये गैजेट्स मिले हुए हैं, ठीक है, हमें यूज़ करना है इसे, लेकिन अभी हमें कहा जाए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए, तो मेरी बार बार उसकी तरफ ध्यान ना जाए, मेरा बार बार उसी के पर हाथ ना जाए, इसको कहते हैं डिटैचमेंट। क्योंकि चेंज जरूरी है,
0: बिल्कुल।
2: कहीं पर भी टू मच में अटैचमेंट हमारे लिए दुखदायी हो जाता है, और जो लोग आगे नहीं बढ़ते वही दुख पाते हैं। इसीलिए हमें हर एक लाइफ की चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, हर रिलेशन को मैनेज करना है, लेकिन किसी के साथ हमें चिपकना नहीं है, क्योंकि वो हमें इरिटेट करेगा।
0: बिल्कुल सही बात। हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: हमें सबको यही कहना है कि सबके साथ रहे, सबके साथ खुश रहे, लेकिन किसी के साथ।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।